0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। प्रातः काल की इस पुण्य वेला में मॉरिसस सनातन धर्म टेम्पल फाउंडेशन के तत्वावधान में इस श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन। श्रोताओं, आप सभी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव जिनके विषय में कहा कि यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय लेकर के संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर के सातों भुवनों को उनका भरण और पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर के सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं

0: पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय में विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त द्यावा पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले महाप्रलय में भी विक्रियका को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हम सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन।

गायत्री इत्यादि छंदों के जानकार, व्याकरण वक्ता, मंत्र दृष्टा, सप्तऋषियां या पूर्वजनों के मार्ग का अनुगमन करने के हम भी इस सृष्टि को उसी प्रकार प्रणाम करें जिस प्रकार पूर्व में विधाता ने किया था। जज

एकं तन्मे शिव संकल्पमस्तु। जगे हुए मनुष्य का मन इंद्रियों की अपेक्षा दूर जाती है। दो देदीप्यमान विज्ञात्मा को ग्रहण करने वाला मन जागृत अवस्था की तरह स्वप्न अवस्था में भी दूरतर विषयों को ग्रहण करता है, जो तीनों कालों समीप और दूर के

0: विषयों को ग्रहण करता है एवं जो इंद्रियों का शक्ति प्रदान ज्योति स्वरूप है वह मेरा मन शांत संकल्प वाला हो। जेन कर्माणि पयोमिखाने न यज्ञ कृणवंतु विदधेको दिराहा जत्पूर्वे जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के रहते हुए ही मनुषी यज्ञ के जानकार और भीर मनुष्य वैदिक कर्म करते हैं, जो सृष्टि से पहले भी था, जिससे पूर्व कोई इंद्रियां नहीं थी, जो सभी यज्ञ कर्म कराने में समर्थ होकर के सभी प्रजाओं में रहता है, वह मेरा मन कर्मजन्य फल से निरक्त होकर शांत संकल्प वाला हो। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज मंडे 10 अगस्त 2026 के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। माँ सती ने सीता का रूप धारण करके रामचंद्र जी की परीक्षा लेना चाहा। इसको आगे बढ़ाते हुए बालकांड दोहा संख्या 53 में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हम लोग आज की पाठ को आगे बढ़ाए।

स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, रामचंद्र जी क्या कहते हैं,

पहले भगवान राम ने हाथ जोड़कर सती माँ को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु भगवान शिव कहाँ हैं? हे माँ, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? राम वचन मृदु गुर सुनी उपजा अति संकोचु, सती सभी तमहेश पही चली हृदय बरसोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी

0: चिंता हो गई। सती को पूर्ण विश्वास हो गई कि रामचंद्र जी कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि का अवतार है। परंतु बात यह नहीं थी, बात बस इतना ही नहीं था, बात यह भी है कि शंकर भगवान को अब क्या जवाब देना पड़ेगा। इसका वर्णन हम लोग कल आगे पाठ करेंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

कौन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। आर्यसभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत इस वैदिक मंत्र की व्याख्या मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। मित्रों श्रोताओं, परमात्मा के बारे में ये बहुत भ्रांत धारणा है लोगों में कि क्या ईश्वर भी चलता है, उसके हाथ नहीं पैर नहीं है, निराकार है, अकाय है। तो इस मंत्र में इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। तद एजति अर्थात वह परमात्मा सब जगत को, एजति का मतलब है एजरी कंपने, एजयति गति देता है, सारे संसार के जड़ और चेतन को अपनी अपनी चाल पर वह चला रहा है। परंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर में आरोप लगाते हैं कि क्या वह परमात्मा भी चलता है। परंतु वह सब में पूर्ण है, कभी चलायमान नहीं होता, उसके हाथ नहीं पैर नहीं है, हमारा जैसा शरीर है।

ना बिना कर के कर्म, कर्म माने हाथ, बिना हाथों के ही कर्म करता है, बिना पैरों के ही चलता है। कितनी सुंदर बात कही है वेद के अंदर। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, उसके हाथ पर नहीं है लेकिन अत्यंत वेगवान है ग्रहीता, पूरे जगत को वो गति दे रहा है। इस वेद मंत्र में यही बात कही गई है कि संसार के एक एक कण के अंदर, जगत्याम जगत जो हम प्रार्थना करते हैं ना, उसके अंदर एजति, एजति का मतलब है गति दे रहा है, मोशन दे रहा है। तो पहली बात ये याद रखना है कि ईश्वर कभी चलायमान नहीं होते। और एक मंत्र में और बड़ी बात अच्छी कही है, तन्न एजति, वो परमात्मा कभी चलता नहीं है, एक रस है। इसलिए विद्वान लोग इस तरह से उस ब्रह्म को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और एक बात और कही, तद्दूरे तद्वंतिके, देखिए कैसी बात कही गई है, वह दूर भी है और बिल्कुल निकट भी है। तो दूर किन लोगों से हैं? परमात्मा तो हमारे शरीर में ही है, जीवात्मा के अंदर भी सूक्ष्म रीति से विद्यमान है। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, श्रोताओं ये अथर्ववेद का मंत्र है, वह हमारे अत्यंत समीप है। लेकिन यहाँ पर जब ये बात कही कि तद दूरे, दूर किन लोगों से हैं, जो अधर्मात्मा है, जो विचार शून्य है, जो ईश्वर की भक्ति से रहित है, जो अजितेंद्रिय हैं, तो ऐसे लोगों से वह दूर है, अर्थात करोड़ों करोड़ वर्षों तक भी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जन्म मरण आदि दुख सागर में हम इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए कहा कि वह दूर उन लोगों से है। और जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, ईश्वर भक्ति प्रतिदिन करते हैं, उनके वह निकट है। तद्वंतिके का मतलब अंतिक कहते हैं संस्कृत में, बिल्कुल निकट होना। तद माने वह परमात्मा।

ईश्वर किनके समीप हैं? जो हमेशा अपने जीवन में सरलता का व्यवहार करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, जितेंद्रिय हैं, सब लोगों का भला चाहते हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों के वो बिल्कुल निकट है, समीप है। धन्यवाद आपका।

समं मान एते अनूनं पात्रं निहितं न एतत्पत्तारं पक्वः पुनराविशाति। ओम शांति शांति शांति। समस्त आर्य बंधुओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबेर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, वैदिक धर्म में कर्म का सिद्धांत बड़ा अटल है। कर्म के 3 सिद्धांत हैं। मनुष्य कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म करके कोई उसके फल से बच नहीं सकता। उत्तम श्रेष्ठ कर्मों का फल उत्तम होता है और अशुभ बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, अतः हमें शुभ कर्म करने चाहिए। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें फल भी बुरा ही मिलेगा। इस विषय में एक सत्य घटना प्रस्तुत करते हूँ। 2 व्यापारी कहीं जा रहे थे। मार्ग में सूर्य अस्त हो गया। पास के गांव में जाकर उन्होंने एक पटेल से उसके घर रात्रि बिताने के लिए कहा। जगह मिल गई, परंतु उन व्यापारियों के रुपयों की थैली को देखकर पटेल की नीयत बदल गई। पटेल ने उनके सोने का उचित प्रबंध कर दिया और 2 गुंडों को बुलाया और कहा, मेरे द्वार पर 2 आदमी सो रहे हैं, उन्हें रात्रि में मार दो। पुरस्कार के लोभ में गुंडों ने स्वीकार कर लिया। पटेल के 2 पुत्र खेतों पर सोने गए थे, परंतु वहां पटेल के नौकर पहुंच गए, अतः वे दोनों घर लौट आए। रात्रि काफी जा चुकी थी, अतः उन्होंने बाहर सोना ही ठीक समझा। पलंग पर अपरिचित लोगों को पड़े देखकर उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। व्यापारी तो पशुशाला में चले गए और पटेल के दोनों पुत्र पलंग पर लेट गए। रात्रि में गुंडे आए और एक एक झटके से दोनों का सिर काट चलते बने। प्रातः काल जब व्यापारी चलने को तैयार हुए तो उन्हें बरामदे में रक्त दिखाई दिया। उनके पुकारने पर पटेल बाहर निकला, परंतु अब क्या हो सकता था, उसकी करनी उसके सामने आ चुकी। यह है कर्मों का फल। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। ऊंधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कभी कभी कर्म फल पर संदेह होने लग जाता है। कभी कभी पापियों को फूलते फलते देखकर संदेह होने लगता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: रात्रि छाया के समान अत्यंत कल्याणकारिणी होती है, रात्रि माता के समान सुखदायक होती है। परमात्मा ने रात्रि की रचना की ताकि प्राणी मात्र की थकावट दूर हो और वे शांत भाव से विश्राम कर सकें और अपने शरीर को ऊर्जावान फिर से बना सकें। रात्रि स्वभावतः अंधकार से युक्त रहती है क्योंकि इसमें प्रकाश का अभाव रहता है। रात्रि स्वास्थ्य रूपी धन की रक्षा के साथ शांति को धारण करती है, परंतु गहन अंधकार में चोर एवं कुकृत्य करने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति चोरी व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में प्रबल हो जाती है, जो हमारे अन्न धन एवं मूल्यवान वस्तुओं को चुराता है, सोए हुए लोगों को हानि पहुंचाता है। तो सजग व सावधान रहने वाले राजा व राजपुरुष उस स्थान में पहुंचकर अपराध करने वाले को रोकें और न्याय व्यवस्था से उसे दंडित करें।
1: ओम एतम् ते देवः सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव।
0: देव स्वरूप अनंत गुणों से युक्त परमात्मा हमारे यज्ञों को दिव्यता से युक्त करता है। उस वेदोक्त यज्ञ से सबको सुख मिलता है। सब ऐश्वर्य का विधान करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर सूर्य के सदृश सबको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है तथा सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। सृष्टि यज्ञ के अंतर्गत वेद वाणी का दाता परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में सर्वाधिक पुण्य आत्माओं के हृदय में वेद ज्ञान को प्रकाशित किया, तभी वेद उपदेश से सबकी रक्षा हुई और यज्ञ करने कराने की परंपरा चलती रही। हे ईश्वर, हमारे यज्ञ और यजमान की रक्षा कीजिए, इसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए।
1: ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भायजते हनः उषतीरिव मातरः।
0: संतान को निरंतर चाहने वाली प्रेममयी माता जिस प्रकार अपनी संतानों को अन्न दूध रस आदि जीवनदायी आहार देकर पालती हैं, उसी प्रकार अमृतमय जल माता के सदृश सबकी रक्षा में अग्रणी है। जल अत्यंत कल्याणकारी सारभूत रस हैं जो सबके जीवन की रक्षा करता है। अतः जल जीवन का प्रमुख स्रोत होने से देवतुल्य हैं। अत्यंत कल्याणकारी जल से सबकी रक्षा हो।

0: आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। मॉरिशस में आज से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 के तहत ये पाबंदियां 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। देश के उत्तर में ला निकोलिया जलाशय फिलहाल करीब 83% भरा है। इरिगेशन अथॉरिटी का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। वहीं गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश कारोबार भी प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए CWA भूमिगत जल नदियों और दूसरी जलधाराओं का भी सहारा ले रही है। मॉरिशस में महंगाई की दर बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई जून के 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनखुआ में आज सुने करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, जिनकी बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच जारी है। विदेश में पश्चिमी कनाडा में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बावजूद आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम को भी देश में रह रहकर बरसात होगी। विशेषकर शाम को पूर्व और सेंट्रल प्लाटो पर वर्षा काफ़ी तेज हो सकती है। धुंध भी छाई रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर वर्षा जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर पूर्व और दक्षिण में समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:55 पर।
2: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
4: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

सुबह के 6:10 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज हम सोमवार 10 अगस्त 2026 आप सुन रहे हैं सुबह का नज़

रहा हूँ। आप मुझ में प्रकाश रूपी गुण और ज्ञान भरें, आप मुझे बढ़ाएं। पुत्र पौत्र अच्छी प्रजा संतानें गाय आदि परोपकारी पशुओं से वेद विद्या के तेज से धन धान्य से पौष्टिक पदार्थों और अन्न से मुझे समृद्ध करें। यह आहुति प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिए है, मेरी नहीं। दूसरी संहिता की आहुति यजुर्वेद के अध्याय 3 तथा मंत्र 1 और 2 के दोनों मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्निकुंड में अर्पण करते हैं। मंत्र है ओम समिधा अग्निम द्वेष्यत घृतैर्य बोधया तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतन सुसमिधा ये शोचिसे

अर्थ परमेश्वर का आदेश है कि संविधा के द्वारा यज्ञाग्नि की सेवा करें, घृत से गतिशील अग्नि को जागृत करें, हवियों की आहुति दें। यह आहुति अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए है, मेरी नहीं। तीसरी संविधा की आहुति यजुर्वेद के अध्याय 3 और मंत्र 3 के उच्चारण के साथ अग्नि कुंड में श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं। मंत्र है, ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहत् शौचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अर्थ है, हे गति करने और कराने वाली अग्नि, इस संविधा को घी में डुबोकर यज्ञाग्नि को बढ़ा रहा हूँ। यह आहुति अंगिरा अग्नि के लिए है, मेरी नहीं। इस मंत्र में अग्नि को अंगिरा तथा यविष्ठय नामों से संबोधित किया गया है। संविधादान विधि में 3 संविधाएँ अर्पित करने का तात्पर्य है कि पहली संविधा पृथ्वी का प्रतीक है, दूसरी संविधा द्यूलोक का और तीसरी संविधा अंतरिक्ष का। ब्रह्मचारी भी गुरुकुल के अपने आचार्यों से विदा लेते हुए यह तीव्र कामना करते हैं कि जिस तरह यज्ञाग्नि में संविधाएँ प्रदीप्त होती है, वैसे ही उनकी ज्ञान अग्नि में ये तीनों लोक प्रकाशित हो उठें, अर्थात वे इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। मंत्र है, इयम समित पृथ्वी ध्यौरवित तियो तांतरिक्षम समिधाम प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेन लोकांश तपसा पीरपति। ऐसे और भी 3-3 प्रभावशाली समूह वाले ऐसे उदाहरण हैं जो संविधा दान के इन 3-3 संविधाओं का प्रतीकात्मक है, जैसे अग्नि वायु आदित्य, ईश्वर जीव और प्रकृति, ज्ञान कर्म उपासना, माता पिता आचार्य, मन वचन कर्म आदि आदि। वेद मंत्रों में पवित्र ज्ञान का भंडार पाया जाता है, जिससे मानव संस्कार का निर्माण होता है जो जीवन भर स्थापित रहता है। अग्निहोत्र सामान्य यज्ञ हो या विशेष यज्ञ हो, अग्नि की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना यज्ञ करना संभव नहीं है, आहुति नहीं दी जा सकती। संविधा दान के बिना यज्ञ अपना अस्तित्व और अपनी यथार्थता नहीं दिखा सकता। हवन कुंड की अग्नि भौतिक लौकिक अग्नि के साथ साथ आध्यात्मिक अलौकिक अग्नि भी है। भौतिक इसलिए कि अग्नि का रंग रूप दिखाई देता है और उसकी उष्णता गर्मी अनुभव की जा सकती है। आध्यात्मिक इसलिए कि यज्ञ की अग्नि ईश्वर से तथा यजमान की आत्मा से संबंध रखती है। ईश्वर के अनेक नामों में अग्नि भी एक है। ईश्वर ज्योतिर्मय है। अग्नि को अग्रणी भवति कहा गया है क्योंकि अग्नि आगे आगे चलती है। अग्नि को सभी देवताओं का दूत माना जाता है क्योंकि

0: यज्ञ में अग्नि ही उन देवताओं का आगमन कराती है। वेद मंत्रांश अग्निर्वायु निर्जस्य अर्थात यज्ञ का कारण अग्नि ही है। अग्नि सदा यजमान को प्रगतिशील होने की प्रेरणा देती है। अग्नि की तेजस्विता से यजमान अपनी तेजस्विता बढ़ाता है। अग्नि यजमान की प्रतिभा बढ़ाने में सक्षम होती है। समयी धिये इति समिधा अर्थात जो अच्छी तरह से प्रज्वलित होता है उसे समिधा कहते हैं। समिधा को यज्ञ के प्राण माना गया है। वेद माता कहती है, हे यजमान, तू समिधा से यज्ञ की अग्नि को बढ़ा, फिर घृत रूपी अपनी श्रद्धा के साथ अग्नि रूप अतिथि को पहचान। बिना समिधा की अग्नि की प्रतिष्ठा नहीं होती है। घी में डुबोई गई समिधाओं से अग्नि आध्यात्मिकता की ऊंचाई पकड़ती है। यजमान इस अध्यात्म से ओतप्रोत होता है और भरपूर ऐश्वर्य प्राप्त करता है। घृत तरल होने से यज्ञाग्नि में संपूर्णता के साथ मिल जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है और जीवन में शक्ति ऊर्जा संचार करता है। यज्ञ में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी के बिना मंत्रों के उच्चारण असंभव है। वाणी ही मंत्र उच्चारण और प्रवचन की आत्मा है। मुख में अग्नि देवता का वास होता है। उपनिषद का वचन है, वाक् भूत्वा मुखम प्रविशत। अर्थ है, अग्नि सबसे ऊपर होने के कारण मंत्र उच्चारण करने वाले यजमान को भी ऊपर उठाती है। अतः यजमान आहुतियों अर्पण करते हुए उच्चारण करता है, मैं तुझे समिधा घी तीव्र श्रद्धा द्वारा ऊपर उठा रहा हूँ, अतिथि सत्कार कर रहा हूँ। मानव के शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति तथा ऐश्वर्य के लिए वेद इन सभी गुणों मूल्यों आध्यात्मिक सुख आनंददायक दिव्य ज्ञान आदि का कभी नष्ट नहीं होने वाला अमर कोश है। आप सभी का जीवन यज्ञमय हो। आप प्रतिदिन यज्ञ हवन का दिव्य आनंद और ईश्वर का अमृतमय आशीर्वाद सदा प्राप्त करते रहें। श्रवणी यज्ञ आप सभी के जीवन में सुख शांति पहुँचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। साइपुल के आसपास के इलाके वायल रोड, साइपुल, धनी लेन 1, धनी लेन 2, और जी हाँ, उनके रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 12 अगस्त 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है, धन्यवाद साथ देने के लिए। 6:20 होने को है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। चलिए अभी हम सुनने जा रहे हैं श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम गहलोत राजपूत पंडित या बुधाई के साथ। बुधोई

से नमना, झुकना, समर्पण करना, इसे साधारण तथा हीन छोटा दुर्बलता का कार्य समझा जाता है। पर वेद कहता है कि नम ही उग्र है, नमन में समर्पण में ही वह उग्रता है, वह शक्ति है कि सबको अपने सामने झुका देती है। श्रावणी उपाकर्म एवं श्रावण मास की वैज्ञानिकता। श्रोतागण, परमात्मा ने मनुष्य को लगभग 100 वर्षों तक जीने के लिए प्रेरित किया है। यथा जीवेम शरदः शतम्, माने हमें 100 शरद ऋतु तक जीना चाहिए। और भी जीने के लिए जहाँ खाना पीना अनिवार्य होता है, तो वहाँ प्रभु प्रदत्त वेद वाणी जो मानव के संवैधानिक नियम के रूप में विद्यमान है, जिससे अनुकूल चलकर जीवन को सफल किया जाता है, उसका महत्व तो इसमें

कहीं ज़्यादा है, इसलिए उसे सुनना सुनाना व पढ़ना पढ़ाना मानव का परम धर्म ठहराया है। उसी वेद के प्रथम मंत्र में निर्दिष्ट ऋत्विजम पद से जहाँ उसने हमें ऋत्व अनुसार सब व्यवहार करने को दर्शाया है, तो वहाँ स्वयं इसे समझाने के लिए प्रकृति के उपमोदाहरण का भी सहारा लिया है। वर्षाकालीन बादल की गर्जना जहाँ होवे वहाँ श्रवण के उपरांत वायु और बिजली को शीघ्रता से पहुँचने का आदेश दिया है, तो वहाँ ग्रावा तुल्य पितरों के पास श्रवणार्थ हमें भी जाने का यथोचित आदेश धर दिया है। इसी बात की पुष्टि अर्थ ऋषियों ने इस वर्षा ऋतु के प्रथम महीने का नाम श्रावण धर देना उचित समझा। अत्यदर्थ इन्हीं उपमोदाहरणों से उसने हमें भी अपनी कल्याणी वेदवाणी को सुनकर एवं स्वाध्याय करके मंडन करना कर्तव्य ठहरा दिया। अर्थात वर्षाकालीन समय में इस उत्तम वेदवाणी का स्वाध्याय व परायण करना ही श्रावणी उपाकर्म कहलाता है, तथा पितरों को सुनकर जीवन को निर्विघ्न बनाना व धरती पर एक संतुलित व्यवस्था की कामनार्थ यज्ञ करना ही श्रावणी यज्ञ कहलाता है। परमात्मा ने हमें उक्त मंत्र अतिवायो सततो याहि से वर्षाकालीन आधि दैविक उपमोदाहरण से जहाँ पिता तुल्य विद्वानों के पास जाकर ज्ञान अर्जित करने का संदेश दिया है, तो वहाँ मुंडकों की उपमा दोहरण से भी वेद स्वाध्याय रूप परायण यज्ञ करने का उचित संदेश दिया है, जिसे श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं। ऋषियों ने विशेष ज्ञानार्थ हेतु इस उपाकर्म विधि की तीन मुख्य तिथियों निर्धारित की है। प्रथम श्रावण मास की पूर्णिमा को जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, दूसरी भाद्रपद मास में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, तथा तीसरी श्रावण मास की पंचमी तिथि को जिस दिन हस्त नक्षत्र हो। कोई शंका भी कर सकता है कि इन तीन ही मुख्य नक्षत्र युक्त तिथियों को क्यों इतना मान्यता प्राप्त है, तो वेद के मंत्र में आया भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भीर्यजत्रा स्थिर रंगेष्टुष्टुवान सस्तनु भीर्यशेमहि देवहितम् यदायु। यजुर्वेद का यह मंत्र है, अर्थात हे देवता लोगों, आप लोगों की उपस्थिति में हम लोग कानों से भद्र सुने, ऐसा अर्थ करने से कभी मर्यादा की हानि भी हो सकती है, क्योंकि विद्वानसों देवाह जितने भी विद्वान हैं वे सब देवता माने जाएंगे। इस नियम प्रमाणे मत मतांतरों के जो विद्वान लोग हैं उनसे भी जब हम ऐसी प्रार्थना करने लगे तो वे लोग अपनी दृष्टिकोण से मान्यता अनुसार विचारों को ही भद्र समझेंगे, परिणामतः वेदोक्त मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, ऐसी विडंबना न हो जाए। इसलिए उक्त मंत्र में देवाह के साथ साथ यजत्राह विशेषण जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत यजुर्वेद मंत्र यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः, अर्थात हे प्रभु, जैसे आपने हमारे लिए कल्याण करने वाली वेदवाणी जो दी है हम उसी को जनों के लिए हूबहू बोलेंगे, इससे भिन्न मनुष्य कृत वाणी को प्रामाणिकता नहीं देंगे। इस मंत्र से वे लोग और भी कामना करते हैं कि हम विद्वानों के प्रिय बन जाएं। फिर भी यदि ऐसा न हो सके तो हमारी पहली इस वेद वाणी को ही बोलने वाली कामना पूर्ण हो जाए। अतः उक्त विचार से सिद्ध हो जाता है कि भद्रम एक वचन सामान्य अर्थक होने से केवल वेद के लिए आया है। यदि अन्य अन्य वाणियों को भी बोलने का संकेत होता तो भद्रतमम तुलनात्मक एवं

अतिशयात्मक विशेषणों का भी प्रयोग होता। श्रोतागण, इस प्रेरणादायक वचनों के साथ ही आज का वक्तव्य यहाँ विराम ले रहा है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सोमवार 10 अगस्त की सुबह ठीक 6:30 बज रहे हैं। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ये नया दिन, ये नया सप्ताह हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पानी की हर एक बूंद अब अहम। मॉरिशस में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। ये नियम 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। लानी कोलिया जलाशय फिलहाल सिर्फ 43% भरा हुआ है। मॉरिशस में महंगाई का दबाव बढ़ा है। सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज। सनकुआ में आज सुने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 549 ग्राम ड्रग्स बरामद किए। इनकी बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई। मामले की जांच जारी। विदेश में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की भीषण आग के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में आज सोमवार 10 अगस्त से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 लागू करने की मंजूरी दी थी। ये नियम 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। देश में पानी का भंडार लगातार कम होने के कारण ये कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट शैली निर्बन और अशिता रघु का है।
2: अव्यवहारिक तौर पर पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर कई तरह के

0: प्रतिबंध लागू होंगे। इसके तहत वाहनों को धोने, इमारतों, रास्तों और फुटपाथ की सफाई करने, लॉन, बगीचों और झाड़ियों में पानी देने तथा स्विमिंग पूल भरने या उसमें पानी बदलने पर रोक रहेगी। गन्ने की फसल की सिंचाई भी इन प्रतिबंधों के दायरे में होगी। हालांकि सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों की सिंचाई बिना किसी प्रतिबंध के जारी रह सकेगी। उन लोगों के लिए भी एक छूट रखा गया है जिन्हें किसी जलधारा से कानूनी रूप से पानी लेने का अधिकार प्राप्त है। वे सिंचाई जारी रख सकेंगे, बशर्ते लिया गया पानी अन्यथा समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता। ये नई उपाय CWA की ओर से पहले से लागू किए गए उपायों के अतिरिक्त हैं। पिछले बुधवार से जल वितरण योजना के तहत पूरे देश में रोजाना पानी की आपूर्ति की अवधि 2 घंटे कम कर दी गई है। आंकड़े भी जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को दर्शाते हैं। 4 अगस्त तक देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का औसत भंडारण स्तर 61.7% था, जबकि 2025 में इसी अवधि में ये 72.7% था। यानी पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जलाशयों में पानी का स्तर 31% अंक कम है। इस बीच ऊर्जा एवं पब्लिक यूटिलिटी मंत्रालय और सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पिछले कई हफ्तों से जागरूकता अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य लोगों को जलाशयों की मौजूदा स्थिति और पानी की खपत में कटौती की आवश्यकता के बारे में सचेत करना है।
1: पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों के बीच इरिगेशन अथॉरिटी ने देश के उत्तरी हिस्से में पानी की स्थिति की जानकारी दी है। संस्था के इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट रूपेश रामबर्न के अनुसार लानीकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उत्तर के इलाकों में पानी पहुंचाने वाले मिडलैंड्स जलाशय की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन अधिकारी इसके पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के बजाय घरेलू जरूरतों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। रूपेश रामबर्न का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है, ऐसे में अगला बरसात का मौसम आने तक पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना जरूरी है। रूपेश रामबर्न से बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण अशिता रखू।
2: À partir de lundi, l'irrigation, surtout dans le nord, va être restreinte en termes d'heure.
0: आज सोमवार से उत्तरी क्षेत्र के खेतिहरों के लिए सिंचाई तथा पानी के वितरण घंटे और दिनों की संख्या को लेकर सख्ती लागू हो रही है। प्राथमिकता सब्जियों की खेती को दी जाएगी, विशेषकर जो हाल ही में रोपे गए हैं, तथा गन्ने की खेतों की सिंचाई नहीं होगी, जो आज मंत्रालय के नियमों के अनुसार होगा। हम खेतिहरों और संबंधित उपभोक्ताओं के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे संसाधनों तथा पानी की बर्बादी न हो, लीकेज का मरम्मत पूरा करें तथा जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें।
1: पानी पर लगी पाबंदियों का असर खेती के साथ दूसरे कारोबार पर भी पड़ रहा है। पेनविलियंस में गाड़ियां धोने का काम करने वाले एक कारोबारी का कहना है कि वाहनों की धुलाई पर रोक से उनका कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। वे मानते हैं कि देश में पानी की स्थिति गंभीर है, लेकिन उनका कहना है कि काम प्रभावित होने के बावजूद कई खर्च जारी रह सकते हैं। उन्होंने सरकार से इस मुश्किल दौर में इस सेक्टर से जुड़े लोगों को बेहतर सहायता देने की अपील की। उनसे बात की शैली निर्बन ने, अशिता रखू।
0: सरकार अब कौवाश सेंटरों के लिए नियम लागू कर रही है, हम समझते हैं, क्योंकि स्थिति चिंताजनक है। हमें खाने पीने के लिए पानी को बचाना होगा, पर मैं एक पेट्रोल स्टेशन संचालक हूं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे 2 लोगों का वेतन करना पड़ता है, तो सरकार को इसके लिए हमें मदद करनी होगी, तभी हम स्थिति का सामना कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी अत्यंत ही कठिन हो जाएगी।
1: जैसा कि आप ही आपने सुना, पानी पर लगाई गई पाबंदियां केवल गैर जरूरी इस्तेमाल पर लागू हैं। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के मकसद से CWA दूसरे जल स्रोतों का भी सहारा ले रही है। इनमें भूमिगत जल, नदियां और छोटी जलधाराएं शामिल हैं। पानी की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सरकार के मार्शल प्लान के 6 में से 2 हिस्सों पर भी काम चल रहा है। इनमें नए कुएं खोदना और पानी साफ करने के लिए प्रेशर फिल्टर्स लगाना है। यात्रा मिश्रा।
3: हमारे जलाशयों की स्थिति गंभीर। पिछले साल इसी अवधि में जलाशयों में पानी का स्तर 92% था,

0: ये 61% है। देश के सबसे बड़े जलाशय महोवाकवा में जल स्तर 39% है, वही बागातल डैम में 71%, जबकि पिछले साल ये इसी समय 94% था। पीने के पानी के हमारे अन्य स्रोत यानी भूमिगत जलाशय और नदियों में भी कमी आई है। 50% पीने योग्य पानी भूमिगत जलाशयों से ही आता है।
1: Nous avons à peu près 630 forages, mais la plupart ça va de l'eau, de la nappe phréatique.
0: 630 जगहों पर खुदाई हुई है, लेकिन भूमिगत जलाशय का पानी यानी 50% घरेलू कामकाज के लिए जाता है। बारिश की कमी के कारण 25-30% कमी दर्ज हुई है।
1: En général, il y a une baisse à peu près de 25-35%.
0: जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 6 नए भूमिगत जल स्रोतों की पहचान की गई है। नदियों के स्तर पर जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कंटेनराइज प्रेशर फिल्टर्स लगाए जाएंगे, फिर भी अत्यधिक इस्तेमाल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
1: La plupart nous vannent la rivière et nous vannent la phréatique, je tenais une relation. Si vous pompez trop beaucoup, il y a un effet, l'eau débite dans nous vannent la rivière.
0: ज्यादा पंपिंग करेंगे तो नदियों पर प्रभाव होगा। हम 24 घंटे पानी पंप करते हैं और फिर भूमिगत जल पर उसका असर देखते हैं। नदी और बोहोल को प्रभावित न करने वाली मात्रा ही पंप करते हैं और सीमाएं निर्धारित करते हैं और अधिकारियों को बताते हैं। मीटर देखकर पता चलता है कि इसका पालन हो रहा है या नहीं।
1: Là, nous pompons sa quantité là. Et ça, c'est nous mettre dans une limitation à n'importe qui, même la CWA, même privé, les autres besoins, obéir à sa restriction. Parce que nous finis qu'on n'est pas bonne compter, etc.
0: Dunia bhar mein jalvayu parivartan aur El Niño ka prabhav dikh raha hai. Ritu Vigyan Kendra ke anusar, aane wale hafton mein tez barish ka koi khas anuman nahi. ऐसे में पानी पर लागू प्रतिबंधों की अवधि 30 नवंबर से भी आगे बढ़ सकती है, और जब पीने के पानी की उपलब्धि लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में अधिकारियों ने सभी नागरिकों से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है।
2: मॉरिशस में जुलाई महीने में रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में 112.2 अंक से बढ़कर जुलाई में 112.9 अंक पर पहुंच गया, यानी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी में शराब और तंबाकू की कीमतों का बड़ा असर रहा। इन सामानों पर बजट 2026-2027 के तहत 20 जून से नए एक्साइज ड्यूटी लागू किए गए थे। आशिता रखु।
3: जुलाई महीने में अल्कोहलिक ड्रिंक्स और तंबाकू की श्रेणी में 3.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी में तीन उत्पादों की प्रमुख भूमिका रही। सिगरेट, रम और विस्की ने मिलकर जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में हुई मासिक वृद्धि का 71% हिस्सा तय किया। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ इसी श्रेणी तक सीमित नहीं रही। खाद्य पदार्थों की कीमतों में महीने के दौरान 0.3% की वृद्धि हुई, स्वास्थ्य क्षेत्र में 0.8% और शिक्षा क्षेत्र में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी नई एक्साइज ड्यूटी के प्रभाव के अलावा भी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी में शामिल कई सामानों की कीमतों में जुलाई के दौरान इजाफा हुआ। पिछले 12 महीनों के औसत आधार पर महंगाई दर अब 4% पर पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले ये 3.1% थी। महंगाई के अंतर्निहित रुझान पर भी नजर रखी जा रही है। खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, तंबाकू और मार्जिन ब्याज को बाहर रखने वाला कोवान सूचकांक पिछले 12 महीनों के औसत आधार पर 2.9% से बढ़कर 5.1% हो गया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब दूसरी तिमाही में भी महंगाई का दबाव देखा गया था। मार्च से जून के बीच CPI में 2.4% की वृद्धि हुई थी, जिसमें खाद्य पदार्थों और अन्य खर्चों की कई श्रेणियों में कीमतों में बढ़ोतरी का योगदान रहा। इसी तरह जुलाई में भी मासिक आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही, लेकिन इस बार नई एक्साइज ड्यूटी के उपायों का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा।
2: देश में सालाना महंगाई की दर भी बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ये जून के में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। जयंत

0: के मुताबिक सबके पीछे यही कारण है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट से आयातित सामान महंगे हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई का खर्च, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और कुछ आयातित सामान पर इंश्योरेंस की बड़ी लागत का भी बड़ा असर पड़ा है। स्थानीय बाजार में दामों पर नियंत्रण के कारण कुछ सब्जियों के दाम में मामूली कमी आई है, लेकिन जयंत चलम का कहना है कि कई ऐसे सेक्टरों में खर्च बढ़ा है जहां दामों पर नियंत्रण नहीं है। इनमें शिक्षा, डॉक्टर की फीस, घरेलू गैस और बिजली शामिल है। जयंत चलम को सुनते हैं।
1: Maintenant, au niveau local, du fait qu'il peine un contrôle, les légumes ont baissé un petit peu, mais n'empêche que là, on prend l'île dans la totalité des autres facteurs, pour nous mettre l'indice des prix, de ce panier, il y a la fréquence qui est montée, il y a aussi l'alimentation au-delà des légumes qui est importée, et là, il passe ça, il est monté, et là, du fait, il est monté, l'électricité est montée, et qu'il répercute les autres facteurs qui les malades répandent, parce que beaucoup de prix ne sont pas contrôlés, sur gaz et tout. Ça qui glace et il va contrôler. Donc là, on prend tout ça. Il n'est pas étonnant qu'on gagne une marge beaucoup plus élevée d'une certaine manière, qui fait l'influence, l'augmentation, taux annuel, taux d'inflation.
0: शुक्रवार को सेंट क्वा में आज सुनिए बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। मेट्रो नोव की एक टीम ने एक बैग बरामद किया जिसमें ड्रग्स के 7 पैकेट थे। इनमें मुख्य रूप से हेरोइन थी जिसे अलग अलग तरीके से पैक किया गया था। कुछ हेरोइन प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक की परत में रखी गई थी, जबकि इसे 175 एल्यूमिनियम फॉल में भी छिपाया गया था। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स के 2 पैकेट भी मिले। कुल मिलाकर करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं, जिनकी लागत है 8.4 मिलियन रुपए से अधिक। इसकी आंकी गई है लागत। जांच जारी है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रग्स कहां से आए और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। विदेश की खबरों में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण आपातकाल घोषित। शुक्रवार को शुरू हुई ये आग अब बढ़कर करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और समरलैंड, पीचलैंड समेत आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 20,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। अधिकारियों के मुताबिक कई मकान और संपत्तियां आग की चपेट में आई हैं, हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का असर जारी रहेगा। सुबह और दोपहर को देश भर में रह रहकर बरसात होगी। देर शाम को विशेषकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटों पर ज़्यादा बरसात हो सकती है और धुंध भी छाई रहेगी। रात को आसमान में बादल छाए रहेंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर उत्तर और दक्षिण और पूर्व में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम ऊंचे इलाकों पर बल्कि साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:55 पर होगा। तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं अभी के लिए शोक समाचारों की ओर। लाग्रेमो सेंपियामे 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की बद्रया अपादू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजेन अपादू के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज

सुबह के आज दिन की डेढ़ बजे उनकी पत्नी माला आपादू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM ब्रांच रोड रौंसिली में 79 ईयर्स ओल्ड की देवरानी भैरव की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें धान के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके भाई धर्म भैरव के मकान ब्रांच रोड जौंचली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM वेरासामी रोड मूलैं कासे सुरीनाम में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के दीप नारायण आराकी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें इंदर के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान सोगी नाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM लामेरे स्ट्रीट ओकुले में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री नीलकंठ कुमार गोबिन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें केविन के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। सैन फ्रांसवा जावियर स्ट्रीट पोर्टली में 90 ईयर्स ओल्ड की सफी सरीफुन्नेसा मोहंगा इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार बल्कि दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून बुआडवाजो ग्रोबियो में मोहम्मद ईशान अमीर अली इंतकाल कर गए हैं। लोग उन्हें दादा के नाम से अधिक जानते थे। उम्र 60 साल 60 ईयर्स ओल्ड उनकी अर्थी बल्कि उनका जनाजा आज रात्रि के 9 बजे उनकी माँ रकीबा अकबर अली के मकान गोबियो से निकाल कर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM तिवारी स्ट्रीट रोजबेल में 87 ईयर्स ओल्ड की महालक्ष्मी गलचुला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम अपादू। लोग उन्हें पुष्पा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर दो बजे उन्हीं के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM लेस्पेरेंस त्रिबुशे आनंद रोड में 57 ईयर्स ओल्ड के 57 साल की महालक्ष्मी पुनीत की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सालांदी। लोग उन्हें रेखा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM स्कूल लेन कॉटेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की मानती भिकन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामनारायण। लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके पति देवानंद भिकन के मकान कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉटेज की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM कनाडा लेन रोज लेन बाउंड्री ट्रेफ रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिनियामा इरापा की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कॉपेन। लोग उन्हें अति के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रुत पांचू स्टैनली रोजिल में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की भवानी दिन तिलौती की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम साम सानहुआ। लोग उन्हें शर्मा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM रुट बासें कैटरबोर्न में 89 ईयर्स ओल्ड के श्री
अम्बिराव जयवंत सोनू की मृत्यु हो गई है। श्री अम्बिराव जयवंत सोनू की मृत्यु हो गई है। वे पहले मेजिन शुगर एस्टेट में काम किया करते थे। उनकी अर्थी आज सुबह के 9:30 बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम

0: संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। गिरिधारी रोड कटसोया में 76 ईयर्स ओल्ड के महेंद्र गिरिधारी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 2 बजे बल्कि 1 बजे उनकी बेटी कुसी वर्मा के मकान कटोबोन कटसोया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशरों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ब्रांच रोड लालमाची में 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनीलाल रूपना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी बबीता रूपना के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कनाल लेन पालमा कटोबोन में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के हीरालाल रामबन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जीवन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन की 1 बजे उनकी पत्नी वीना रामबन के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नापोल बिजलोल के घर से बल्कि आली तमारें बॉम्बू में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्योति नापोल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नामनन को लोग उन्हें ची मादाम के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 2:15 बजे आली तमारें बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताइन तमारें बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। लातापी रोड बोनाक्यो में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के रामस्वरूप निरंजन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें धर्म के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे देवेंद्र रघु के मकान लातापी रोड बोनाक्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: सभी सुनने वालों का आप प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस के खेल जगत में अच्छे दिन चल रहे हैं। एक और लाजवाब परफॉर्मेंस मैडागास्कर में लगे अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हमारे लड़कों ने मैडागास्कर को 3-0 से हराया। सो अंडर 18 नेशंस कप में मॉरिशस के लड़के चैंपियन बने। बधाई हो जवानों। बधाई साइकिलिंग की हमारी महारानी लुकू दे बियोकेना को भी। टूर डे फ्रांस के ओवरऑल रैंकिंग में वो टॉप 10 में आई 9वें स्थान पर। इस बार भी पियना ने एक स्टेज जीता। कल नीस में 9 चरण पूरे हुए। इधर टूर डे ला रेनियो में मॉरिशस का ट्रिस्टन ऑडी चैंपियन बना। 8 साल पहले क्रिस्टोफर लगान वहां चैंपियन बना था। इस बार ऑडी ने बाजी मारी। क्रिस्टन ऑडी केवल 18 साल का है और इस उम्र में टूर डे ला रेनियो का चैंपियन बनना मामूली बात नहीं है। मतलब मॉरिशस में साइकिलिंग का भविष्य उज्जवल है। ब्रावो ट्रिस्टन। क्लब फैनग्रीज में अनफील्ड रोड में मोनाको ने लिवरपूल को 3-2 से हराया। फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स के गोल पर लिवरपूल 2-1 से आगे था। सेकंड हाफ में मोनाको ने पासा पलटा और लिवरपूल की हार 3-2 से। नए मैनेजर इराओला का पहला मैच अनफील्ड रोड में और पहली हार। आखिरी 2 फ्रेंडलीज बचे हैं दोनों कुमो के खिलाफ। फिर प्रीमियर लीग शुरू। मैनचेस्टर सिटी ने 3-1 से एटलेटिको मैड्रिड को हराया। उमा मामूश का डबल, 8 नूरी का एक गोल। ये मैच सेउल में खेला गया। प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल की हार हुई एमिरेट्स स्टेडियम में। बोरुशा डॉर्टमुंड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया। एमिरेट्स क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत पाया। फिर चेल्सी 3 दानियल ताजिम 3 डेलाप का डबल। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में किलमोनोक 1 सेल्टिक 5 हार्ट्स 4 दंडी यूनाइटेड 0 मदरवेल 0 फाल्कर्क 0 रेंजर्स 1 हिबेनियन 2। क्रिकेट श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले वार्म अप मैच में कल

0: इंडिया ने श्रीलंका 11 को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले इनिंग्स में 363 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 357 रन बना पाई। दूसरे इनिंग्स में 200 रनों पर श्रीलंका ने डिक्लेयर किया और टीम इंडिया 214 रन बनाकर जीत पाई। भारतीय टीम की पहली इनिंग्स में पदिकल 142 पर नॉट आउट रहा। और रीजनल फुटबॉल होस्ट टॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल रेड स्टार बोनाके दो, रेनबो गांबे 1 और स्पोर्टिंग बॉयज 5, एसोसिएशन होशनवा 1। क्रिकेट आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 मैच 6 में एपीपी लियोपार्ड्स ने एएमजी पैंथर्स को 2 विकेट से हराया। शनिवार को कॉन्टिनेंटल चीतास की जीत हुई थी वन हेल्थ जागुआ के खिलाफ 5 रनों से। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों पर भी इनकी ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ। ओकुले के आसपास के इलाके रॉयल रोड, रामप और सारहाम जिन स्ट्रीट के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि सोमवार 10 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और बेलोम के आसपास के इलाके, जी हाँ, बेलोम और सैमौते बेजुकाप के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि मंगलवार 11 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
3: रेडियो मॉरिशस।
4: ऑन द आवर, एवरी आवर, रेडियो मॉरिशस।

0: सात बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना। जी हाँ, सुबह का समय है और आज सोमवार 10 अगस्त 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, आपका मनपसंद प्रोग्राम। इस सप्ताह का पहला दिन है और इसकी शुरुआत आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए हमेशा हर सोमवार की तरह। जी हाँ, हमें पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उषा जी आज क्या गाना आप चलाएंगे, ऐसे ऐसे गाना चलाएंगे जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और सुबह जो है, कहते हैं ना, ज़िंदगी हमें एक नया मौका देती है कल की गलतियों को छोड़कर आज को बेहतर बनाने का। तो चलिए आज ये फैसला करते हैं कि कल की गलतियों को हम भूल जाएंगे, सुधरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर शांति मोहबीर जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता है। जो आपकी बातों का सम्मान नहीं करता है, उसके लिए आपका मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है।

7:09 हुए हैं दोस्तों। धूप हमें ये याद दिलाती है कि रोशनी की कदर क्या होती है और छांव हमें सुकून का मतलब समझाती है। इसीलिए जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो घबराए मत, क्योंकि कोई भी छांव हमेशा के लिए नहीं होती। बस हौसला रखिए, मुस्कुराते रहिए और वक्त पर भरोसा रखिए। साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। अगला गाना सुनते हैं, नया दौर फिल्म से लिया गया आशा जी, और साथ में है रफी साहब।

7:19 हुए हैं दोस्तों। चलिए, ये तो सच है कि जीवन एक सफ़र है और यहाँ पर आप लोग हम सफ़र बनकर साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। किशोर दा की आवाज़ में अगला गाना सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी से वो मांगते हैं जो शायद हमारे नसीब में लिखा ही नहीं होता, और फिर हम उदास हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, नसीब का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो भी है जो हमसे दूर कर जिया जाता है। 7:27 हुए हैं, चलिए सुनते हैं रेडियो सुर्खियाँ। अभी आप सुन रहे हैं

सुबह का नजराना प्रोग्राम 8 बजे भोजपुरी समाचार और समाचारों के बाद आपकी राशि और इसके बाद जी हाँ 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में 9 बजे समाचार और समाचारों के बाद नीतुषा प्रस्तुत करेगी आज की चर्चा प्रोग्राम। भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन पाएंगे रोशनी के साथ दिन के 10 बजे और 11 बजे संक्षिप्त समाचार और उर्दू प्रोग्राम आप सुनेंगे संक्षिप्त समाचारों के बाद सायदा सुबाई की प्रस्तुति में। 12 बजे मराठी प्रोग्राम मिसेस दरमिया प्रस्तुत करेगी और दोपहर के 1 बजे आप सुन पाएंगे तमिल प्रोग्राम कलाईवाणी की प्रस्तुति में और रत्ना प्रस्तुत करेगी रंगारंग प्रोग्राम गुजराती प्रोग्राम और 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम गीतों का कार्यक्रम रत्ना के साथ दोपहर के 2:30 से 4 बजे तक। 4 बजे आप सुन पाएंगे क्षितिज कार्यक्रम और 4:15 तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र के साथ आप सुनेंगे 5:30 बजे तक। 5:30 रत्ना प्रस्तुत करेगी बच्चों का कार्यक्रम और 6 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद चाइनीज प्रोग्राम जिनकी प्रस्तुति में और रात के 7 बजे से 7:30 तमिल प्रोग्राम कलाईवाणी द्वारा आप सुनेंगे। वंदना प्रस्तुत करेगी तेलुगु प्रोग्राम स्वलरा वेदिका। गीत गंगा प्रोग्राम 7:50 पर नितिन बापू के साथ जी हाँ मराठी प्रोग्राम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम देवीना प्रस्तुत करेगी रात के 8:10 पर। निसार के साथ जी हाँ महफिल शब प्रोग्राम रात के 8:40 प्रताप प्रस्तुत करेगा भोजपुरी तर्क का रात के 9 बजे से 11 बजे तक और रात के 11 बजे से 12 बजे तक सुनहरे पल प्रोग्राम आप सुन पाएंगे गिनिशा की प्रस्तुति में और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियां।

हेमंत कुमार साहब की आवाज में है अपना दिल तो आवारा, दिल तो आवारा है दोस्तों, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है बस खुशी ढूंढने में। और कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते ही औरों को दुख पहुँचाते हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं ना सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गांव में एक बुज़ुर्ग अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके पास एक नौजवान आया और गुस्से में अपने दोस्त के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगा। बुज़ुर्ग ने सब कुछ चुपचाप सुना और फिर एक मुट्ठी रेत उसके हाथ में रख कर बोले, अब इसे हवा में उड़ा दो। नौजवान ने रेत उड़ा दी। बुजुर्ग बोले, अब जो रेत हवा में चली गई है उसे वापस अपनी मुट्ठी में भर दो। नौजवान मुस्कुरा कर बोला, ये तो मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, बस अल्फाज भी ऐसे ही होते हैं, जो शब्द है ऐसे ही होते हैं, मुंह से निकले हुए लफ्ज वापस नहीं आते, इसीलिए गुस्से में बोलने से पहले एक पल रुक जाना, क्योंकि जख्म तलवार से नहीं कभी कभी अल्फाज से भी गहरे होते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त जिंदगी में बोलने का हक सबको है। जी हाँ, सबको है, सब बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है ये समझना ही असल समझदारी है।

7:43 हुए हैं दोस्तों और आप हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए। बस हमेशा की तरह आप साथ देते हैं, खूबसूरत गानों का मज़ा लेते हैं, बस इसी में हम खुश हो जाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में तीन चीज़ों को कभी हल्का मत समझना, समय, शब्द और रिश्ते। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, इसलिए आज को कल के भरोसा मत छोड़िए। शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए जैसे कि हमने कहा, और रिश्ते उनकी कदर तब मत कीजिए जब वो दूर हो जाए। जो अपने हैं उन्हें वक्त दीजिए, उनकी बात सुनिए और उनके होने का शुक्रिया अदा कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसीलिए कम शिकायत कीजिए, ज़्यादा शुक्र कीजिए और कम गुस्से कीजिए और दिल से ज़्यादा प्यार करें एक दूसरे को। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये वादियाँ, ये फिज़ाएँ। जी हाँ, आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बारिशी मौसम है, ठंड का मौसम है। ऐसे मौसम में आप लोग साथ दे रहे हैं, धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी की मोहब्बत जिंदगी में यूं दस्तक देती है कि इंसान खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचने लगता है। उसी मुस्कुराहट में अपनी खुशी और उनकी खामोशी में अपनी बेचैनी महसूस होने लगती है। 7:52 हुए हैं, चलिए ये गीत सुनते हैं और इस गीत के साथ हम भरेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, मॉरिशस में आज सोमवार 10 अगस्त से पीए वाला पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर ही नवा रोक लागू हो गलबा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 के तहत ये रोक 30 नवंबर ले लागू रही। देश में पानी के भंडार लगातार कम होत बा, यही के देखते ई कदम उठावल गलबा। देश के उत्तरी हिस्सा में पानी की स्थिति चिंता के विषय बनल बा। लानी कोलिया जलाशय अभी करीब 43% भरल बा, जो न देश के औसत से काफ़ी कमती बा। मिडलैंड्स जलाशय के स्थिति बेहतर बा, बकिर एकर पानी सिंचाई के बजाय घर के जरूरत खातिर बचा के रखल जाता। आवे वाला महीना में वर्षा सामान्य से कम रही के आशंका बा। पानी पर लगल रोक के असर गाड़ी धोए वाला कारोबार पर भी पड़त बा। प्रिन विलियम्स के में ई काम से जुड़ल कई गो कारोबारी लोगन सरकार से मदद के मांग करत हवन, जा उनकर कहना बा कि काम प्रभावित भइला के बावजूद कई खर्च जारी बा। घर के जरूरत खातिर पानी के सप्लाई जारी रखे खातिर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जमीन के नीचे के पानी, नदी और दूसर जल स्रोत के सहारा लेत बा। सरकार के मार्शल प्लान के तहत नया कुआं खोदे और पानी साफ करे खातिर प्रेशर फिल्टर्स लगावे पर भी काम चलत बा। मॉरिशस में जुलाई में सामान के दाम में बढ़ोतरी दर्ज भइल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में के 112.2 अंक से बढ़ के जुलाई में 112.9 अंक पर ही पहुँच गल, यानी एक महीना में 0.6% के बढ़ोतरी। शराब और तंबाकू के बढ़ल दाम के ई पर बड़ा असर पड़ल बा। देश में सालाना महंगाई के दर जून में 3.7% से बढ़ के जुलाई में 4.4% हो गल बा। एकरा पीछे डॉलर के मुकाबला में रुपया के कीमत कम होखल, विदेश से सामान लावे के बढ़ल खर्च और कच्चा माल के बढ़त दाम जैसन कई कारण बतावल गल बा। शिक्षा, डॉक्टर के फीस, घरेलू गैस और बिजली पर खर्च भी बढ़ल बा। शुक्रवार के सनख्वा में आलसू करीब

0: 50 ग्राम ड्रग्स जब्त कर ली बा। ई में मुख्य रूप से हेरोइन शामिल बा, एकरा अलावा सिंथेटिक ड्रग्स भी बरामद भइल बा। जब्त नशीला पदार्थ के बाजार कीमत 8.4% रुपया से अधिक मिलियन रुपया से अधिक बतावल गल बा। जाँच जारी बा। दूसर देश के खबर में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैले जंगल के आग के चलते आपातकाल घोषित कर देवल गल बा। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर इलाका में फैल गल बा। समरलैन, पीचलैन और आसपास के इलाका से हजारों लोग के सुरक्षित जगह पर ही पहुंचावल गल बा। पूरा ब्रिटिश कोलंबिया में अबले 20,000 से जस्ती लोग के अपन घर छोड़े के पड़ल बा। कई घर और संपत्ति आग के चपेट में आ गल बा। दमकल की टीम आग पर काबू पावे में जुटल बा। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुनला जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुना। लातापी रोड बोनाकोय में 77 बरिस के 77 के रामस्वरूप निरंजन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:45 बजे बोनाकोय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावांच के शमशान भूमि ले जावल जाए। नापोल बिचलोल अलीप्रियों बॉम्बू में 73 बरिस के 73 की मिसिज ज्योति नापोल गुजर गल हवन। पैदाइश नाम ननकू ज्योति नापोल, पैदाइश नाम ननकू। उनकर माटी आज दिन के 2:15 बजे अली तमारें बॉम्बू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। कानाल लेन पालमा कट्रोबोन में 76 बरिस के 67 की हीरालाल रामबन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दोपहर 2 बजे बल्कि 1 बजे उनकर पत्नी वीना रामबन के घरे कट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जावल जाए। ब्रांच रोड लालमाथी में 65 बरिस के 67 की सुनीलाल रूपना गुजर गल हवन। सुनीलाल रूपना गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी बबीता रूपना के घरे लालमाथी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावांचय के शमशान भूमि ले जावल जाए। गृहधारी रोड कत्स्य में 76 बरिस के 67 की महेंद्र गिरधारी गुजर गल हवन। महेंद्र गिरधारी गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा कुशी वर्मा गिरधारी के घरे कत्स्य से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद बसें कट्रोबोन में 89 ईयर्स ओल्ड के 89 की अम्बिराव जयवंत सोनू गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 9:30 बजे उन्हीं के घरे कटबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पार्मा के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद पांचू स्थानीय रोजिल में 74 बरिस के 67 की भवानी दिन तिलौती गुजर गल हवन। पैदाइश नाम समसागवा। उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घरे रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोदगोद कॉलव्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए। रोज लेन बाउंड्री ट्रेफ और रोजिल में 76 बरिस के 67 की मिनियामा इरापा गुजर गल हवन। पैदाइश नाम कौपेन। उनकर माटी आज 12:30 उन्हीं के घरे रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोदगोद के शमशान भूमि ले जावल जाए। स्कूल इन कोटेज में 64 बरिस के 67 के मुंती बिकन गुजर गल हवन। पैदाइश नाम रामनारायण। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति के घरे देवानंद बिकन के घरे कोटेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में 57 बरिस के 67 के महालक्ष्मी पुनित गुजर गल हवन। पैदाइश नाम सालांदी। उनकर माटी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे के शमशान भूमि ले जावल जाए। तिवारी स्ट्रीट रोजबेल में 87 बरिस के 87 के महालक्ष्मी गलचुला गुजर गल हवन। पैदाइश नाम अपादू। उनकर माटी आज दिन के 2

बजे उन्हें के घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मागजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। बुआडवाजो घोबियों में 60 बरिस के ससौतों के मोहम्मद ईशान आमिर अली मोहम्मद ईशान आगिब माली इंतकाल कर गल हवन उनकर माटी आज रात के 9 बजे उनकर

0: वाली के मकान को बीयू से उठा के दफनाई खातिर यूनियन पार्क का कब के कब्रस्तान ले जावल जाए। सैन फ्रांसवा जाविये स्ट्रीट पोर्टलुई में 90 बरिस के 90 ans के सारी फुनेसा मोहंगा पैदाइश नाम बुदाई, इंतकाल करगर हवन। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के घरे पोटली से निकाल के दफनाए खातिर बोमोशों के कब्रस्तान ले जावल जाए। लामेरे स्ट्रीट ओकुले में 53 बरिस के 53 के नीलकंठ कुमार गोबिंद गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के दौरान उठावल जाए और ये अंतिम संस्कार खातिर आली ब्रियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए। विरासामी रोड मूलका से सुरीनाम में 80 बरिस के 80 की दीप नारायण अराकी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के घरे सुरीनाम से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। ब्रांच रोड जोंचली में 79 ईयर्स ओल्ड के 79 के देवरानी भैरो गुजरगल हवन उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उनकर भाई धर्म भैरो के घरे ब्रांच रोड चौंसिली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जावल जाए। लाग्रीमों सैंपिया में 72 बरिस के 72 के भद्रया अपादू गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के डेढ़ बजे उनकर पत्नी माला अपादू के घरे लाग्रीमों सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोस्तों सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट कर थी जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 8:24 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, यहाँ पर अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल 80s के जो चंद खूबसूरत गाने हमने चलाए, बस उम्मीद है कि आपने खूब एंजॉय किया है। आज सोमवार 10 अगस्त 2026, चलिए सुनते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस पर। एरीज, मेष राशि।
0: इस सप्ताह आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। किसी पुराने व्यक्ति से बात दोबारा शुरू हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। धन के मामले में सोच समझ कर कदम उठाएं। भावनाओं में आकार कोई बड़ा निर्णय ना ले, और जहाँ भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय ना ले। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: ये सप्ताह आपके लिए स्थिरता और सुकून लेकर आ सकता है। आप जिस काम को लेकर काफी समय से परेशान थे, उसमें सुधार के संकेत है। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी गरीब करीबी से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें और बिना सोचे खर्च ना करें। अपने स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: इस सप्ताह आपकी बातचीत और समझने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद हो सकती है। काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रिश्तों में गलतफहमी को बढ़ने ना दें और जो कहना है शांति से कहिए। धन के मामले में अचानक कोई छोटा लाभ मिल सकता है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: कर्क राशि ये सप्ताह भावनाओं से जुड़ा रहेगा। पुरानी यादें आपको कुछ समय के लिए भावुक कर सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। काम में धीरे चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। अपने मन को शांत रखें और प्रार्थना पर ध्यान रखें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: सिंह राशि आपके लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी और लोग आपकी बात को महत्व देंगे, लेकिन अपने बढ़ते आत्मविश्वास को अहंकार ना बनने दें। प्रेम और रिश्तों में कोई सुंदर पल आ सकता है। धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत है। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो, कन्या राशि।
0: कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपको अपने काम को लेकर अधिक ध्यान देना होगा। छोटी गलती भी काम को प्रभावित कर सकती है।

0: इसलिए हर फैसला सोच समझ कर करें। परिवार में किसी की मदद करने का अवसर मिलेगा, पुरानी परेशानी का हल मिल सकता है। अपनी बातों को दिल में रखने के बजाय सही व्यक्ति से साझा करें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: तुला राशि, यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। काम और परिवार दोनों को समय देना जरूरी होगा। किसी पुराने रिश्ते में फिर से गलत गर्माहट आ सकती है। आपके लिए किसी नए अवसर का दरवाज़ा खुल सकता है। धन के मामले में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। किसी की मीठी बातों में आकर बड़ा निर्णय ना लें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपके लिए ये सप्ताह अंदर से मजबूत होने का है। जो बात आपको परेशान कर रही थी उसका जवाब धीरे धीरे मिल सकता है। किसी अपने से दिल की बात होगी। काम में आपकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन गुस्से में कोई कठोर शब्द ना बोले। आपकी खामोशी कभी कभी आपके लिए बेहतर साबित होगी। लकी नंबर है 8, लकी कलर है गहरा रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: धनु राशि, सप्ताह नए विचार और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आप किसी पुराने सपने को दोबारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा। यात्रा या किसी दूर के व्यक्ति से संबंध बनने के योग है। धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि, ये सप्ताह मेहनत और धैर्य का परिश्रम ले सकता है। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। रिश्तों में कठोर शब्द से बचना जरूरी है। धन को लेकर कोई महत्व योजना बना सकते हैं, लेकिन फैसला पूरी जानकारी के बाद ही करें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि, आपके लिए ये सप्ताह बदलाव का संकेत दे रहा है। पुरानी सोच को छोड़कर नए तरीके अपनाने होंगे। किसी मित्र से अच्छी सलाह मिल सकती है। काम में आपकी रचनात्मक सोच की प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों में स्पष्ट बात करना जरूरी है। अपने भविष्य को लेकर एक अच्छा निर्णय लेने का समय आ सकता है। लकी नंबर है 4, लकी कलर है बैगनी।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए भावनाओं और अंतर्मन से जुड़ा रहेगा। आप किसी पुरानी बात को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन बीते हुए कल को अपने आज पर हावी ना होने दें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। किसी अपने की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। धन के मामले में स्थिरता बनी रहेगी। प्रार्थना और सकारात्मक सोच आपको मन की शांति देगी। लकी नंबर है 7, लकी कलर है हल्का रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन।
0: तो प्यारे दोस्तों, आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। हम बस आपको यही कहेंगे, जो आपके हाथ में है उसके लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान पर भरोसा रखिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। 8:32 किशोरदा की आवाज़ में ये गाना सुनती है।

मेरे प्यार की तमन्ना, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे आगे, और इस गाने के बाद हम सुन पाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर

नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने बतियाब जा मैंग्रोव यानी मोंगलिया के विशेषता पर, मैंग्रोव के इकोसिस्टम के सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पिछला महीना 26 जुलाई के मनावल गल। मैंग्रोव जेके मोंगलिया बोलल जला, उस जमीन और समुन्दर के बीच एगो लकीर एगो बाउंड्री जैसन काम करेला, जहाँ बहुत ही अद्भुत इकोसिस्टम पावल जला। इकोसिस्टम के मतलब है एगो ऐसन परिस्थिति जहाँ प्राकृतिक माहौल में जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहेलन सा, जेकर से अनेकों जीव जंतु पर्यावरण प्रकृति और मानवाधिकार और मानवतावाद के फायदा होवेला। और दुनिया भर में तटवर्ती इलाका के जन समुदाय के खाना पीना

0: ना कि सुरक्षा होवेला, आजीविका और मानवतावाद की भलाई होवेला। और दुनिया भर में तटवर्ती इलाका के जन समुदाय के खाना पीना की सुरक्षा होला, आजीविका और मानवतावाद के भलाई होवेला। मच्छी और अन्य जल जीव के ई घर मानल जाला। खाली यही नहीं बल्कि मैंग्रोव प्राकृतिक तटवर्ती इलाका के सुरक्षा करेला, सुनामी, तूफान, बाढ़, इरोजन और समुन्दर के पानी के ऊंचाई से बढ़े में रोकी में। जहां मैंग्रोव बढ़ेला उ जमीन भारी मात्रा में कार्बन के पीले वेला और ई पृथ्वी के प्रदूषण से बचावेला, यहाँ पर जन प्रदूषण होता ओके घटावेला। फिर भी दुख के बाद बाकी मैंग्रोव ई पृथ्वी से बहुत तेजी से गायब होता। जितना तेजी से जंगल तबाह होता ओकर से 5 गुना जस्ती। मैंग्रोव अभी देखत ही जा तो दुनिया भर में लुप्त हो ले जाता और एकर से हमनी के पर्यावरण और हमनी के इकोनॉमी पर बहुत भारी खराब असर पड़ी। यूनेस्को के जो महानिदेशक हवन वो बोले हवन कि हमनी के मैंग्रोव जोन बा वो खतरा में पड़ गल बा और अनुमान बा कि 3/4 मैंग्रोव अब लुप्त होवे के कगार में बा और एकर पर निर्भर सब जीव जंतु भी खतरा में पड़ गल बा। यही खातिर यूनेस्को दुनिया भर में मैंग्रोव के सुरक्षा करता, एकर संगे संगे सब कीमती ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के भी सुरक्षा करता। बड़ा बड़ा प्राकृतिक पार्क, नेचुरल रिजर्व, विश्व विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए मैंग्रोव मॉरिशस जैसे ट्रॉपिकल इलाका में बहुत आसानी से जमेला। और भले ही 123 राष्ट्र और इलाका में मैंग्रोव पावल जाला, फिर भी दुनिया भर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ई 1% भाग ही रिप्रेजेंट करेला। ये सब मैंग्रोव पर समुद्री जीव के अलावा प्रवासी चिड़ै, हरिंग, बांदर, कंगारू और मधुमक्खी भी आश्रित रहेला। यूनेस्को विज्ञान पर आधारित समाधान खोज खोज के ये सब मैंग्रोव के सुरक्षा करे पर काम करता। स्थानीय जब जो जीव जंतु बा उ लोग के बचावे खातिर और एकर पर सब कोई के सहयोग के मांग करता। सकब जा बोले कि 1 हेक्टर मैंग्रोव सकब जा बोले कि 1 हेक्टर मैंग्रोव सकेला सड़क पर चले होला 2650 गाड़ी के कार्बन के अब्सॉर्ब कर लेवे और जे ई बर्बाद होइले जाए तक कार्बन डाइऑक्साइड के जोन और जे ई बर्बाद होइले जाए तक कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा खतरनाक रूप से ई पृथ्वी पर बढ़ जाए। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

चलिए श्रोताओं, कृषि का गाया हुआ ये भोजपुरी गीत सुनते हैं और इसी के साथ हम बढ़ेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। इसके बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा के साथ, भूलिएगा नहीं। और उषा को दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, क्षमा कीजिए, शुभ दिन आप सबको।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में आज से यानी 10 अगस्त से पीने के पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को CWA ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 लागू करने की मंजूरी दी थी। ये नियम आपको बता दें कि 30 नवंबर तक लागू रहने वाले हैं और देश में पानी का भंडार लगातार कम होने के कारण ये कदम उठाई जा रही है। तो पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों के बीच इरिगेशन अथॉरिटी ने देश के उत्तरी हिस्से में पानी की स्थिति की जानकारी दी। संस्था के अनुसार लानीकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। उत्तरी इलाके में पानी पहुंचाने वाले मिडलैंड्स जलाशय की स्थिति उतनी ही गंभीर नहीं है, लेकिन अधिकारी इसके पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के बजाय घरेलू ज़रूरतों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो पानी पर लगी ये पाबंदियों, इन पाबंदियों का असर खेती के साथ दूसरे कारोबार पर भी पड़ रहा है। प्लेन विलियम्स में गाड़ियां धोने का काम करने वाले कारोबारियों का मानना है कि वाहनों की धुलाई पर रोक से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के मकसद से CWA दूसरे जल स्रोतों का भी सहारा ले रही है। इनमें भूमिगत जल, नदियां और छोटी जलधाराएं शामिल हैं। पानी के सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के मॉशन प्लान के 6 में से 2 हिस्सों पर काम हो रहा है। मॉशस में जुलाई महीने में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार नए आंकड़े जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में 112.2 अंक से बढ़कर जुलाई में 112.9 अंक पहुंच गया है, यानी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी में शराब और तंबाकू की कीमतों का बड़ा असर रहा है। विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। शुक्रवार को शुरू हुई इस आग से अब तक 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
2: Your news

0: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: NBC Radio, हर पल आपके साथ।

0: से इतना पानी बरसल, काल तो मम इतना पानी बरसल, आज हमने कुछ बार बतियाप स सुखारी ड्रोट। एगो व्यंग है, काल इतना पानी बरसल, आज हमने सुखारी पर बतियाप स देखा। हाँ, सर्दी के मौसम में है नहीं जा, पर ड्राई सीजन वो बात है, इतना पानी न बरसता। और वो हमने देखा था जा कि कितना जन पाबंदी लगावल गल बातें इगी गाशों के लेके, सब कोई की तो परेशानी होवा था, पर हमने का करब सा, चाहेला जैसे बोली ला जा सैचवा, चाहेला सिगे करे के। तो हमने के संगे जुड़ल हुआ, ध्यान दिया जे कुछ पूछे के बाद सुखारी पर पानी के मामले में, जस्ती जितना हमने के खेतीहर हवन जा, हमने के सुनत हुआ जा 402-85-85-402-808-5 पर सक बजा हमने के फ़ोन करे पूछबा अपन सवाल। तो आज हो हमने के मेहमान हवन फागे के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी। तो चला इंकरा हमने स्वागत करी ला जा। भाई शंभू प्रणाम, नमस्ते।
1: नमस्ते नीतूषा।
0: हम जैसे बोला था काल तो इतना पानी बरसल, अच्छा लगल, हमने सब बोला था सब मम्म है जो पानी हुआ बाजे रिजर्वा लगे जाए तो कितना अच्छा रहत, पर देखबा तो ड्राइवो सीजन बाटे और उस सुखारी के मौसम पा पानी बा, पर कमती पानी बरसता। और वो एके में हमने के जितना कोसुमाते है सब, पर जितना खेतीहर लोग हवन जा वो लोगों सुफिया हुआ था जा। हमें जब हमने देखा था जा जो सुखारी बातें कितना चीज जो पाबंदी लगावल बातें है, चाहेला करे कि नहीं चाहेला करे के आगोजाज इगी गासों ये सब, तब जब हमने बात करत है जा जो खेतीहर हवन जा, हभी फजीर के पानी होवेला, दिन में इतना गर्म करेला, घामा होवेला, तो जितना लोग कारों में हवन जा काम करे लंजा, वो लोग जब आहोजाज करे लंजा बोलल जाला, जब आहोजाज कई बजे चाहेला करे के एकर बारे में तू बोलबा, जे दिन में करे अंजा तो जितना पानी सब होला सब सूख जाला, एवापोरे हो जाला, तो जितना जना तो हब भी तोहरा सुनत हवन देखत हवन वो लोग के कौन ची बोलबा कब चाहेला इस्तेमाल करे के पानी।
1: अच्छा, जितना लोग हमने के आज सुनत हवन जा सबके भी नमस्ते। तो जानेला जब कभी कभार जब दिन में कहूँ पर टहलने जात्रा ब त लौकेला कि खेत में हो जैसे बोलना सा ताक ताक स्प्रिंकलर चलते रहेला, पानी छर छर छर छर चलते रहेला, दिन में 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे चलते रहेला। लेकिन यहाँ पर ही हमने के चला सोचे कि जब घमा मारेला तो हो जन माटी के जन ओकर शफास रहेला तो वो जस्ती गरम रहेला, तो जब पानी ओकर में जब ओकर में गिरेला तापमान क्योंकि ओकर तनिशन उठल बाते तो वो कैसे बोलना चाहे इवापोरे हो जाला। और एगो पौधा के जो सब्जी हमने बोला था ओकर एगो पौधा के ओके पानी हिचे खातिर कौन सी पानी हिचेला ओकर जड़ी, तो जड़ी तो अब एकदम से ऊपर में नहीं रहेला ना, वो तो एगो 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर नीचे में रहेला। तो जब दिन में जब धूप रहेला तो आज हमने सिंचाई करब जा तो ढेर पानी नीचे जाए से आगे जड़ी ओके जड़ी के ओकर जन ओकर जहाँ पर लौबीमा बातें वहाँ पर आए से आगे वो वापो हो जला। तो ये कारण हमने के जो चाहेला करे के या तो सवेरे अंधारे ही है कैसे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 7 बजे ऊपर से बाद नहीं क्योंकि धूप तक निकल देला गर्म करेला, तो चला सवेरे ही ऐसे सिंचाई कर दे के ताकि पानी जो से सिंचाई होल ओके समय मिली नीचे गते गते जाके जड़ी के ओकर आसपास ले आए के ताकि जड़ी सकी ओकर प्रयोग करे।
0: या तो फिर लेवेला
1: नहीं लेता लेवेला ओकर पर आएला, या तो फिर सवेरे नहीं तो शाम के जब धूप जाता शाम के जब होता धूप ढलता तब तत्व अच्छे तापमान जो गिरी ना
0: जी,
1: जब सिंचाई हुई तब पानी के लेता मिली नीचे ले जाए के। अब कितना लेता जैसे बोला कितना समय ले नीचे जाके तो वो तो निर्भर बात है कौन इरीगेशन के प्रयोग करे। तो आज देखा एक जना एगो लौस से एक जगह में इरीगेशन का रहता एगो मोटा पानी जाता वहाँ पर ही तो हाली से दिशा हुई। अब जब कोई स्प्रिंकलर से भी करता तो दीपान कौन प्रेशों से आवा था तब कितना पानी नीचे मारा था तब गते गते भिंजले भिंजले भिंजले भिंजले तब नीचे रहा। अब कोई कोई ड्रिप इरीगेशन से भी करता वो तब गुद किसी वाला गुता गुता गुद गुद गुद जाके तब भिंजले जाए। लेकिन एगो खेतीहर सकी जाने कितना पानी बाते खेत में या फिर आज मांगता सिंचाई करे खातिर कि नहीं वो कैसे करी जैसे गल वाला बोले रानी उसका की हम माटी के लेके नीचे नीचे में 20 सेंटीमीटर तक कोड़ के इसे हाथ में पकड़ी सूखा रही था माटी तक गिर जाए

0: पचपच रही तो गोला बन जाए और आज इमिद रही तो माटी गिरी लेकिन धूल की तरह नहीं खाली गिरी और हाथ में तनि सुन माटी गल इमिजते से चिपकल रही। या फिर खेतिहर अपन जैसे बुध पहन लन जा बुधवे से वो माटी हटे जन से तो लोग तो अनुभव से जान जन जा कि जरी के पास अभी पानी बाकी नहीं। तो एक में कौन ची होता आज हमने दिन के सिंचाई करब जा तो क्योंकि पानी जस्ती एवापो हो जाए नीचे निकल तो हमने पानी के तक न जान करते हैं आज अब पानी के खतन पड़ता खर्चा करेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा हुई। तो जस्ती अच्छा रहा हमने कि जितना खेती हर लोग सुनता या तो अंधारे ही सिंचाई करिया जा ताकि पानी के लेता मिली नीचे जाए के या तो फिर शाम की कीजिएगा।
1: तो जैसे बोले थे वह ना चाहे वो फजीर के हो न तो सांझ के वो जस्ती अच्छा भगत पाते और वो जो दिन के रही वो अच्छा नहीं रही। तो ढेर दिन खेतिहर होवन भाई शंभू जी वो लोग जब अपन जन माटी के दिखलन जा कि उस सूखल बाते तो वो लोग के ऐसे में चलावेला कि हौजा जाके जन मटिया बाते चाहे ला उलाटे के एगो एगो शब्द है जा बाते मिनिमम न तो जीरो
0: टिलेज
1: कौन जी है।
0: अच्छा जब एगो खेतिहर माटी के तैयारी करता या फिर जैसे बोला सा आई अर्थिंग अप करता माटी चढ़ावता तो माटी के जब बीने करब तो माटी के तुरत हो मुठा जुनबा या कुछ हो तो तुरत हो तो नीचे के माटी थोड़ा लाहो जला लाहो के माटी नीचे चलावेला।
1: एगो निमन प्रैक्टिस है
0: निमन प्रैक्टिस नहीं है वो खातिन बोला जा जीरो या मिनिमम टिलेज करे के लेकिन कभी कभार पड़ेला करे के कैसे देखा गाजर के होकर खेती करब तो गाजर के खेती करब तो बिया पड़ेला है सेमे करे के तो बियावा जब मैं सेमे करब अब जो गाजर बा नीमन से डेवलपे हुए माटी में तो माटीवा के चला बीने करे के तो यहाँ पर ऐसा नहीं गो खेती में मतलब दूसर दूसरे गो शुआ नहीं बाते है पड़ी करे के लेकिन एगो आदमी गन्ना जाता कदुआ रोपे कोहड़ा रोपे टमाटर रोपे तो वो तो दरी में रोपल रहा न तो ओकर खातिन एको गनला एको यजांस ने बाते नेसेसिटी ने बाते कि जाके खेत के नित लेके बीने कर दे ओकर नेसेसिटी ने बाते उसा कि जाके जहाँ पर दरी करके खाली हुए पर दरी करके तब हुआ पर अपन अपन आए ट्रांसप्लांटेशन कर दे वहाँ पर या तो अपन बिया डाल दे तो इस प्रकार से माटी नहीं हिलल खाली एगो छोटा सुन जगह में खाली माटी हिलल बा। अब माटी हिला तो कौन ची होला जब मटिया के माटी जब घूम जाला नीचे के माटी जब ऊपर चला तो लाहू के तो माटी तो सूखल नहीं रहा बस कि वहाँ तो क्योंकि घमा लगेला न तो लाहू की तो माटी तो सूखल बा तो नीचे जब कोरब तो देखब तो नीचे तो थोड़ा इमिद रहेला। अब माटी लेके जब घुमा दिला तो नीचे के माटी जब ऊपर होल तो नीचे के जो माटी में लिमिजते रहल अभी कुछ ऊपर होगा तो वो सूखे लगेगा और ऊपर के माटी तो ज़्यादा सूखल रहल आगे से सूखल रहल नीचे चल गल तो इतना अच्छा नहीं बात है तो जीरो उ खातिन बोला जा मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज। अब एक में गो अंतर बा कौन ची है मिनिमम टिलेज और कौन ची है जीरो टिलेज। जो उदाहरण हम देली कि कैसे जहाँ पर ही नेसेसिटी नहीं बाते तो हुआ नहीं चला खेत के नेट बिने करे के खाली जहाँ दरी करे के बा हुआ पर ही कोड़बा और अपन दरी बनाईबा और बोबा वो होगा मिनिमम टिलेज। ठीक अब एगो चीज है जीरो टिलेज ओकर खातिन चला प्लानिंग करे के अपन ठीक से खेत के देख रेख करे के ओकर में माटी के ही नहीं कुटल दला।
1: अच्छा
0: ऐसे ही खेती कर दला अब कैसे अब बोल बा अजय माटी नहीं कुटल दला तो कैसे खेती कर दला। तो ऐसा नहीं माटी में खेती हर लोग कुछ कर ऊपर से आके ओकर पर मल्चिंग कर लन एगो एगो कुश है फिमिया कोपोस लापाए वुड चिप वगैरह वगैरह डलते जालन सा उसे माटी के ऊपर अब एगो कुछ होगा तो अब एगो पौधा लगाए के रही तो हम माटी में तो जैसा माचे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक माचे सब बा माटी में नहीं हो कुशवा में बाते ना तो खाली हो ऊपर के जो कुशवा बा वो हटा के ओकर में पौधा लगा देवेलन सा माटी तो छूलन सा नहीं
1: जी।
0: जड़ी अपने अपने आप जब पौधा बड़ा हुए जड़ी जब निकले लगी जड़ जब निकले लगी वो अपने आप माटी में घुस जाए। कैसे घर पे कभी कभार हमने पो में प्लास्टिक के जो पो रहेला वो खरीदला सा एक आगो पौधा लेके रख दिला सा आंगन में माटी के ऊपर कबो कबो देख ले हुआ दो तीन महीना चार

0: ना जिरक दिले हुआ
1: सूख जाए
0: ना अदा सूखी ताजे पानी ना बता उता सूख जाए ने ऐसे करा गन ला पुआ रख ले हुआ लेकिन सिंचते जातो तो पौधा ता बाते ता टेंशन बड़ा होता रिमो के कर जा वो प्लास्टिक वा के नीचे में फार के वो जरी जन बा वो डूब जाला माटी में ठीक ला ता तोहर जन पुआ रहल ओकर में ता जीरो तिले जोकल क्योंकि तू माटी के नहीं हिला ले ला तब जरी डूब गल ई करे खातिन और जैसे बोलिए एगो कुछ माचे ऑर्गेनिक आने खातिन ई में बहुत जैसे साला पैसे वगैरह करेगी क्योंकि एगो टेक्निक है ज़्यादा तक जो खेती हर जो बायो फार्मिंग में हो जाए नेचुरल फार्मिंग में हो जाए वो लोग अपनावे लग जा जीरो तिले जला माटी के नहीं हिला माटी के ऊपर एगो कुछ की तैयारी हो जला जो माचे ऑर्गेनिक से भरल बा ओकर में रोपाई होला जड़ अपने आप जाके माटी में डूब जला और इस कारण से क्योंकि है कुछ बात है तो माटी में जो निमिचते रहला वो बरकरार रहेला
1: तो अभी जैसे हमने जाने थे जब अभी ठंडा के मौसम बा पर सुखारिवो के जो बातें हमने देखा था जब ड्राई सीजन बातें तो हैसन जो मौसम बातें हैसन जो सीजन हुआ बातें खेतिहर लोग के वो लोग के तो चाहेला प्लांटेशन करे के काहे कि जे कुछ नहीं प्लांट बा तो कुछ नहीं मिली खाए के हम ये कोसो माते सबके तो तुहर देखे में जब सुखारी आवेला जब ऐसन हमने की माटी हो जाला ड्राई हो जाला निम्ने से सूख जाला जैसे बोला सर तो कौन चीज चाहेला करे के जैसे बोला तो वह टीलेज जो बाटे जीरो टीलेज जो बाटे चाहेला करे के उन्नत जो मटिया व चाहेला अस्पेरे करे के कि कब ड्राई सीजन खत्म हो जाए तब फिर से तैयारी करब
0: हाँ एक में दो तीन गो चीज बातें एगो बा गनला सुखारी के मौसम से गुजरा थे सब देखा ई एगो जैसे बोला से एगो फेनोमेन खाली ई बारिश के नहीं है हर बारिश देखा जा तो हर बारिश हमनी के ई समस्या आवेला सुखारी के या तो फिर एगो पेरियड आवेला जहाँ पर ही वर्षा कम होला या पानी कम होला तो ई हमनी के चला ई हमनी के अनुभव बातें हमनी के चला एक से सीख मिले के और कोनो कोना कोना योजना अपनाए के सबसे पहले तो आज एगो किसान जन बातें गन ऐसा एगो मौसम में जाए रोपाई करे तो ओके अब चला एक आध गो प्रश्न अपने आप से पूछे के किसान लगे सकेला दस बीघा हुई गन ला दस बीघा हुई या पाँच बीघा हुई तो अपने आप से चला प्रश्न पूछे के देखा आज हमारे पाँच बीघा में हम जब रोपाई करे या दस बीघा में जब रोपाई करे हमार लगे कौन योजना बातें कि हम सकब ई दस बीघा के सिंचाई करे क्योंकि आजे कठिनाई से गुजरब जा पानी नहीं रहता का करब जा तो जन आजे दस बीघा के ज़मीन बा ओकर में हम खेती करनी अब सुखारी जब आवे तो हमार लगे कैपेसिटी बा खाली दो बीघा के सिंचाई करे के तो आठ बीघा तो मर जाए तो पहला ओके चला सोचे के कि जन एवेस्टिस्मा करा था उसकी वो एवेस्टिस्मा के ओकर ओकर देख रेख करी क्योंकि जैसे बोला अंत में तो चाहला ओके सब्जी उगाई सब्जी मिले के फसल करे के ताकि ओके आमदनी मिले जब बेची तब तो सबसे पहला ई चला करे के ओके चला एगो निर्णय लेके कितना हमार कैपेसिटी बा सिंचाई करे के ओकर आधार पर ओके चला ओकर खेती बाड़ी करे के हाई एगो दूसर एगो खेती हर के नहीं चला आतान करे के इंतज़ार करे के कि कब सुखारी के मौसम आए या कब इरिगेशन अथॉरिटी पानी काटी या सेडुलिया पानी काटी तब जाके इधर इधर इधर उधर दौड़ी हाँ हमारे लगे है निभा चला एगो टैंक डाले चला है करे चला एगो सिस्टम राशन डाले वगैरह वगैरह हाई एगो चीज़ चाहला ओके हाँ और नावास चाहला करे के क्योंकि एगो प्रिपेयरनेस है ना जब ओकरे प्रॉब्लम नहीं हुए ओकरे समस्या नहीं हुई तो ई ऐसा एगो निर्णय ओके चला ले ई भी लेके कि चला हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम के चला एगो सिस्टम गैसो या एगो सिस्टम स्टोकास पानी के चला हमारे लगे एगो सुझाव रहे के हाई दुगो हो अब तीनवा गनला हाई सब योजना कर दिले बा अब ओके अब तो रोपाई करके माना तो अब ओके चला ऐसे सोचे के कि कैसे हम रोपाई करब कि जो हम अब सिंचाई हम तक करत आए जितना भी भा ओकर से तक करत आए तो कैसे अब हम रोपाई करब जमे जो पानी हम माटी में डालत आए वो जान नहीं होता वो एवापोए नहीं होता वो माटी में जाता वो जमे जड़ी सकी प्रयोग करे खासिन सकी प्रयोग करे जमे पौध

0: शिक्षा के लाभ हुए, दुगुबा कैसे जानने हुई। तो देखो सबसे पहला था जहाँ हमीदा पहले जब जाब सुवेनिया एरिया में जब जाब तो देखा कितना जगह हो ड्रिप इरीगेशन टूटल बाते पानी धराधर जाता तो इतने छावा था ना। तो जितना हो जैसे पहला सा लीकेज बाते एगो एगो एगो खेतीहर के चला जितना लीकेज बा सबके चला सुधार आने सब में चला सुधार आने के चाहे पानी जानने हुए। अब जब सिंचाई करे के बाद अब कैसे गन्ना कौन योजना अपनाए ताकि जो सिंचाई का अलग पानी एवापोरेट नहीं हुए। अभी कल में अनेक प्रकार की योजना बातें जैसे कि जब खेती करी तो चला ओकर जो भी सब्जी की खेती करता हूँ चला जहाँ भीरी भीरी रोपे के जब भीरी भीरी रोपा तो एगो ग्राउंड कवर कहते होला। तो जब ग्राउंड कवर कहते होला तो जन धूप रहेला माटी में सीधा नहीं मारेला तो एवापोरेशन कमती हो जाला। अब आज दूर दूर रोपा तो बस क्योंकि जैसे टमाटर बा अब एकदम से भीरी भीरी नहीं रोपा ना तो लगभग एक एंड पॉइंट एमित पाला पर रोपा जाता तो दूर दूर में बात है तो हुआ कुछ सकलाई करे हुआ चला किसान के मल्चिंग करे के। तो जब ऐसा जब खेती बाड़ी दूर दूर में बा तो आज मल्चिंग करब तो वही से तो अभी माटी जन बा तो गला ढक जाए जब ढक जाए तो सूर्य के जो किरण माटी में नहीं मारता माटी के तापमान नहीं भरी जब तापमान नहीं भरी तो एवापोरेशन कमती रही और मल्च भी तो आज नेचुरल मल्च से कर रहे ऑर्गेनिक सर की तो ऑर्गेनिक माटी हो जाए तब आई खेत में तो आई माटी में प्रभाव करी। दूसर ग्राउंड कवर कर ला लेकिन तुहर माटी ही में कौन सी बात है एगो माटी में आज माचे ऑर्गेनिक नहीं बा तो तू सिंचाई करबा उ तब माटी माटी में ढुक के चल जाए कहीं रेतनिये नहीं हुई या तो फिर एवापोरेट हो जाए। तब माटी में चला कोनो खेती करबा दरी में रही तो खूब दरी में माचे ऑर्गेनिक डालिया फीमिया डाल गाय के फीमिया जैसे हम हमेशा बोला सबसे बेस्ट है।
1: तो चाहे ला कोनो एनालिस करे के रुपाई से आगे कुछ हो
0: नहीं पानी खातिन देखा नेसेसरी नहीं बातें आज सकल एनालिस करते सकल ला करे क्योंकि एगो माटी में जानब जा कितना ऑर्गेनिक माटी बात है लेकिन एगो माटी के देख भी ही कर बता हम ही कोई जानी कोई जाए जाए एगो माटी में देखे तो जान जाए माटी कैसन बा किसी को माटी के देखब आज काला रंग के भीरी नहीं आवता तो अगर में माचो ऑर्गेनिक कमती बात है एगो माटी के पकड़ ला सिंचाई कर ला थोड़ी घड़ी में गन ला सुगल हाथ में पकड़ ला तो धूल कहते गिरेला ओकर में माचो ऑर्गेनिक कमती बात है। एगो माटी जन बा ओकर में देखा तो घास भी नहीं जमता तो ओकर में माचो ऑर्गेनिक कमती बात है क्योंकि आज घास नहीं जमता तो सब्जी कहाँ से जमी
1: तो हैजा परी घास के बात कर रहे घास एगो बड़का प्रॉब्लम है हमने के खेतिहर लोग खातिर आजकल बोलल जाला घास के नए उखाड़े के नए चाहे कबारे के कहे कि उ लोग मदद करेला तो ऐसा सुखारी के मौसम में जब जो सॉल मॉइस्चर बाते तो एक से जो खेतिहर हवन जा उ लोग कैसे जूझे लन जा।
0: हाँ तो ज़्यादातर कौन चेला एगो खेतिहर जब घास दिख रहा घास के कबाड़ देवेला हिया हमने के चला यहाँ देखियो एको गन्ना सम रूल नहीं बात है जैसे बोले अब जा चला घास निकालेगे या चाह घास नहीं निकालेगे हम नहीं सका वैसे बोले खेतीहर के चला अपन खेत खातिन अपन से निर्णय लेके एगो ऐसा जगह में हुआ जहाँ पर धूप रहेला एवापोरेशन जैसे बोला सर हाई रहेला बड़ा रहेला तो जैसे सिंचाई करब तो जो पानी बा उ एवापोरेट हो जाए जैसे अभी अभी बोली हम ग्राउंड कवर चला रहे के तो ग्राउंड कवर अनेक प्रकार के रहला कैसे ग्राउंड कवर हम बोली आज खेती करते सब भीरी भीरी रोपे कैसे लीसू रोप तो गोभी रोप तो भीरी भीरी रोप लो तो जो पत्ता बता ओवरलैप हो नीचे माटी के तो ढक दे। अब एक दूसर खेती करे तो जो दूर दूर में बात है तो आज नहीं सकब जैसे बोली प्रयास नेचुरल करे तो पढ़ी एगो दूसर योजना आने के जैसे जिसे माटी के ढकब तो माटी के ढके खातिन सकब जो घास निमन है थोड़ा लोग घास निमन बाकी से वीलबाग के घास जब छुट्टा रहेला तो निमन रहेला बाद में फुलाई से आगे सकबा निकाल दे या एक आध गो फुलाई दिया जब फिर से बिया मिली ना नहीं तो नहीं मिली तो अच्छा रहेला तो एगो ग्राउंड कवर रही। हाँ घासवा के टेंशन पानी तो ही छी लेकिन धूप से जितना पानी एवापोरे हो आज वो नहीं रहत तो ज़्यादा प्रभाव प्रभावित हो माटी वा तो एक आध गो ग्राउंड कवर तू ही सकबा रोपे कैसे एगो

0: उदाहरण के रूप में तुगनला आज अरुई के खेती करते या व्यूलेट की खेती करते लेकिन थोड़ा आज इस पास ही हुई तब बीच में सब कदवा के रोपाई कर दे या मान्योक की खेती करते तब बीच में सब सचित रूप दे कोई खेती हुआ लोग अरुई के खेत में देखबा लेकिन कुतुमिली छिट दे शुरू में तो कुतुमिली जब जमे लगेगा ओकरे तो पानी के कम ही बात है लेकिन जन जड़ बात है तो बिल्कुल ऊपर रहला माटी के तो जन पन्या एवापोरे हो जाए तो ओके मिल जाए अब जब ऊ टेंशन बड़ा हो तो वही एगो कहने को ग्राउंड कवर कहते माटी पर कर दिलक तो धूप से माटी में से पानी उतना एवापोरे नहीं हुई तो खेती हर के
1: निर्भर बात है जी। और वो हमने जब बात कर रहे थे जैसे सुखारी हमने आजकल हमने देखा था ऐसा जस्ती जन रीजन ली नो के बातें उत्तर क्षेत्र में बातें काफ़ी जना लोग परेशान हुआ जा पर दूसर जगह वो ये नहीं है कि हाँ प्लेन विलियम्स में है ऐसे तो है जा प्रॉब्लम नहीं बातें प्रॉब्लम हुआ था सगरों बातें तो कैसे चाहे लाइकर से जूझे कि अब
0: हाँ जैसे अच्छा बोला समझता था सगरों बातें प्लेन विलियम्स में भी पानी की कमी होला और हम किसान लोग के जानी ला जो अभी खोजा तो बोहोल के प्रबंध करे तो हम बोलती इस शॉर्ट टर्म में सुझाव नहीं निकली मैं लॉन्ग टर्म में हम बोलती जो खेतीहर लोग खासकर उत्तरी इलाका में होता लेनो में होता आज एगो ऐसा इलाका में होता जहाँ पर एक ऐसी बोला से कोसा ताशो आगे कुल बात है वहाँ खेती बाड़ी ढेर कोई करेला तो हम बोलिए थोड़ा चाहेला जाके रे घोपे हो के एगो एसोसिएशन या एगो कोऑपरेटिव में रे ग्रुपे हुई काहे क्योंकि एगो रे ग्रुप में द्वारा सकबा जा एगो बोहोल में एवेस्टी करे अकेले आज एगो बोहोल में एवेस्टी करब तो तोरा लग जाए लगभग 600,000 रुपया लग जाए 600,000 रुपया लग जाए लगभग तो एवेस्टी में भारी लोग के ला एक जना खातिर ना जाए करी तो लेकिन आज एगो के ग्रुप में करवा जाओ एगो कोऑपरेटिव कहते करवा जाओ कर में 10 गो 20 गो 25 गो 50 गो माँ माजे रही तो एवेज आज 600,000 से 10 गो रहता कितना होगा 60 मिल होगा
1: जी
0: तो कमती होगा ना हाँ एगो चीज़ सक लाई करे तब सक बजा बोहोल में से तब पानी और में चला एप्लीकेशन सब करे कि वाटर यूज ड्राई सब मांगे कि वगैरह वगैरह लेकिन पानी तब मिली ना कम से कम थोड़ा बहुत फिर बा सक बजा रिजर्व कैसे आज सकबजा 7 मिल के एगो ओवरनाइट आए थे वो कहते बनाए जब पानी आवता हमने के तरह जन जैसे पौलमा में जैसा बोल रहे हैं कि आप लगभग सैकड़ पूछा पानी तो पेजी हो जाए
1: जाया हो जाना हाँ
0: तो जब बेहतर रहत जन पेजी हो कि एगो ओवरनाइट आए थे वो कहते रह एगो बड़ा सुन तब पन्या आके कम स्टोक होता उतना पन्या था पेजी नहीं होता तब तब बिलात नहीं तब दूसर दिन या एक दो दिन दूसर दिन हवे खेतीहर हवे रिजर्वर में से सकदा ड्रिप इरीगेशन अपना के तो हवे में से आई सिंचाई करे हाई तो दुगो होल अब ऐसे दूसर दूसर योजना बात है जैसे कि
1: आजकल तक टैंक को सब मिला था
0: हाँ हवे चलने बोले हाँ तो एक दूसरा चीज बा उसका नाम है रेन वाटर
1: हार्वेस्टिंग
0: हाँ तो जब दिख जाते जैसे पानी बरसेला था दिख जाता सगड़ो बह के चल जला तो ओके चलना कप्तास करके ओके चलना जमा करे कि अब एक दू तरीका बागन लाइकर कप्ते करे कि एगो ता खेत में सकबा जागन लासें कहते कूड़े तब ओकर में रिटेंशन वॉल डाले जैसे मोटे पेपर प्लास्टिक रहला ओकर से सकबा बनाए सस्ता है बीतो वो सकबा बनाए लेकिन ऐसे सस्ता है या तो फिर खेत में गन ल तो हर एगो शेल्टर बाते एगो एगो कुछ बागन एगो छोड़ा सुन घर करते या गोदाम बाते तो ऊपर तो छत बन तो छत के ऊपर जो कुत्ते में चला दालू डाले के दालू डाल देब तैंक बा तो दालू के तैंक में जो भी पानी मिली तब कुछ तो मिला था ना तो स्टोकी हो तब ऊपर में सकबा ले अब हाय जो बोलिए अब रेन वाटर हार्वेस्ट स्कीम रेन सॉरी जो बोलिए माफ कीजिएगा जो बोलिए रेन वाटर हार्वेस्ट करके कप्तास दिलू करे के तो एक फिनोसे करे खातिर एगो स्कीम बाते रेन वाटर हार्वेस्ट स्कीम ओकर में से 50% तक पहुँचे के एगो प्लेटफॉर्म है लेकिन एगो फिनांसमेंट मिलेला तो ये तो एक छाना लाभ उठाए के सबसे तो इस स्कीम से छाना लाभ उठाए के फागे के दफ्तर में जाइए 16 दफ्तर बाहर के
1: देश में
0: तो कोने को दफ्तर में जाइए ओकर पर जानकारी मांगिए
1: जी तो हमने के संगे जुड़ल हवा बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज की चर्चा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर उनसे आज की चर्चा कार्यक्रम के साथ जुड़ल हुआ और वो हमने के मेहमान हवन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी फागेदानी से। तभी हमने सुखारी पर बतिया था जा खास तौर से हमने के जो खेतीहर हवन जा कितना परेशान हो जालन जा। भाई शंभू अभी तनी देर वाह बोले रहला कि जन खेतीहर हवन जा वो लोग अपन माटी के कैसे जनियन सा कि हाँ सुखल बातें निमन बातें तैयार बातें हाथ से बोले हवा कोनो और तरीका बातें जो न से वो लोग टेस्ट सकियन सा करे।
2: हाँ बिल्कुल एगो एगो छोटा सा डिवाइस है उसका नाम है टोंशोमीटर। कैसे हमने हमने अपन टोंशो चेक कर लिया जा ता एगो जिसर है पानी का तीन टोंशोमीटर ता ओके जब उसका में एगो अंग्रेजी में बोला से एगो प्रोब

0: जब माटी में दलबा लेके खोसबा माटी में तोरा एज के करी कि माटी के सैचुरेशन कितना बा, यानी कि पानी कितना बा ओकर में, तोरा एज के करी क्रिटिकल बा कोडे निमन बाते कि देर बाते ओकर में तोरा लौकी तो हाई हाई यो एगो अच्छा चीज बोला था, क्योंकि ई हम तक बोलने जैसे कैसे अनुभव कर सकब जा करे हाथ से न, तो जब बेगो लापाहे के प्रयोग करब जा तो एक द्वारा हम जाते हैं प्रेसिजन फार्मिंग के ओर। प्रेसिजन फार्मिंग यानी कि जितना चीज हम निर्णय लेब जा सब कैलकुलेट बातें सब गलत ऑप्टिमम बातें, तो कोई तमशोमित के सकला प्रयोग करे। आजकल जैसे बोला सा ढेर चीज अब डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज है, यही आशो भी एक यही सीमा ले हुआ था, टॉशोमेट जो इलेक्ट्रॉनिक रहला इलेक्ट्रॉनिक टॉशोमेट उसा की तोहर सिस्टम इरिगेशन संगे जुड़ल रहे, तब जब टॉशोमेट द्वारा जब पता चली कि माटी के जो मॉइस्चर कंटेंट बा वो गन्ना नीचे हो लाता, तो ऑटोमेटिक मग ना इरिगेशन वा सकी डिक्लोसे हो जाए इरिगे करे तब कटा जाए।
1: हबी एक शब्द इस्तेमाल कर ला टॉशोमेट, हमने की टॉशो होला तो हमने टॉशो चेक करी ला सा, एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करे ला जा स्ट्रेसे। हबी जो सुखारी के जो बकत आवेला जितना प्लान बाते गांची बाते वो लोग स्ट्रेसे होलन सा, कैसे स्ट्रेसे होलन सा?
0: जैसे हमने के शरीर में खून बाते पानी बाते, तो वैसे भी जो सब्जी है पौधा ओकर ओकरो कर सेलुलर लेवल में गन्ना भीतर में वो पानी है, तो 80% गन्ना 80% जो आज एगो सब्जी के लेबर एगो भाजी के लेबर तो 80% ओकर में पानी रहेला, तो आज वो पौधा के गन्ना पानी नहीं मिलता तो ओकर जो किसी बजा जड़ी जड़ी में से पानी आए तो वो जड़ी हुए पड़े तो खाइयो के आए ना, तो आज जब पानी नहीं रही तो जड़ी नहीं सके ठीक से काम करे, जब ठीक से नहीं सके काम करे तब पानी नहीं ले तो साथ साथ भी तब खाइयो के नहीं ले, तो जब खाए के नहीं मिली तो जन पेड़ पौधा बाबरी कुछ ओकर पत्ता में वगैरह वगैरह में तो पानी कम दे रही
1: हाँ,
0: तो देखभा ऐसे ही जब दिन के आज एगो पौधा के देखभ ओकर पत्ता देखभ तो मुझे लगा दें फेंक लेब, तो कुंचोला वो गन्ना वो जाने ला गर्म करता वगैरह तो उतना पानी नहीं चाहता, तो गन्ना ओकर जितना पो बा ओकर पत्ता में तो बंद कर देला वगैरह वगैरह फ्रेशो
1: फेबली हो जाला
0: हाँ ओकर ओकर टेंशन फेब हो जाला।
1: अच्छा
0: हमने कहते कोई टेंशन फेब हो जाला तो गन्ना पट्टा बुझला गन्ना अथी हो गल बा थोड़ा मुरझा बुझा गल बा, तब शाम के देखबा अपने आप गन्ना टेंशन ठीक हो गल तो पत्ता सीधा हो गल हाँ, तो हाँ अच्छा एनालॉजी बा हमने कहते बा, तो टेंशन फेब बोला तो देखबा पत्ता है मुरझाए लगेला, टेंशन जब कोहे हो गल तो सीधा हो गल, अब एक कुंच सकेला हो आज एगो पानी की सब्जी पौधा स्ट्रेसे हो, तो देखा जब स्ट्रेस रहला हमने कहते जब मनुष्य स्ट्रेसे रहला तब भी अनेक प्रकार के बीमारी वगैरह होला, तो पौधा के वही हाँ एक फर्क नहीं बातें, जब हमने के सब्जी वगैरह स्ट्रेसे रहला तब भी देखबा बीमारी आवता, तब भी देखबा जन पिलुआ नहीं रहा तो पिलुआ के अटाके करता था ऐसे होला।
1: तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात कर रही रहा जो स्प्रिंकलर्स कर इस्तेमाल होला हमने जानी ला जा ढेर आगे जो ओवरहेड इरिगेशन करत चाहत रहल आज तक ड्रिप इरिगेशन बाते अभी तक कितना हमने टेक्नोलॉजी संगे आगे बढ़ा था जाते और कौन कौन तरीका बाते जो उनसे जो खेतीहर हो जा लोग इन्वेस्ट सकें सा करे।
0: स्प्रिंकलर अपने आप में एगो मारू चीज नहीं है अच्छा, लेकिन जब देखिला जा कि जब पानी की कमी रहेला और जितना पानी स्प्रिंकलर में जाला तब झला की जान होता है एगो, तो अब एक आध गो चीज नाम मिनी स्प्रिंकलर है जैसे बोला माइक्रोजेट, तो वो छोटा छोटा रहेला इसे इतना छोटा नट्टा रहेला और ओकर में से जन पानी निकलेला एकदम से फिन रहेला
1: महीन
0: रहेला हाँ, तो एगो जेट स्प्रे कहते जला लावा पे कहते जेट स्प्रे कहते चल जला, तो लेकिन फैम ज़्यादा तक किसान लोग सके ओकर प्रयोग करे तो कमें कमती पानी जला एगो एगो स्प्रिंकलर की तुलना से कमें कमती पानी जाए, अब ओकर से कमती आज जाएबा तो सकबा जा ड्रिप इरिगेशन के अपना है, तो ड्रिप इरिगेशन में कौन खेती करता ओकर पर निर्भर रही, लेकिन ओकर में जो लॉस रहेला ड्रिप के तो ओकर में एक आध गो एतवाल पर एतवाल

0: ça 30 cm d'intervalle puis il y a 60 cm d'intervalle puis il y a n mètre d'intervalle puis tu vas pas dire gâté hay panini que la goutte à goutte donc les goutte à goutte goutte c'est gâté de la bonne bonne gâté de là tu as marti mais gâté et c'est OK si chai que là et car il avait or ego ça que bolé ego du sol technique batté drip ही में गना ला लेकिन drip की तरह ये गुटा गुटे निकला ये जो लॉस रहेला ये गाँव के वो ट्रांसपीरे होला
1: मतलब
0: या कैसे हमने जब श्रम करब जा एक्सरसाइज करब जा तो हमने ट्रांसपीरे होला सा अब सब सब मुंह से ट्रांसपीरे हुए हाथ से ट्रांसपीरे हुए हमने के दें ट्रांसपीरे होला ना तो हाँ जो चिवा है वो सब रो से ट्रांसपीरे होला चिवा के देख बा तब बुझाए गना एक वो बून निकलता ऊपर नीचे कोते चिवा के बुटों बुट निकलते रहला तो वो एकदम से धीरे से निकलेला और कौन चिवला कि शुरू से अंत तक गन्ला हो पन्या गन्ना गति का जब ट्रांसपीरो के निकला था तो गति गति गति मटिया के बीच चले जाला तो ये को एक वो नवा टेक्निक है हम मांग करते किसान लोग के अपनाए के खासकर जो मान जो जो खेती का तंत्र लोग के पौधा करीब में बातें या लेकिन फैन कर जो वो लोग खाते बहुत अच्छा रहा है
1: जी और हमने देख लीजा कि कई जगह पर जो माटी वो सब बातें वो लोग पानी के स्टोकास कर एक लिपोज नियन करीला
0: हाँ तो एक आग वो फौजी बेचाला देखा एक एक वो है नेचुरल और एक वो है उतना नेचुरल नहीं मानो उतना ऐसे बनावल गलबा तो नेचुरल है हमें के गाय के फिमिया
1: जी
0: उतना सबसे बेस्ट मॉइस्चर रिटेंशन एकदम बढ़िया करेला अब कभी कभार होला कि खेतीहर लोग के गाय के फिमिया नहीं मिलेला क्योंकि अब उतना लोग तो गाय के पोषण नहीं करते हैं तो ये लोग जा सकियन जा एगो बेचाला एगो लामूस कर लेते हम ट्रेडमार्क नहीं बोलब लेकिन जयन जा शॉप जहाँ पर दुकान में जब बेचाला तब बोलन जा ये गाशों के लामूस जनबा ओकर खरीदारी करे तब जरी लगे जब रुपाई के तंजा सक्यन सा और लामूस वाले के वहाँ डाल दे
1: राजा परी एक हला हमने आने आने अन्य लनी सा स्टूडियो में और दिखाई ले राजा कि कैसे रहेला वो लामूस वा तेने सुन पानी में डाल के वो भीग जाला और दलबा तो वो कितना दिन ले का
0: हाँ, बिल्कुल अब जब जब ओकर में जब लिमिटिंग से अंगे कॉन्टैक रही तो जब कॉन्टैक्ट में हुई तो वो लिमिटिंग के अब्सोर्बे हुए तो वो गोंफले हो जाए मोटा जाए फूल जाए
1: जी
0: तो जब फूल जाए तो कुंच हो पंजाब ओकर में बातें अब देखो जब माटी डिफिशिटे हो जाए और में पानी कम रही तो जो पानी गन लामूसवा में गन कब्जा हो लहल अब वो निकल के वापस माटी में जाए ताकि झरी सकी और प्रयोग करे ये भी एक अच्छा तरीका बा अभी कैसे सुखारे के मौसम में बा तो खेतिहर जो खेतिहर लोग सकियन जाए कर भी प्रयोग करे
1: तो अभी हमने बात कर रहे थे अच्छा जब सुखारी आवेला खाली खुला मैदान में नहीं हमने ढेर जना अभी जो शेल्टर्ड फार्मिंग वो करत हो वन सा लास्या के इस्तेमाल कर लेन तो हौजा परी जो टेक्निक बातें एरी गाशों के वो कैसे रहेला हमने देख ली सा ड्रिप इरीगेशन वो होला तो कौन फर्क बातें जब सुखारी आवेला तो
0: हाँ देखा बाहर जब बाहर में ओपन फील्ड में जब खेती बाड़ी होला तोहरा तो सकी थोड़ा वर्षा भी हुई कैसे अभी सुखारी के मौसम में ऐसा में थोड़ा वर्षा होता वो भी सकी मिले शेल्टर में तो नहीं मिली क्योंकि ऊपर में तो प्लास्टिक का वजह ढाकल बातें दूसरा चीज एक वो चीज़ है बोला था सीत लाश्यूर है
1: जी
0: है अंधारे जो गिरेला लाश्यूर है सीत गिरेला तो ओका में तो ढेर निमिचते रहला फजर के उठबा तो देखबा जा कैसे सब चीज़ भिंजल बाते पत्ता भिंजल बा ज़मीन भिंजल बा वगैरह वगैरह तो ओपन फील्ड में एगो आदमी जो ऑर्गेनिक मटर के प्रयोग करा था कैसे गाय के फिमिया तो जब सीत आवेला जब मटिया के छुएला तो क्योंकि ओकर खेत में माचे ऑर्गेनिक ढेर बा तो माचे ऑर्गेनिक बा वो सीत के कहना रिटेंशन मॉइस्चर के रिटेंशन करेला तब शेल्टर्ड फार्म में तो शेल्टर्ड फार्मिंग में इतना नहीं हुई क्योंकि सीत नहीं मिली ऊपर से तो ढंकल बाते तो यहाँ खेतीहर लोग के चला जाने के कि जब शेल्टर्ड फार्मिंग में जब एवेस्टी करता हो जाके से ईद ओपनिंग बात है या फिर माटी में भीतर में खेती बाड़ी करता है लेकिन शेल्टर्ड बातें तो तरह पानी के चाहेला पानी चाहेला और वो कारण जब जिस शेल्टर्ड फार्म कहला तो वो मोटा मोटा टैंक बगल में लगा हुएला किसी 9000 लीटर तक कहना जो टैंक आया 5000 लीटर तक तो लेके डाल दे लेकिन ADCWA, il y a

0: इरीगेशन रिवर की थी पानी काटा था, नदी में पानी सूखा था, तब पानी कहाँ से
1: कहाँ से आया,
0: तब ई कठिन उजाला एक में चार गो रास्ता नहीं बातें कठिन उजाला। तो हम बोलते खेतीहर लोग के जितना खेतीहर लोग के लाशें या बातें तो वो लोग सबके चला रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, सबके चला रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि जितना हो सके पानी की सकबा ओकर ओकर स्टोकास करे। हाई एगो दूसरा चीज़ है तो इडोपोनिक के सिस्टम में जब फेची गाशो होला यानी कि जब पानी जाता ओकर में ओकर ओकर फेचीजा सब जाता फेची गाशो होता तो लगभग 20% वह पूसा जन फेची गाशों के पानी है यानी ओके बोल सा लीचे वो साको कोपीट में से निकल के जान होला।
1: अच्छा
0: हाँ पर्यावरण खातिर भी नहीं अच्छा है ना तो एक आज मॉरिशस में एक एन मिलियन में कागे आज लाशें हुई तो आज हाई लीचे तो निकलत हुई अंगना में तो एन मिलियन लीट पानी लीचे के वो हमने के माटी में जाता हमने के एक्वीफेयर में जाता नापसू तेरह में जाता बिल्कुल नहीं अच्छा। तो हम बोलती जितना करके लाशें है वो लोग के चेहरा हो जो लीचे बाकर रिसिक्लाज भी करेंगे रिसिक्लाज अच्छे करियन सा फिल्टर करके तो फिर से हो 20% तक पन्या मिली ना। अब ओकर में एगो तेनिया न्यूट्रिया बातें अभी सकें जा ओकर से बाहर की सिंचाई करे या फिर ओकर अनालिस करके जनजन सा कितना कौन सी बा तो सकें सा ओकर में दूसर खाद डाल के तब फिर से विदा कर दे फैची गाशों का दिखाते
1: तो अभी जैसे जो समय से हमने गुजरत है ऐसा काफ़ी मुश्किल समय है जब सुखारी की बात करे थे ऐसा और जो क्लाइमेट चेंज हमने देखा था जब अब गर्म जब करेला तो जस्ती गर्म कर रहा था ठंडा हाँ। उतना ठंडा ना कर लग है जो लिवे हुआ बातें पर हमने नहीं जानब सर आगे कौन चीज हुई पर चाहेला हमने बोली ला सर मिचिगासों आदाप्टासों वो सब चाहेला करे के तो जो शेल्टर फार्मिंग के बात करे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहेला करे के तो जो खुला मैदान में बातें कोनो जो प्रोटेक्टिव जो कवर्स बातें जो से हमने के खेती हर लोग अपन खेती बाड़ी के पोते से करियन जा
0: सकियन जा करे देखा कैसे कैसे बोलने से खामा में इवापोरेशन ढेर होला तो एगो खेतीहर सकी कैसे बोला सा शेड नेट लगाए जो थॉट पूसा वगैरह लगभग वो कैसे जैसे कहाँ पूसा मैक्सिमम में ज़्यादा नहीं तो डेवलप प्लांट के जो डेवलपमेंट बा वो बिगड़ जाए तो आज 30% के शेड नेट वगैरह आज मिली तो सकियन सा पोतो डाल के तो ओकर में लगा दे बाहरी में तो उसे कहा हुए धूप जन रही वो माटी में तो उतना नहीं मारी ना
1: जी
0: और एगो ठंडक रही तो उतना एवापोरेशन नहीं हुई ऐसा नहीं कोई टेक्निक सके अंसर करे
1: तो अब धर ला इतना बीघा जमीन बात है एक बीघा दो बीघा तीन बीघा अब इतना कई जना आप
0: हाँ अब एक कुत्ते कुत्ते बोला ना कैसे शुरू में बोलनी तो हमने जान ही ला जा कि हर साल ये जो सुखारी है क्लाइमेट चेंज से बोला तो हम प्रभाव कर रहा था तो एगो प्रिपेयरनेस रहेगा नहीं सकल ला एगो एगो निर्णय आज ले जा और उतना एविस्म करे लेकिन गति गति चाहेला हमने के ऐसा ऐसा योजना अपनाए के जो हमने के जस्ती रेजिलियंट बनाए जस्ती प्रिपेयर बनाए हाँ चाहेला करे के गति गति
1: प्लानिंग वहाँ चाहेला हबिये से करे के जैसे
0: बोले मैंने सा कप्तास पानी के करे के रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब एक कुत्ते कुछ सुखारी चला अब रेन वाटर हार्वेस्ट कर
1: माने की प्लानिंग आगे से चाहेला सोच
0: अच्छा अब जब तक खोजे अब जब दालू खोजे अब जब चियो खोजे तो ऐसे नहीं चाहेला ना चला वो प्लानिंग रह के प्रिपेयरनेस रह के तो ई जब ऐसे प्लानिंग कर देबा जब ऐसे गते गते योजना आनबा तो अपने आप जैसे बोला सलाह की चाहे जिराब जुनबा अपने आप तोहर अंदर में चलाए अपने अपन तोहर स्वभाव में चलाए कि हम कि चला ऐसा ऐसन योजना अपनाए के जब इस सकब अपन खेती खेती बाड़ी निमन से करे सस्टेनेबल करे
1: तो जैसे बोले तो वह चाहेला सस्टेनेबल सोचे के आगे के इसके बारे में सोच के तो आवा जो सीजन आए होला बाटे प्लांटिंग सीजन जब बोलत है सर तो खेतिहर लोग के कौन चीज चाहेला करे के जब उ लोग बिया सब कीनत होवन सर जब नर्सरी स्टॉक स्टॉक उ सब उ लोग करत होवन सर तो हबे से कौन चीज चाहेला करे के
0: बिया पर हमें कुछ चीज बोलती जहाँ तो जन हमनी सेमोस इब्रिद की खरीदारी करी ला जा वो तो गनला अब आम ऐसे मिलेला ना जितना दुकान बातें वगैरह में मिलेला लेकिन चलानी के जाने के कि समझे के चलानी के समझे के कि ये सब सेमोस इब्रिड जो बाहर से आवेला इब्रिड होन सा और एगो सेमोस इब्रिड जब मैं अपन पोटेंशियल फुलफिल करी यानी कि जो जहाँ पर वो बनल गल हल और सेमोस बनावल गल बा पोजुए कर गल बा तो वो बोले वन गन्ना गन्ना हर एगो पौधा कैसे टमाटर के बाद

0: terhadap 10 kilomili. Mm-hmm. Kan lah saya, 10 kilomili. Tapi potensial 10 kilomili katin, ekosistem hibrid bahut kan lah hati ya, greedy ha. Bahut resource demanding ha. Jadi kalau kau cicai optimal kali ke, kau kad optimal kali ke, kau dek dek optimal kali ke, tak jangka terlalu 10 kilomili. Tapi ini ya, कितना पैसा खर्चा करते हो कितना कुछ तुम्हारा खेत आके देखेगे कितना कुछ चला पिलवा बीमारी वगैरह आवता था चलाओ कर देख रेख करे के लिपटे के तो इमें तो और खर्चा भी जाता पैसा जाता तो और समय भी जाता हम खेती हर लोग के बोलती चला हमने के ऐसा सिमोस के ऐसा बीज के प्रयोग करे के जो यहाँ पर ही लोकल में अडाप्टे हो सा हमने जैसे बोला था ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स हमने के अपन यहाँ के मॉरिशस के बीज ऐसे लगभग जितना हमने के लिए गेम फिलहाल बाहिए की है हमने के अपन करेला छोड़ के जाते हैं सर लंबा लंबा करेला रूपे हमने के अपन पिपंगाई छोड़ के जाते हैं सर इब्रिड पिपंगाई रूपे कोहरा भी हाइये में गुजरता हमने के अपन कोहरा छोड़ के जाते हैं सर इब्रिड कोहरा रूपे तो किसान के चला हिया हिया के
1: लोकल
0: लोकल बा क्योंकि वो लोग अडाप्टे हुए सा वो लोग जाने लग सा कैसे ऐसा ऐसा सीजन में लिपटे के हमने के मौसम से लिपटे के अब एक किसान से की बोले देखा हम के तब मनमार रोपे के तब नहीं मिला था तब ना जाके हम हाइब्रिड की ना था तो हिया पर ही हमने के सोच में एक प्रॉब्लम बात है समस्या बात है हमने की चला ऐसे नहीं चला सोचे के तो रहा मना करता अपन से बीज निकालेगे देखा थोड़ा नहीं परत की निकल थोड़ा पैसा बहुत साथ तो एक किसान जब रोपाई करता दिखा था अपन उसका खेत में बीमारी नहीं बा तो जो सबसे अच्छा फल निमन फल बात है तो क्योंकि चला छोड़ के ओके छोड़ दे के ओकर में से अपन बीज निकाले के ऐसे उसका की फिर से लेके रोपे मॉरिशस में अनेक बहुत ऐसा हम अनेक मतलब बहुत सब्जी बाद बीज निकाले टमाटर के बाद जैसे लेकिन फिलौत के बोलने बातें है हमने के मिर्च के बातें सोचा कितना चीज के बातें एक आध गो चीज में हाँ कमती रहला कैसे हमने के जो फूल गोभी भा वो गाना मौसम के आधार पर बीज बीज निकालला और रोपाई वाला ओलिवेरा की तो आज उमय है करबा तो हमने के विंटर सीजन जैसे बोला सा सर्दी के मौसम में हो रही ना तब दूसरा सीजन में सब खरीद दे मैं मना नहीं बा मैं लेकिन हो जन डिपेंडेंस बात है वो तो कमती होल और जन रुपए के बाद जन अडाप्टे बा वो मिला था रुपए के
1: और हमेशा एक चीज तू बोले हो वो प्रताप जी वो बोले रलन कि हवे चीज हमने खाई ला जो हमने पोजवा करी ला सा
0: हाँ
1: ये सबसे जस्ती अच्छा बात है
0: चाहे ला और हमने ऐसा नहीं कोई दौर से गुजरा था ऐसा जन ढेर कोई हम ही हम ही तो बोला तू हूँ बोले ला सब कोई बोला सब चीज महंगा होता हाँ तो सच्चे के सब चीज महंगा होता अब अनेक कारण है सब चीज काहे महंगा होला एगो कारण है जो हमने के पैसा बा ओकर जो मूल्य बात है वो गिरा था अब पैसा एगो काहे गिरेला अनेक अनेक अनेक कारण बात है एगो है हमने के जो डेवीज बात है वो कमती हो जाता क्योंकि हमने डेवीज पता बाहर आई पोटाशो का दिन पेयेगा देखे तो देखा आज बीज के कमती हैं पोते करब जा आज फर्टिलाइजर के कमती हैं पोते करब जा ज़्यादातर कॉम्पोस्ट या फिमिया घर यहाँ के फिमिया के प्रयोग करब जा पेस्टिसाइड कम प्रयोग करब जा वगैरह वगैरह तो हमने के डेवीज भी कम जाए हमने के जो इकोनॉमी बा वो रिजिडेंट हुई
1: तो चाहे ला जितना चीज हमने सकब सा पहुँचवा करे हमने लगे लोकली वो सबसे जस्ती अच्छा बात थी आज की चर्चा कार्यक्रम हाइजे परी समाप्त होला हमने सुखारी पर बतिया लीजा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी आप फागे के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हवा और हमने यही आशा करते हैं अभी सुखारी के मौसम बातें चाहेला पानी ज़ाया न करे के तो जितना पानी इस्तेमाल करत हुआ सोच समझ के इस्तेमाल करे चाहे वो इरीगासों के हो पिए के हो खाए के हो आगोजाज करे के हो मुँह धोए के हो जो चीज करबा निमन से सोच समझ के ओकर इस्तेमाल करिया हमने की टीम डने से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम शुभ दिन
0: शुभ दिन

0: आइए बिखरी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मौसम मियाद से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशंस 2026 के तहत ये पाबंदियां 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। देश के उत्तर में लानिकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है। इरीगेशन अथॉरिटी का कहना है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। वही गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कार वॉश कारोबार भी प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए CWA भूमिगत जल नदियों और दूसरी जल धाराओं का भी सहारा ले रही है। इधर मॉरिशस में महंगाई की दर बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई जून के 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। वहीं उपभोक्ता जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनख्वा में आज सुने करीब 549 ग्राम ड्रग्स जब्त किए जिनकी बाजार में लागत 8.4 मिलियन रुपए से ज्यादा आंकी गई है। जांच जारी है। विदेश में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बाद आपातकाल घोषित। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कई मकान और संपत्तियां आग की चपेट में आई है। दमकल टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Rue Julien Desjardins, Kupipme, 86 साल की, 86 years old की बीबी रहीबा पियाबक्स इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम जवाहिर। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से निकालकर दफनाने के लिए बिगहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हुए हैं। श्रोताओं, समय हुआ है भक्ति धारा कार्यक्रम का, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक।

वैसे श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हमें बस एक ऐसे पल की जरूरत होती है जहां मन शांत हो जाए और दिल प्रभु के चरणों में ठहर जाए। यही तो है भक्ति की धारा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ज्ञान चक्र के इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में हम इस ज्ञान चक्र को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान शिव के संबंध और उनके तत्व ज्ञान का वर्णन इस श्रावण मास में और इस प्रकार का कार्य बहुत पुण्य को देने वाला है। स्वयं सूत जी और शिव पुराण में ऋषियों से कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उस वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग सुनो, ये अत्यंत गुह्य है, परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान के स्वरूप और बताया है, उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, ये ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जो कुछ जगत में दिखाई देता है वो सब शिव ही है, वे महादेव ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं, वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे बहुत दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद रूप हैं। जैसे सूर्य आदि और ज्योतियों का जल प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार साक्षात भगवान शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं, मतभेद ही और अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद दिखाई जाता है, परंतु वेदांति नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर के अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वो शिव हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्याप्त है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर के स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर के उनके साक्षात्कार करने के लिए और साधना करता है, उसे वो साक्षात स्वरूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। श्रावण मास और इसी प्रकार से श्रोताओं मंथन करने का मास है। हम मंथन करें अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और मन में।

0: और तभी जा करके और हम शिव तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। श्रोता उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति और साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव तत्व का दर्शन प्राप्त होता है, शिव का दर्शन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण कह रहा है कि सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। शुभम लब्ध्वा न हृष्येत, कुप्ये लब्ध्वा वशुभम नहीं, द्वंद्वेषु समता तस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्य।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 258 यानी 258 दोहे के ऊपर की एक चौपाई, फिर 258 दोहा और उसके नीचे की चौपाइयों को आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग धनुर्भंग का चल रहा है। श्री राम रंगशाला में आए हैं और उन्हें धनुष उठाना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है, लेकिन सीता जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वे अधीर हो रही हैं उनके मन की व्यथा को, उनके मन की करुणा को, उनके मन के प्रेम को तुलसीदास जी बहुत ही सजीव ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सीता जी सोच रही हैं कि कोई भी राजा जनक को ये स्मरण नहीं कराना चाह रहा है क्या कि उनका प्रण कितना कठिन है और उस प्रण की यहाँ पूर्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई भी इस कठिन कार्य को संपन्न नहीं कर पाया है, तो भला ये कोमल शरीर वाले किशोरावस्था के श्री राम ऐसा कैसे कर पाएंगे। और ये सोच करके वे धनुष से प्रार्थना करती हैं कि हे धनुष, आप ही कोमल हो जाओ, श्री राम के कोमल शरीर को देखकर आप बिल्कुल उसी रूप में हो जाओ ताकि वे आपको आसानी से उठा ले, प्रत्यंचा चढ़ाए और इस प्रकार राजा जनक का प्रण भी पूरा हो जाए और मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाए। आगे अति परिताप सीय मन माही लव निमेश जुग सय सम जाही। सीता जी का एक एक पल बड़ी कठिनाई से बीत रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। आइए समझें निमेश क्या है और लव क्या है। निमेश का अर्थ होता है पलक झपकना, तो पलक झपकने में जो समय लगता है उसे समय की एक इकाई माना गया और उसे निमेश कहा गया। जैसे आज हम कहते हैं एक घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड, तो पहले जब समय का माप करना होता था तो उसमें एक इकाई माना जाता था निमेश। निमेश मैंने जितना समय हमें पलक झपकने में लगता है उतना समय। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निमेश नहीं, निमेश जुग सय सम

चाहीं। सीता जी के लिए निमेश का एक अंश यानी जितना समय पलक झपकने में लगता है उससे भी कहीं कहीं कहीं जो कम समय है वो भी उनके लिए 100 युगों की तरह बीत रहा है। यानी समय नहीं बीत रहा है, उनका हृदय इस बुरी तरह से धड़क रहा है। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है, हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, तो समय बिताने से नहीं बीतता। एक सेकंड भी लगता है जैसे घंटों बीत गए हैं। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ सीता जी की है। उनके लिए एक एक पल बिताना बहुत ही कठिन हो रहा है। और प्रभु ही चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। आइए इस दोहे पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि तुलसीदास जी यहाँ बिल्कुल अपना जो उनका कवि रूप है उसे प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि वैसे तो वो कवि हैं, हर जगह उनकी कविता ही है और उनका जो कवि रूप है वो तो हर एक शब्द में दिखाई देता है, लेकिन इस प्रसंग में चूंकि ये कोमल भावों की अभिव्यक्ति है इसलिए तुलसीदास जी इसे बहुत ही बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी गहराई से चित्रित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु ही चिताए पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। क्या तात्पर्य है आइए समझें। यहाँ तुलसीदास जी केवल घटना का वर्णन नहीं कर रहे हैं बल्कि सीता जी के नेत्रों, उनकी वाणी और उनके हृदय के सूक्ष्मतम भावों का चित्र अंकित कर रहे हैं। सीता जी की मनः स्थिति का इससे अधिक सजीव और मनोवैज्ञानिक चित्रण शायद ही कहीं देखने को मिले। श्री राम धनुष के समीप पहुंच चुके हैं। सीता जी का हृदय आशा, भय, प्रेम और संकोच से एक साथ भर उठा है। वे कभी श्री राम को देखती हैं तो अगले ही क्षण लज्जा और आशंका से अपनी दृष्टि पृथ्वी पर झुका लेती हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सखियां हैं, माँ हैं, तरह के लोग वहाँ उपस्थित हैं, तो सीता जी के मन में लज्जा भी है। इसलिए एक क्षण वे राम जी को देखती हैं और फिर तुरंत लज्जा के कारण अपने नेत्रों को झुका लेती हैं। तुलसीदास जी ने इस क्षणिक नेत्र चंचलता को राजत लोचन लोल कहकर अत्यंत सजीव बना दिया है। लोल शब्द केवल आंखों की गति के लिए नहीं है बल्कि यहाँ लोल शब्द से तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय की व्याकुलता को भी चित्रित किया है। इसके बाद कवि की कल्पना और भी अद्भुत हो जाती है, लेकिन आइए पहले इसे एक बार और समझें। तो कह रहे हैं कि राम जी को देखकर फिर पृथ्वी को देखती हैं, कभी राम जी को देख रही हैं, कभी अपनी दृष्टि झुका ले रही हैं, क्योंकि शायद आंखों में आंसू भी भरे हुए हैं, जल्दी से अपने नेत्रों को झुका लेती हैं, एक तो लज्जा के कारण और दूसरी बात कि उनके मन की व्यथा कोई और न समझ पाए इस भाव से। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी के चंचल नेत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चंचल क्यों? क्योंकि कभी राम जी को देख रही हैं, कभी अपनी दृष्टि को नीचे झुका लेती हैं। तो ये जो उनके नेत्रों की जो चंचलता है वो कैसे लग रही है? मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां। आइए इसको समझें। 2 मछलियां

मछलियां कौन सी हैं? सीता जी के दो नेत्र मान लो दो मछलियों की तरह हैं। और चंद्रमंडल रूपी डोल क्या है? यानी एक डोल है, एक बड़ा सा कटोरा है, और वो कटोरा कौन सा है? सीता जी का मुख। सीता जी का मुख जो गोल है वो मानो एक कटोरे की तरह है, लेकिन वो कटोरा कैसा है? कहते हैं विदुमंडल, चंद्रमंडल रूपी डोल। देखिए कितना सुंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह है, गोल है, कोमल है, उसमें एक आभा है, कांति है, और साथ में उनका रंग एकदम गौर वर्ण का है, इसलिए तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में मानो दो मछलियां खेल रही हों, यानी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कुंड हो और उसमें मछलियां खेल रही हों, चंचलता है मछलियों में, उसी प्रकार सीता जी के मुख रूपी, ये जो चंद्रमा रूपी मुख है सीता जी का, चंद्रमा के समान सुंदर उनका जो मुख है, उसमें उनके जो दो नेत्र हैं वो मानो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यानी बताना चाहते हैं तुलसीदास जी कि किस प्रकार सीता जी के नेत्र कितने सुंदर हैं। यानी इस वर्णन से वो कई बातें एक साथ बता रहे हैं, एक और सीता जी के पूरे मुख की सुंदरता का वर्णन, उनके नेत्रों की सुंदरता का वर्णन कि उनके नेत्र मछली की तरह से हैं, बड़े बड़े नेत्र और उनमें चंचलता, और दूसरी ओर उनकी मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि नेत्रों की चंचलता से उनके मन की चंचलता का भी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे नेत्र चंचल हैं वैसे ही उनके मन के भाव कैसे हैं, कभी एक भाव आता है कभी दूसरा, और यही उनके मन के जो भाव है वो उनके नेत्रों में झलकते हैं, या उनके नेत्रों के भाव उनके हृदय के भावों में झलक रहे हैं। और आगे तुलसीदास जी और सुंदर वर्णन कर रहे हैं, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसा अवलोकी, लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अद्भुत वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आइए समझें इसे, सीता जी कुछ कह नहीं पा रही हैं, उनकी वाणी बिल्कुल मौन है, किससे कहें, क्या कहें, उनके अंदर लज्जा है, क्या कहेंगी अपनी सखियों से, या क्या कहेंगी माँ से, या क्या कहेंगी पिताजी से कि मैं श्री राम को मैंने हृदय में बिठा रखा है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन हे मेरे पिताजी आपने बड़ा कठिन प्रण कर रखा है, ये धनुष तो राम जी उठा ही नहीं पाएंगे, ये सब बातें सीता जी नहीं कह सकती, इसलिए उन्होंने अपने दुख को अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा रखा है, लगता है कि कुछ कहना चाहती हैं लेकिन मुख से शब्द निकल नहीं पाते हैं, मर्यादा के कारण, संकोच के कारण, लज्जा के कारण। तो तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं कि जैसे वाणी उनकी क्या है? भ्रमरी, यानी भौंरा, यानी स्त्रीलिंग, भौंरा और भौंरी, तो यहाँ पर भ्रमरी बोल रहे हैं। गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, अली नहीं कहा, अली मैंने भौंरा, अली नहीं कह रहे हैं, यानी भ्रमर का स्त्रीलिंग शब्द भ्रमरी, तो बोल रहे हैं कि सीता जी की वाणी किसकी तरह है? भ्रमरी की तरह है। उनका मुख कैसा है? कमल की तरह है। और आपको मालूम है कि ऐसा माना जाता है कि जो भौंरा है वो रात में कमल के अंदर ही बंद हो जाता है, और जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, सूर्योदय होता है, और

जब कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खिलती हैं, खुलती हैं, तो तब जा कर के भौरा उसमें से निकल पाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी, उनके मुख रूपी कमल में मान लो रुक गई है, या उनके मुख रूपी कमल ने उसे रोक रखा है। सामान्यतः भौरा कमल पर जाकर मधु का पान करता है, परंतु यहाँ सीता जी की प्रार्थना शब्दों का रूप नहीं ले पा रही है। उनके मन की विनती अधरों तक ही आकर रुक जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वाणी रूपी भौरा मुख रूपी कमल के भीतर ही ठहर गया हो। ये केवल उपमा नहीं है, बल्कि भाव की चरम अभिव्यक्ति है। सीता जी का प्रेम इतना गहन है कि शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। और इस वर्णन में तुलसीदास जी ने रूपक अलंकार का अद्भुत वर्ण प्रयोग किया है। वाणी और भौरे तथा मुख और कमल के बीच अभेद स्थापित किया है, और साथ ही निर्जीव वाणी को भौरे की भांति आचरण करते हुए दिखाने से मानवीकरण का भी स्पर्श मिलता है। इस पूरे चित्र में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन है, लेकिन साथ ही चिंता, लज्जा और उत्कंठा के भाव मिलकर इस पूरे वर्णन को बहुत ही मार्मिक बना देते हैं। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लाज क्या है, लज्जा क्या है, रात्रि की तरह है। तो जैसे रात्रि में भ्रमर कमल के अंदर बंद हो जाता है, अब वो प्रकट नहीं हो पाता, यानी बाहर नहीं निकल पाता, उसकी गुंजार बाहर सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार मानो सीता जी के मुख रूपी कमल में उनकी वाणी रूपी भ्रमरी बंद हो गई है और वो प्रकट नहीं हो पा रही है। आगे और सुंदर वर्णन है कि लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, यानी कितना कह नहीं पा रही हूँ, कितना सुंदर वर्णन है। नेत्रों का जल यानी उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप सोच के देखिए उनके उनके जीवन का कितना बड़ा निर्णय इस एक क्षण में होने वाला है। क्या मन स्थिति रही होगी सीता जी की। एक ओर लज्जा, दूसरी ओर संकोच, तीसरी ओर मर्यादा, और चौथी ओर हृदय में उमड़ता हुआ प्रेम। क्या करें वे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हैं। आंखों में उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन उन आंसुओं को भी वो बहने नहीं देना चाहती, क्योंकि यदि आंखों से आंसू बहेंगे तो सखियां देख लेंगी, माँ बैठी हैं पास में वो देख लेंगी, और सबको सीता जी के मन के भाव पता चल जाएंगे। सीता जी ने अपने भाव किसी को नहीं बताए हैं, उन्हें उन्होंने हृदय के अंदर ही मानो बंद करके रख छोड़ा है। इसलिए अपने आंसुओं को भी जो आंखों से बहने के लिए आतुर हो रहे हैं, उन आंसुओं को सीता जी ने कैसे रोक के रखा है। तो तुलसीदास जी एक उपमा देते हैं, उपमा मैंने एक उदाहरण देते हैं, उपमा एक अलंकार है। काव्य में बहुत सारे अलंकार हैं, अभी हमने रूपक अलंकार की बात की, उत्प्रेक्षा की बात की, यहाँ उपमा अलंकार है। तो जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति सोने को पकड़ के रख लेता, सोना मतलब गोल्ड, जैसे कोई बहुत कंजूस व्यक्ति अपने धन को, अपने सोने को इस तरह से पकड़ के रखता है कि कहीं वो उसकी मुट्ठी से निकल ना जाए, उसी प्रकार सीता जी ने अपने आंसुओं को रोक करके रखा है कि कहीं किसी तरह उनकी आंख से कोई आंसू छलक ना जाए और उनके मन की स्थिति का किसी को भी अनुमान ना होने पाए। ये है सीता जी की मनः स्थिति, और इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, जैसे लग रहा है कि सीता जी के

हृदय के एक एक भाव को तुलसीदास जी स्वयं साझा कर रहे हैं या स्वयं महसूस कर रहे हैं। आगे क्या होगा इस प्रसंग को आगामी कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगी। धन्यवाद।

चलिए श्रोताओं, 10:40 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक आलिए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। सोमवार का दिन है आज, और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, और सावन का महीना है, और ऐसे में हम शिव जी को पूज रहे हैं। चारों तरफ जो है दुनिया भर में शिव जी की जो है उनकी महिमा का गुणगान हम कर रही है, उनकी जय जयकार कर रही है। वैसे कहें तो जब हम शिव जी की महिमा की बात कर रहे हैं, जहाँ शब्द कम पर जाते हैं वहाँ भक्ति बोलती है, जहाँ रास्ते जो है मुश्किल लगते हैं वहाँ विश्वास संभालता है, और जहाँ मन बेचैन होता है वहाँ प्रभु का स्मरण सुकून देता है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सुन सकेंगे अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

चलिए श्रोताओं, चैन भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। वैसे एक ऐसी धारा जो है, जो हमारे भीतर नहीं, वैसे जो बाहर नहीं, हमारे भीतर बहती है, जहाँ जो है शब्द जो है कम पड़ जाते हैं, वहाँ भक्ति जो है बोलती है। इसके बारे में हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, भक्ति तो उस विश्वास का नाम है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, प्रभु की कृपा और उनकी सीख मेरे साथ हमेशा बनी रहे। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

शिव जी के बारे में बात कर रही है। श्रावण मास का महीना है। वैसे श्रावण मास केवल पंचांग का एक महीना नहीं बल्कि श्रद्धा का, संयम का, आध्यात्मिक उन्नति का एक पर्व है। इस पावन समय में प्रकृति अपनी हरियाली से जीवन में नई उम्मीद जगाती है और भगवान शिव की भक्ति मन को शांति और शक्ति से भर देती है।

चलिए श्रोताओं, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलाज डे बेलोम्ब और सैमाउतें बेजुकप के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 11 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, भक्तिधारा कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद आप उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ सुन पाएंगे। हमारी ओर से नमस्कार, शुभ दिन।

0: सुनते हैं एक बार फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में आज से पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लागू। CWA के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026-30 नवंबर तक लागू रहेंगे। देश के उत्तर में लानीकुलिया जलाशय फिलहाल करीब 43% भरा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहीं मिडलैंड्स जलाशय के पानी को सिंचाई के बजाय घरेलू जरूरतों के लिए बचा कर रखने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। इन पाबंदियों का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। गाड़ियों की धुलाई पर रोक से कौवाश से जुड़े कारोबारी प्रभावित हैं और सरकार से मदद की मांग कर रही है। वहीं घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी भूमिगत जल, नदियों और दूसरे जल स्रोतों का सहारा ले रही है। इधर मॉरिशस में महंगाई बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मुताबिक सालाना महंगाई दर जून में 3.7% से बढ़कर जुलाई में 4.4% हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी एक महीने में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट और कच्चे माल के बढ़ते दामों को इसके प्रमुख कारणों में बताया जा रहा है। सनखुआ में आज सुने करीब 549 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इनमें से मुख्य हैं हेरोइन। जब्त नशीले पदार्थों की बाजार कीमत 8.4 मिलियन रुपए से अधिक आंकी गई है। मामले की जांच जारी है। विदेश स्तर की खबरों में पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आग करीब 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और कई मकान आग की चपेट में आ गए हैं। दमकल टीमें आग पर काबू पाने में जुटी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड पेटी त्रिविया में 68 साल के लक्ष्मी विजय किसुन दयाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें शेखर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के

ढाई बजे, कल दिन के ढाई बजे शपेल ओंदों दुमुरा रॉयल रोड पेटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। आपको याद दिला दें कि श्री विजय किशन दयाल बोबासा के रहने वाले थे। अलीगढ़ मेबर्ग में, 68 साल की 68 ओल्ड की मुनियामा वानापिले अपिया की मृत्यु हो गई है। मुनियामा वानापिले अपिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम लचिगादू, लोग उन्हें वीना के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके दामाद विश्वानंद रमाना के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शम्मे फरोज़ा,

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है।

अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम मां कह बैठते हो तुम्हारी मां बनाया, और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है।

मोमिनों, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम न हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुना नहीं, लेकिन जो कस्द दिली से करो उस पर मुआवजा है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

में किताबुल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो, ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है।

और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे, और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है।

0: मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए, और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए, और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए।
1: वो

0: عليكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार।

अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुमसे बुख़ल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से घशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जवानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुख़ल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे तो अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था। ये लोग खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश खाना बदोशों में जा रहे और तुम्हारी खबर पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करें मगर कम।

मुसलमानों, तुमको अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी बेहतर है, यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो।

और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गई।

मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया, फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी यानी जान दे दी, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया, वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल न कर सके, और अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में काफी हो गया, और अल्लाह जोरावर है गालिब है।
1: सदकल्लाहु लज़ीम। मोहतरम सामीन, महरूमी ये है कि हम हर चीज़ पढ़ें लेकिन कुरान पाक ना पढ़ें, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: क्या लिखूँ हम्द उस अल्लाह की लफ्ज़ों में, क्या लिखूँ हम्द उस अल्लाह की लफ्ज़ों में, जो ना मांगूँ तो अता करता है, मांग लूँ तो बेहिसाब देता है, मांग लूँ तो बेहिसाब देता है। मौज़े सामेईन, आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। हर पीर की तरह अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावते इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है आला हज़रत का किरदार। आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। यानी तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना हमारे दरमियान मौजूद है और सफ़र के महीने को आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ख़ास निस्बत है, और आज हम इस अजीम हस्ती का कुछ तस्किराए खैर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितने कमालात अता फरमाए थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के जिस पहलू पर भी नज़र दौड़ाई जाए तो अक़ल हैरान रह जाती है कि अल्लाह पाक ने एक ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया, यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि अल्लाह पाक ने एक हस्ती में इतने कमालात अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को अगर कोई एक जुमले में पूछना चाहे, अगर कोई एक लफ्ज़ में समझना चाहे कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हस्ती क्या थी, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नारा हिंद में लगाया जाता है, इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फ़ना हैं। आप एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी सारी ज़िंदगी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इश्क में गुजरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर सब कुछ अपना क़ुरबान करने के लिए तैयार।

तैयार रहते, लेकिन इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ और इश्क रसूल ही की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जो अमल का जज्बा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की गोया अमली तस्वीर बनने का जो जज्बा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत से हमें देखने को मिलता है, आज हम इसी किरदार आला हज़रत को इस नियत से सुनते हैं कि अल्लाह पाक तुर्बते आला हज़रत पर करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए, सईदी मुर्शिदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। खलीफा आला हज़रत हज़रत मौलाना सैयद अय्यूब अली रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बयान है कि एक साहब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में हाज़िर हुआ करते और कभी कभी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इनके घर पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक गरीब महल्ले में रहने वाला गरीब सा इंसान, टूटी फूटी पुरानी चारपाई जो सहन में किनारे पर पड़ी रहती थी, इस पर बड़ा झिझकते और डरते हुए बैठ गया। साहिब खाना ने बड़े कड़े तेवर से, यानी कि टेढ़ी निगाहों से, बड़े गुस्से की निगाह से इसको देखना शुरू किया कि गरीब और फ़कीर आदमी वो कैसे चारपाई पर बैठ गया है। जैसे आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ किसी गरीब को बैठने देखना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि गरीब हो मिस्कीन हो, ज़माने में जिसका कोई नाम ना हो वो हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये सब देख रहे थे तो इस अमीर आदमी ने जिस तरह इस गरीब को देखा तो गरीब बेचारा सहम गया और वापस चला गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ये बात बहुत महसूस हुई, आपको बहुत फील हुआ, मगर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कुछ नहीं फरमाया। और कुछ दिनों के बाद अब वही शख्सियत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के यहाँ आए। आला हज़रत ने अपनी चारपाई पर करीब ही इन्हें बिठा लिया, वो बैठे ही थे कि थोड़ी देर में करीम बख्श नामी हज्जाम यानी बाल काटने वाला भी आ गया। वो तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ख़त बनाने के लिए आए थे। वो सोचो विचार में पड़ गए कि मैं कहाँ बैठूँ, आला हज़रत बैठे हैं साथ में शख्सियत भी बैठी हैं और मैं गरीब आदमी हूँ। वो ये सोच ही रहे थे कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फ़रमाया, करीम बख्श भाई खड़े क्यों हैं, मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, आप इन साहब के बराबर में बैठ जाइए। अब वो शख्सियत जो अपने बराबर में किसी गरीब को बिठाने के लिए तैयार नहीं होती थी, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक हज्जाम को, बाल काटने वाले शख्स को इनके बराबर में बैठने का कहा, अब इन साहब की गुस्से में ज़बरदस्त कैफियत बनी और फौरन उठकर चले गए और इसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास कभी ना आए। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अमली तरबियत करने की ज़रूरत है जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इन साहब की भी करने की कोशिश की और आज हम सब के लिए शानदार मैसेज और पैगाम है। उलमाए किराम ने तकब्बुर की जो चंद मिसालें पेश की गई हैं, हमें बताई और सिखाई हैं कि ये भी तकब्बुर की एक अलामत है कि इंसान किसी को अपने से कमतर समझे और अपने बराबर में बैठने को पसंद ना करे कि ये मेरे बराबर में कैसे बैठ सकता है। बदकिस्मती से आज तकब्बुर बहुत आम हो गया है, हालांकि ये गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। वो हदीस पाक शायद हम में से सबको याद होगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मगर आज हम सब बस मुँह से कहते नहीं हैं, मगर मुझ में तकब्बुर है, मगर हमारा अंदाज़ बता रहा होता है कि ये तकब्बुर वाला अंदाज़ है। वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने दुनिया में माल दिया है, वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने शोहरत दी है, दुनिया में अच्छा और ख़ूबसूरत चेहरा दिया है, या किसी भी वजह से इन्हें कोई मनसब, कोई इख्तदार, कोई ताकत मिल गई है, अब बंदा अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। कई लोगों का अंदाज़ होता है, कहते हैं मैं क्यों सलाम करूँ, मैं पहले सलाम क्यों करूं, बल्कि मुझे लोग आकर सलाम करें, मैं जाऊं तो लोग खड़े हो जाएं, मैं जब तक बैठा रहूं तो लोग खड़े रहें, मेरे बराबर में कैसे कोई मुझसे कमतर बैठ सकता है। अगर तकब्बुर इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं।

प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, यही तो तकब्बुर है। तकब्बुर की तारीफ भी यही की जाती है कि इंसान किसी दूसरे मुसलमान को अपने से कमतर समझे, अपने आप को इससे आला समझे, बेहतर समझे, यही तो तकब्बुर है। जबकि तकब्बुर के बहुत सारे असबाब भी हैं। क्योंकि आज मेरा टॉपिक सिर्फ तकब्बुर नहीं है, इसलिए मैं चंद मदनी फूल देकर आगे चलूँगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला की सीरत से ये सीखी है कि इमाम अहले सुन्नत ने गोया ये प्रैक्टिकल करके बताया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अल्लाह पाक के नज़दीक मर्तबा किसका है। कुरान मजीद वल्फुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफ़ान, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। जो लोग ज़्यादा परहेज़गार हैं वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। जबकि ये कहाँ से तय हो गया कि ज़्यादा माल वाला ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, ज़्यादा हुस्न वाला ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, ज़्यादा वजाहत वाला ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? नहीं नहीं जनाब, अल्लाह पाक की बारगाह में वो इज़्ज़त वाला है जो ज़्यादा परहेज़गार है। अब इबादत में भी तकब्बुर आ जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ चूँकि अपने इस्लामी भाइयों से भी मुखातिब हूँ, बाज़ औक़ात पाँच वक्त का नमाजी हो, नफली रोज़े रखने वाला हो, लेकिन इबादत भी तकब्बुर दिलाती है। भाई देखो, मैंने 30 दिन का रमज़ान शरीफ में एतिकाफ़ किया, इसने एक दिन का भी नहीं किया। ज़रा सोचिए, आपके इन जुमलों से ख़ुद को बेहतर आप समझ रहे हैं। मैं तो रमज़ान के साथ साथ शवाल के रोज़े भी रख रहा हूँ, इसने तो शवाल का एक रोज़ा भी नहीं रखा। मैंने दरस निज़ामी कर लिया, इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने नमाज कोर्स कर लिया, ये तो अभी तक सही नमाज नहीं पढ़ता। दूसरे को कमतर समझना, यही तो तकब्बुर है। और ये शैतान का एक ऐसा जाल है, एक ऐसा वार है जो मज़हबी लोगों के अंदर भी आ जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत से ये समझिए कि किसी सूरत भी किसी को अपने कब से कमतर नहीं समझना। आज हमारी बिरादरी की वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से, अपने नसब की वजह से, अपनी ज़बान, अपने सूबे की वजह से लोग कहते हैं हम तो आला हैं, हम आगे हैं। हरगिज़ हरगिज़ नहीं, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, जो कौनैन के वाली हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकैदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे वालिद आदम एक हैं। सुन लो, किसी अरबी को आजमी पर, किसी आजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अलबत्ता जो परहेज़गार है वो दूसरों से अफजल है। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में तुम इसमें ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईने किराम, रंग व नसल की वजह से कोई आला नहीं, माल व दौलत की वजह से कोई आला नहीं, मुल्क कौम मिल्लत और ख़ानदान की वजह से कोई अरफा व आला नहीं। अल्लाह पाक की बारगाह में आला वो है, इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। मगर आज हम मुँह से या ज़बान से तो नहीं कहते, मगर हमारा अंदाज़ तकब्बुर वाला होता है। हमारा अंदाज़ बताता है कि मैं तकब्बुर कर रहा हूँ। देख लीजिए, मस्जिद में इमामत कौन करता है? जो मिलियनर है, जिसकी बहुत सारी दुकानें हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो हसीन जमील है, जो ऊंचे ख़ानदान वाला है? नहीं, इमामत का जो अहल होगा, जिसने इमामत सीखी होगी, जिसने इल्म हासिल की होगा, जो परहेज़गार है, जो गुनाहों से बचने वाला है, जो बाअमल है, हम उसे ही इमाम बनाना पसंद करते हैं, हम उसे ही आगे करेंगे। भले से वो रंग में गोरा नहीं है, भले से ऊंचा ख़ानदान नहीं है, भले से वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन वो परहेज़गार है, वो मुत्तकी है, वो सुन्नतों पर अमल करने वाला है, वो शरीयत पर अमल करने वाला है, हम उसे आगे करते हैं। और यही है तरीक़ा है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए बनी इसराइल का आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बात और आसान समझ में आ जाएगी। एक ऐसा शख्स था जिसकी इबादत के चर्चे थे, शोहरा था, अल्लाह पाक की बारगाह में ऐसा मर्तबा था कि वो इबादत गुजार जहाँ जाता उस

0: के सर पर बादल भी साया करता चला जाता। यानी वो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स, उस नेक शख्स, उस इबादत गुजार के लिए ये इनाम अल्लाह तबारक व ताला ने दिया कि उसको साया एक बादल करता ताकि उसे धूप ना लगे। वहीं एक बड़ा गुनाहगार शख्स था, एक दिन जब उसने देखा वो सोचने लगा कि इतना बड़ा इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह पाक की रहमत तो देखो जिधर जाता है बादल भी साया करता है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बराबर में जाकर बैठ जाता हूँ, अल्लाह पाक की रहमत इस पर बरसेगी तो उसके कुछ छींटे मुझ गुनाहगार पर भी आ जाएंगे, मेरे इतने गुनाह हैं, इतनी खता हैं, शायद मुझे मेरा मालिक माफ़ कर दे। वो बेचारा गुनाहगार शर्मिंदा शर्मिंदा इस इबादत गुजार के बराबर में जाकर बैठ गया। अब जब बराबर में जाकर बैठा, जो इस वक्त तक तो नेक था मगर शैतान ने दिल में तकब्बुर दाखिल कर दिया, इस गुनाहगार से कहता है, तुम और मेरे बराबर में, तू ज़माने का बदनाम गुनाहगार है और मैं अल्लाह पाक का मुकर्रब बंदा हूँ, तू मेरे बराबर में कैसे बैठ गया, चल इधर से खड़ा हो। इस इबादत गुजार ने, नेक कहलाने वाले इस शख्स ने, इस मिस्कीन आजीज और नादिम, क्योंकि वो निदामत के साथ आया था, अच्छी नीयत से आया था, उसे खड़ा कर दिया। बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला गया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामईन किराम, आप जानते हैं फिर क्या हुआ? जब वो गुनाहगार शख्स खड़ा हुआ जिसको कोई नहीं जानता था, वो बादल जो नेक बंदे के सर पर साया किया करता था, अब इस गुनाहगार के साथ चलने लगा। अल्लाह पाक ने इस ज़माने के नबी पर वही भेजी कि जाकर इस गुनाहगार और नेकोकार दोनों बंदों से ये कह दीजिए, आज से अपना अमल दोबारा शुरू करें, गुनाहगार की नीयत अच्छी थी, निदामत थी, शर्मिंदगी थी, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करना चाहता था, एक नेक बंदे के साथ बैठकर बरकत लूटना चाहता था। अल्लाह पाक को इसकी आजजी इतनी पसंद आई कि इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अब दोबारा अपने आमाल शुरू करे और इस नेक बंदे को बता दीजिए कि तेरी नेकी की वजह से बादल तेरे साथ चलता था, मगर अब तूने तकब्बुर किया, तेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए गए, अब अपना अमल दोबारा से शुरू कर दो। ज़रा सोचिए तो सही, लम्हा भर का तकब्बुर, एक घड़ी का तकब्बुर ज़िंदगी के पिछले सारे आमाल बर्बाद कर सकता है, मगर आज हम सोच रहे हैं कि ना जाने कितनी बार तकब्बुर कर जाते हैं, कभी किसी के ख़ानदान के फ़र्द को देखकर कि देखो वो गरीब ही रह गया, वो पीछे रह गया, वो आगे भी नहीं बढ़ सका, आता ही कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, जाहिल का जाहिल रहा, मेरे बच्चों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं, मुझे देखो मैंने मेहनत की तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अपने दिल से पूछिए, किसी को कमतर समझना यही तो तकब्बुर है, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, फैज़ान रज़ा के ज़रिए अपने दिल में ये बात उतार लीजिए कि किसी हमें किसी पर बरतरी साबित करने की ज़रूरत नहीं, हमारे बराबर कोई भी बैठे वो हमारे आका का उम्मती है, क्या मालूम यही रब की बारगाह में मुझसे ज़्यादा मकबूल हो, क्या मालूम अल्लाह पाक का नेक बंदा हो। जी हाँ, अल्लाह पाक ने अपने वलियों को बंदों में छुपा कर रखा है, हमें नहीं पता ये मिस्कीन जिसे कपड़े पहने पुराने कपड़े पहना हुआ है मैले अपना हमें नहीं पता ये मिस्कीन जिसे कपड़े पहने पुराने कपड़े पहने जिसके बाल भी बिखरे हुए हैं जो देखने में भी इतना खूबसूरत नहीं है, क्या मालूम अल्लाह पाक की बारगाह में इसका क्या मर्तबा होगा। लिहाजा हर मुसलमान की इज्जत कीजिए, हर मुसलमान से मोहब्बत से मिलिए, यही इस्लाम का पसंदीदा अमल है। बहरहाल ये तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की एक बात है कि हमने अभी सुना कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने हमें क्या सिखाया कि आजजी करना है, गुरूर नहीं करना, हर एक मुसलमान का अदब व एहतराम करना है। आइए नियत करते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की ज़िंदगी मुबारक से हमने जो सीखा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर अमल करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो दूसरों को तक पहुंचाएंगे। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावते इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद

सुनहरे अकवाल ज़र्री, खुश कलामी ऐसे रात मुस्तकीम की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला का डर हर किस्म के डर को ख़त्म कर देता है। कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत को जाए तो 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं और बहिश्त में बाग तैयार करते हैं। बेजा खर्च करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। सबसे अच्छा अमल ज़ुबान की

सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में माह रमज़ान में जब रोज़ा रखा, बहुत गर्मी होने की वजह से और आप पर उस वक्त रोज़ा फ़र्ज

नहीं था, इसलिए आपके वालिद आपको अंदर कमरे में ले गए और आपको मिठाई दी और कहा, इसे खा लो। आपने कहा, मैंने रोज़ा रखा है। आपके वालिद ने कहा, दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं देखेगा, तुम खा लो, तुम अभी बच्चे हो। आपने कहा, भले कोई ना देख रहा हो, मगर मेरा रब जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है वो तो देख रहा है। सुभानअल्लाह।

इस दुआ के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। पाक परवरदिगार को हालत मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दे दी, राह में भटक गया तो रास्ता दिखा दिया, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला और माफ़ी को पसंद करने वाला है, हमें भी माफ़ फरमा और हमें बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

回首情已远，身不由己在天边，才明白爱恨情仇，最伤。

घड़ी मिला लीजिए, इस समय दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर माइक पर आपका साथ देने आ पहुंची है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक आपका मनोरंजन करने के लिए आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इतना आसान है, बिल्कुल जैसे आप जानते हैं 4028085 नंबर है रेडियो मॉरिशस का। जी हाँ, 4028085। फोन कॉल के माध्यम से अपने पसंदीदा गीतों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं 5251705। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस बरसाती मौसम को एंजॉय करते हैं और इस मदहोशी से भरे कार्यक्रम में लाजवाब गीतों का ये सफर हम शुरुआत करते हैं सावन को आने दो फिल्म के इस गीत के साथ, जिसमें जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की प्यारी सी आवाज है।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं। लाजवाब गीतों के इस सफर में एक रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर शकुंतला जी की, जो वो मोतायलोंग से साथ दे रही हैं, और उनकी ननंद गायत्री, बेटा अजय और बेटी सुनीता जो नुवेलफॉन्स से हैं, उनके नाम करना चाहती हैं एक नॉन फिल्मी गाना। बेशक आपकी पसंद का कार्यक्रम है, तो चाहे फिल्मी गाने हों, चाहे नॉन फिल्मी गाने, चाहे हो कोई गजल, बेशक आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने गानों की लिस्ट। और इस वक्त 2:36 हो चुके हैं, तो चलिए विपिन सचदेव की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना हम उनके नाम करते हैं।

प्यार से मिलना, क्योंकि जिंदगी में प्यार ना हो तो कुछ भी नहीं, और जब प्यार करते हैं तो डरने की क्या बात है। चलिए इसी के साथ मोगले आजम का ये अगला गीत है उदय जी की पसंद पर चलाने जा रहे हैं। वे हमारा साथ दे रहे हैं, प्यारी पत्नी संगीता और बेटी है स्मृति, साथ ही साथ उनकी समधन है ज्योति और समधी जी है सुनील जो बुआशेरी से जुड़े हुए हैं, बेटी कीर्ति, दामाद है नागेश और छोटा सा नानू केयान के साथ। लता जी की प्यारी सी आवाज़, मोगले आजम फिल्म से लिया हुआ ये गीत।

आपकी पसंद। आपकी पसंद पसंदीदा गीतों का ये कारवां, ये सफर है। और इसी के साथ चलिए, गर्लफ्रेंड का ये गाना मांगा है गायत्री जी ने, सैपिया से साथ दे रही हैं पिचवेजे सैपिया से, और उनकी प्यारी बहन है अमृता, जिनकी तीन प्यारी बेटियां नेहा, क्षिति, दिव्या, और साथ है उनके बेटे सुधीर और कमलेश, साथ दे रही है उनकी बहू सुधा, और इसी के साथ मीरा जी भी, यानी उनकी प्यारी भाभी मीरा भी साथ जुड़ चुकी है, जिनकी दो प्यारी बेटियां हैं रिशा और मेधा, वे भी हमेशा प्यार से जुड़ी रहती हैं। तो चलिए, किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाज में रखा हुआ गर्लफ्रेंड का ये लाजवाब सा प्यारा सा गीत।

0: आपकी पसंद।
1: कहना तो हमें यही है कि आपकी पसंद कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। शाम के 4 बजे तक हम जुड़े हैं और बिल्कुल इस वक्त 2:48 यानी 3 बजे हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ, भूलिएगा नहीं। तो चलिए लाजवाब गीतों के इस सफर में हम भी जुड़ चुके हैं। प्यार भरे गानों का ये सफर हम लेकर आए हैं केवल और केवल आपके लिए। और कुछ गाने ऐसे हैं जो इतने लाजवाब हैं और इस कार्यक्रम के बीच जब हम इन गीतों को रखते हैं तो ये सफर और भी हसीन हो जाता है। जैसे कि हमारा ये अगला गाना जो है गुलाम अली साहब की आवाज़ में फिल्म निकाह से लिया हुआ गीत। दीपक पराशर इस फिल्म में नजर आए थे, साथ नजर आई थी सलमा आगा और बिल्कुल एक लाजवाब सा ये है गाना। वाशिगी से हीरामती जी, आपने इस गीत की फरमाइश की है, आपके सभी परिवार और बच्चों के नाम दीपा, प्रकाश, यशवीर, युवना और दर्शिनी के लिए। तो चलिए आपके साथ मिलकर हम भी इस गीत का मजा लेते हैं।

भाई प्यार एक ऐसा एहसास है जिसको बयां करना बहुत मुश्किल, पर एक लाजवाब सा एहसास। चलिए लता जी की प्यारी सी आवाज गूंजने जा रही है और ये गाना है विश्वानी जी दुमन की पसंद पर। वाकवा से साथ दे रही हैं अपनी प्यारी बहनें इंदिरा और शारदा, साथ है नीला और प्रतिभा, उनकी प्यारी सखियां शोभा और गीता गजाधर जी, और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया हुआ ये गीत।

चलिए कार्यक्रम को जारी रखेंगे लाजवाब गीतों के साथ। सजाया हुआ ये सफर हम बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे और कोई गीत ना कटे इसलिए हम आपके लिए एक और गाना चलाते हैं मुकेश साहब की आवाज में। इस गीत को एंजॉय कीजिए। थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ और समाचारों के बाद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की शुरुआत अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। ये संस्था बिजली घरों के लिए बायोमास की आपूर्ति, लॉजिस्टिक और भंडारण का प्रबंधन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बायोमास नीति के तहत कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की रणनीति को लागू करने में मदद करना है। शुरुआती चरण में सरकार बिजली उत्पादन में लकड़ी के चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ाकर 10-15% करने की योजना बना रही है। ओमनिकेन का लबाक बिजली घर इसकालिये में पहले से ही अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में इस क्रमिक बदलाव में योगदान दे रहा है। पिछले वर्ष स्कूल सर्टिफिकेट यानी एससी परीक्षाओं में मॉरिशस के विद्यार्थियों ने 9 विषयों में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि का जश्न आज सुबह मुका एमजीआई में आयोजित एक समारोह के दौरान मनाया गया। समारोह का आयोजन मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से किया गया। इस मौके पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जो इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के

0: साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। यूथ पार्लियामेंट का पांचवा संस्करण इस सप्ताह राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 76 प्रतिभागियों ने एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता नेशनल असेंबली की अध्यक्ष ने की। इस संस्करण के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई सांसद भी मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का आत्मविश्वास विकसित करना और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कुछ अलग एक मामले के बारे में। अमेरिका के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में से एक मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की हत्या का मुकदमा आज सोमवार को लास वेगास में शुरू हो रहा है। 63 वर्षीय ड्वेन डेविस, जिन्हें केफीडी के नाम से भी जाना जाता है और जो कभी साउथ साइड कैम्पटन क्रीप्स गिरोह के नेता रही हैं, पर टुपाक की हत्या की साजिश रचने और हत्या में इस्तेमाल हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। अभियोजन पक्ष अदालत में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि डेविस ने हत्या की साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। दोषी ठहराए जाने पर उन्हें बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 सितंबर 1996 की रात कैलिफोर्निया के मशहूर रैपर टुपाक शाकूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। टुपाक वेस्ट कोस्ट हिप हॉप संस्कृति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित कलाकारों में से एक थे और उनकी छवि एक बैड बॉय रैपर के रूप में बनी थी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय 3:04 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञप्ति लेते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है। कल मंगलवार 11 अगस्त को गांवे जिम, WW अथॉरिटी, रिजर्वोर रोड और ले कैपिटन गांवे के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। ये आगे का कार्यक्रम हम जारी रखते चले।
2: आपकी पसंद। 3:05
1: आपकी पसंद। सोमवार का दिन है और मैं हूँ रत्ना, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। तो चलिए आज के सफर को और भी हसीन और भी लाजवाब बनाते हुए आपके गानों की जो फरमाइशें हैं आती रही हैं हम तक, कोशिश करेंगे सभी की फरमाइशों को पूरा करने की। और आज सोमवार का दिन है, शिव भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो चलिए इसी के साथ एक लाजवाब गाना, और ये गाना है अनीता जी की पसंद पर, जो इस वक्त फ्लिक ऑफ फ्लैग से हमारा साथ दे रही हैं और उनके सभी दोस्त और परिवारों के साथ वे इस गीत की फरमाइश कर रही हैं। तो ये गाना सभी शिव भक्तों के लिए

0: की पसंद।
1: जहाँ मन होगा सच्चा वहाँ दिल से दर्शन मिल ही जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान आपके सामने आ ही जाते हैं, पर हमें हमारे पास वो नज़र होती नहीं है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में, आपकी पसंद कार्यक्रम में, सुनीता जी हमारे साथ पोविडॉन्स से जुड़ चुकी हैं। आज उनकी खास सखी शोभा जिंगत का जन्मदिन है, उनके पति है जगदीश, बेटे हैं आकाश और सावन, बहुओं की ओर से और साथ ही साथ सभी दोस्तों की ओर से और खासकर जिंगत परिवार की ओर से।

शोभा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ यहाँ पर पोफाले से जुड़ी हुई हैं अमीना जी, और अमीना जी आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत दुआएं देना चाहते हैं मोहम्मद

खासकर अमीना जी जो पोंपालें से जुड़ी हुई हैं, इससे बेहतर कोई गाना हो नहीं सकता। दिल से सच्ची दुआ निकलती है इस गीत को सुनकर, और ये गाना उन सभी के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

सिंगापुर का ये है गीत और गीता जी पोंफे से साथ दे रही हैं, उनके प्यारे पति रोहित, साथ है उनके तीन नाती आदित्य, आरव और तनिष, साथ दे रही हैं उनकी प्यारी परी जानवी, तीन बेटे तीन बहुओं के नाम सिंगापुर का ये गाना लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

फिल्म है दूर का राही और ये है किशोर कुमार साहब की प्यारी सी आवाज़। 1969 के दौर का ये गाना शांति जी कॉटेज से दे रही हैं साथ हमारा, और ये गाना जाता है उनके पति के नाम जिनका जन्मदिन था 4 तारीख को, यानी पिछले मंगलवार को, पर लाइन नहीं मिली, कोई बात नहीं श्रद्धानंद जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये गाना है उनके 3 बेटी 3 दामाद 2 नाती 1 नातिन और प्यारी पत्नी शांति की ओर से।

चलिए इसी गीत को ज्योति जी के नाम करेंगे। यूनियन पार्क से साथ दे रही हैं हमेशा की तरह प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा के साथ। और शिमला जी हमारे साथ जुड़ी हैं बेलगोस से। बहनें हैं रूमा, आरती, इंदिरा, भाई हैं राकेश और धीरज, और बेटा है नमलेश और बेटी है कीर्तिना।

0: सुनिए।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जहां पर आप ही के पसंदीदा गीतों को ढूंढने में हमारी तो भाई लेफ्ट राइट हो जाती है, पर हम कोशिश करते हैं आपके गीतों को आप तक पहुंचाने की। और शीला जी देपिना से हमारा साथ दे रही हैं। आपको लग रहा होगा हम आपको भूल गए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बस आप ही के गीतों को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। तो चलिए आपके इस गीत को हम लेकर आए हैं, फिल्म है समंदर और इस फिल्म से लिया हुआ ये गाना हम करते हैं आपके नाम।

साथ तो हम यूं ही देते रहेंगे, 4 बजे तक हमें आपका साथ है देते हुए, और इस वक्त बिल्कुल 3:30 बजने को हैं। तो चलिए, ये अगला गाना है दिल तेरा दीवाना फिल्म से लिया हुआ गीत लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में, और ये गाना है रेहाना जी जो फिनिक्स से हमारा साथ दे रही है, उन्हीं की पसंद का गाना।

जानते हो तुम, कुछ ना कहेंगे हम।

0: हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुराद कोई पा गया।
1: सांसों में

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: प्यार मोहब्बत में तो कस्में खाई जाती है, पर हम कोशिश करते हैं कि इन कस्मों वादों को निभा सके। और बिल्कुल यहाँ पर नंदलाल जी हमारे साथ वाकवा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने गाना मांगा है फिल्म प्यासा। ये बहुत ही पुरानी फिल्म है, 50s के दौर का ये गीत है, अहमद रुश्दी की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना। तो चलिए आशा करते हैं कि ये गाना सुनकर आपके चेहरे की मुस्कुराहट और भी दुगनी हो जाएगी।

महेंद्र कपूर साहब की प्यारी सी आवाज, फिल्म है संबंध और ये गाना जाएगा अनीता जी के पसंद पर। अनीता जी त्रिवोले से साथ दे रही हैं, बेटी अंजू, दामाद है वेद, बेटा सचिन, बहू पूजा, कियांच और सिया, नाती नातिन के नाम करना चाहेंगे यही गाना। तो चलिए सुनते हैं संबंध फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम जारी है शाम के 4 बजे तक।

महेंद्र कपूर साहब की आवाज, लाजवाब आवाज के बाद चलिए एक बार फिर महेंद्र कपूर, मुकेश साहब और लता जी की ट्रायो आवाज को सुनते हैं। संगम फिल्म के बीच रखा हुआ ये गीत सुनीता जी की पसंद पर, जो गौगुप से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, उनकी प्यारी बहनें अमृता, विमला और वीना जी के नाम।

चलिए इसी के साथ चल पड़ा गीत। असली नकली फिल्म से लिया हुआ। अनवल फोंस से कूल एन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सभी दोस्तों के नाम सभी कूल एन परिवार के लिए। फिल्म है असली नकली, मोहम्मद रफी साहब की आवाज।

और ये गाना मांगती हैं प्रेमिला बाजू जो है कॉटेज से, उनकी प्यारी पत्नी यानी योगेश जी की पत्नी है पल्लवी, बेटा है आरव, ससुर जी हैं ईश्वर, सासुमा है किरण, साथ है यादव, आकाश और बड़ी दादी देवगानी बाजू और पागास परिवार थिंगबो से, चाचा और चाची की ओर से भी योगेश को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।

चलिए खुशी देना तो हमारा काम है, और इसी के साथ यहाँ पर बंधु परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये आखिरी गाना हम आपके नाम करना चाहेंगे, ये गाना रहेगा आखिरी इस कार्यक्रम का। और इसी के साथ चलिए विद्या जी, आप यूनियन पार्क से जुड़ी रही हमारे साथ, आपकी बहनें सती, सुरेखा, अमृता, बबीता, चाची कुमारी, और साथ ही साथ सुदेवी जी हमेशा वाकवा से आप भी साथ देती हैं, थ्रियोले से ललिता कुशल, सुनीता जी, शोभा जी, देवीना साथ हैं, माला, बिंदु, मलेगा से अनुषा, किरण, याशना, नीरज, रामरतन, कुवारू, हृदय और रघुबाव परिवार के नाम जोड़ते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। आपको याद दिला दें, ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम क्षितिज, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी डॉक्टर अलका दनपत द्वारा, तो बस उनका साथ दीजिए। हमारी और आपकी भेंट अब होगी ठीक 5:30 बजे 55 ऐसा कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जुलाई के महीने को कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में हमारे साथ एक ऐसा लेखक जुड़ जाता है जिसे पूरी दुनिया आज भी अपने कंठ के स्वर में जोड़े रखती है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी चर्चा विचर्चा हो, उस लेखक को भुलाना असंभव है, जिसने कथा, उपन्यास, कहानी, निबंध सब तरह से एक रास्ता ही बदल दिया था। श्रोताओं, आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रेमचंद जी की, और हमारे साथ जुड़ी हैं।
2: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम श्रुति पाठक है। मैं भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद पर हूँ। दिव्या और सज्जनों, जैसा कि अभी अलका जी ने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी पे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रसिद्ध कहानीकार, और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रेमचंद जी का पहले बचपन का नाम वैसे धनपत राय था, और शुरुआती दौर में उन्होंने नवाब राय के नाम से भी लिखा है, हालांकि बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे।
1: श्रोताओं, प्रेमचंद ने हिंदी में जो पांव रखा, उस समय हिंदी का पाठक कुछ ऐसी कहानियां पढ़ रहा था कि किसी कल्पना लोक में विचर रहा था, जैसे उड़न छू दरी, मान लीजिए तोते में किसी के प्राण हैं, कोई राक्षस है, अलादीन का चिराग है, जादुई चिराग है, कुछ ऐसी कहानियां पढ़कर हम बड़े खुश थे। प्रेमचंद ने इस कल्पना लोक से हमको मनुष्य के मन में उतारा। उन्होंने जो कहानियां लिखी, वे मनुष्य के मन, उसकी भावनाओं, उसके हृदय में उठने वाले मनोविकार, विचार, इन सब पर जो कहानियां प्रस्तुत की, मानव लेखन की दिशा ही उन्होंने बदल दी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ पहले हमें पुराणों में कथाएं तो मिलती हैं, उसके बाद तिलिस्म लिखे जाते थे, लेकिन देखिए, जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कृषक, मजदूर, इन सबको वो अपनी कहानी के मुख्य पात्र के रूप में लेकर सामने आए। चाहे वो उनकी कफन कहानी हो, पूस की रात कहानी हो, और चाहे समाज की विभिन्न समस्याएँ हों, एक आम इंसान जिन समस्याओं से गुजरता है, तिलिस्म की दुनिया से निकल कर वो एक वास्तविकता के धरातल पर लेकर आए पाठकों को, और इस तरह की कहानियां लिखी जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को, अपना प्रतिबिंब भी देख पाता था, अथवा ग्रामीण जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं का साक्षात्कार कर पाता था। चाहे निर्मला का बेमेल विवाह हो, गबन में झूठी शान की खातिर कोई गबन किया गया हो, या फिर हम जैसा कि जानते ही हैं गोदान में जो एक कृषक की क्या दुर्दशा होती है, उसका सजीव चित्रण किया हो, हर जगह हम देखते हैं कि बेहद बेहतरीन तरीके से, बेहद खूबसूरती से वो इन सभी चीजों का अपने उसमें चित्रण करते हैं, और एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना उन्होंने की।

0: श्रुति जी, मैं जोड़ना चाहूँगी कि प्रेमचंद एक सच्चे लेखक थे और लेखक थे सामान्य जन के। वे लिखते हैं, मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कुछ लिखूँ नहीं तो मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं। आप सोचिए, अपने कर्तव्य के प्रति या अपने काम के प्रति इतनी निष्ठा कि मुझे लिखना है। और अमृत राय ने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार वे रेल में जा रहे थे, वहाँ पर भी आधी रात को देखा तो कुछ लिख रहे थे। तब उनसे कहा गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाइए। बोले, नहीं, रात को सोने से पहले मुझे कुछ लिखना ज़रूर है। तो इतनी ईमानदारी, इतनी कर्मठता उस व्यक्ति में थी, इसीलिए अपने छोटे से जीवन काल में भी वे लगभग 12 उपन्यास पूरे कर पाए और 13वां उपन्यास मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया। और मानसरोवर के 6 खंडों में उनकी 300 से अधिक कहानियां हमको मिलती हैं। और श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पहली पत्रिका उन्होंने कहानी लिखी थी, सोजे वतन, अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्होंने सारी प्रतियां जब्त कर ली थी। और जो सोजे वतन, इसका हिंदी अर्थ है राष्ट्र का विलाप। इस कहानी में जो नायिका है वह मांगती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़, तो जो नायक है, जब तक वह यह चीज़ नहीं लाता कि मेरे शरीर के खून का आखिरी कतरा भी देश को समर्पित हो, यही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तो ऐसी कहानियों को पढ़ने या सुनने के बाद वो जो देश प्रेम का भाव जागृत होना था, उससे अंग्रेज घबरा गए और सारी प्रतियां उनके सामने ही जला दी गई थी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, सोजे वतन का तो ऐसा हाल था कि कई बार प्रेमचंद को कहा गया कि उन्हें खुद भी उसकी प्रतियां जलानी पड़ी थी। और शायद उनका जो देश के प्रति प्रेम था और आम इंसान के प्रति, उनको अपने आप को जिम्मेदार समझते थे, शायद यही कारण है कि वो हमेशा उनके लिए लिखते रहे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो हम जानते ही हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी प्रेमचंद की के ऊपर, उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कहा था।
0: बहुत सही बात आप श्रुति जी कह रही हैं। और देखिए, ये लगन बचपन से होती है। वो जो अंदर दिया जल रहा था ना, इतना लिखने का, पढ़ने का, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो अभी वे छोटे ही थे, तो गरीबी थी बहुत, नौकरी करनी पड़ी, लेकिन पढ़ने का इतना शौक था कि एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ उन्होंने काम शुरू किया और रात रात में बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे। और यहाँ उन्होंने इतने किताबें पढ़ डाली कि पुस्तक विक्रेता भी हैरान हो गया। और बाद में वे हिंदी के अध्यापक भी बने। शुरू में तो वे उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में फिल्म लाइन में भी उन्होंने कुछ प्रयोग किए। 1934 में एक अजंता सिनेटोन नाम की व्यक्ति ने मजदूर फिल्म बनानी शुरू की और इन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन पूंजीपतियों ने इसे रिलीज़ नहीं होने दिया। बाद में गोदान पर भी फिल्म बनी, लेकिन प्रेमचंद बहुत दुखी हुए क्योंकि फिल्में दुनिया के लटके झटके उनकी जो कहानियों के साथ थे वो खिलवाड़ करते थे, क्योंकि वे गरीब आदमी की आवाज़ बनना चाहते थे। तो बाद में वे सब छोड़कर वहाँ से वापस फिर से लेखन के क्षेत्र में आ गए।
1: बिल्कुल सही कहा। और वो बहुत ही सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे अलका जी, क्योंकि उनका जीवन खुद इतना संघर्षमय रहा था और वो अध्यापक की नौकरी पे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने जब आह्वान किया था तो उन्होंने अपनी वो नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो देश के लिए इतने ज्यादा दिल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे, कहीं उन्हें सही नहीं लगा अगर कोई चीज़ तो वो उसको छोड़ कर भी आगे बढ़े हैं। और पर अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया।
0: समझौता ही नहीं, जीवन में देखिए सिद्धांतों के प्रयोग भी किए। जो पहली पत्नी थी वह उनको छोड़कर चली गई थी, बाद में जब शिवरानी देवी से उन्होंने विवाह किया तो वे एक बाल विधवा थी और उस जमाने में बाल विधवा को लोग अपशकुन मानते थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से विवाह किया और यह विवाह उनका बहुत ही उत्तम रहा। यहाँ तक कि वे शिवरानी देवी को भी प्रेरणा देते थे कि वह भी कुछ लिखे, और कुछ चीज़ें उन्होंने भी लिखी थी।
1: बिल्कुल। और ख़ास तौर पे एक चीज़, जैसे कहते हैं ना कि खाली कथनी ही नहीं, उनकी करनी में वो चीज़ नज़र आई है हमेशा। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था उनका, अलका जी अगर आप देखें तो बाद के जीवन में वो सिर्फ यथार्थवाद की ओर चला जाता है, चाहे वो हमारा गोदान का गोदान उपन्यास हो या फिर पूस की रात जैसी, कफन जैसी कहानियाँ हों, जहाँ पर वो बिल्कुल

0: आदर्श की स्थापना से अब उनका मोह भंग जैसा हो गया है और अब वो बिल्कुल यथार्थ को, जैसे कहते हैं ना, जो है वही सीधे ही उसका चित्रण करना शुरू कर दिया। जैसे गोदान में होरी की स्थिति जो है, और या फिर पूस की रात में जब वो हल्कू देखता है कि नील गायें पूरा खेत चर रही हैं, पर वो ठंडी हवा का झोंका जो उसको लगता है, तो वो उसकी जो एक स्थिति आ गई है कि वो कर्म से विमुख हो जा रहा है, नहीं तब ये यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं कि वो कर्म से विमुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कुछ भी काम कर ले, उसका जो फायदा मुनाफा है वो तो सेठ साहूकार ले जाएंगे। तो ऐसे में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नील गाय खेत चर रही हैं, तो यहाँ
1: तो अच्छा ही है, वो
0: अच्छा ही है। बल्कि यहाँ एक तरीके से देखेंगी तो ये बड़ा मार्मिक वर्णन है कि कैसे एक व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ तो नहीं हुआ है,
1: तटस्थ
0: हो जाता है अपने। तो ये बहुत अच्छी उसकी उसका चित्रण था उसमें।
1: और श्रुति जी, कफन में भी यही स्थिति है। प्रेमचंद वहां लिखते हैं कि वे पीते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो समाज भी इसमें दोषी है, व्यवस्था भी दोषी है, जो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य नहीं दे पाती है। तो जब काम नहीं मिलता और फिर इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं, नशे की प्रवृत्ति है, चोरी करते हैं वे लोग, तो प्रेमचंद वहां भी दिखाते हैं कि वे कफन तक को बेच डालते हैं। और वे समाज का मनोविज्ञान इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि पिता पुत्र से कहता है चिंता मत कर, यही लोग उसको कफन फिर से दिलाएंगे।
0: बिल्कुल। और प्रसव वेदना से जब वो अंदर करा रही होती है, बिल्कुल हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाहर में दोनों जन अपने आलू की चिंता, उनको भुने हुए आलू
1: जो है,
0: हाँ, भूख कैसे, पेट की ज्वाला कैसे व्यक्ति पर हावी हो जाती है और वो अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाता है, इसको बड़ी बारीकी से दिखाया है। और ये समझने वाली बात है, उस समय के समाज को देखिए कैसे उन्होंने ला के सामने रखा। औपनिवेशिक काल था और एक जनता एक खास दौर से गुजर रही थी, इन सभी चीजों पे उन्होंने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है।
1: प्रेमचंद बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने निबंध भी लिखे, नाटक संग्राम और करबला जैसे लिखे, अनुवाद भी उन्होंने किया, बाल साहित्य भी लिखा, और उपन्यास और कहानियों में तो कोई उनका सानी था ही नहीं। इसके साथ साथ हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं के वे वर्षों संपादक भी रहे। तो श्रोताओं, वो जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, इनकी कहानियाँ पुस्तकें आज न केवल भारत, न केवल मॉरिशस, बल्कि यूरोपियन देशों में या जिन देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ पर भी यदि प्रेमचंद को वे ना पढ़ाएं तो हिंदी अधूरी रह जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और उर्दू ही नहीं, हिंदी में भी उन्होंने लिखा। और अगर आप उनकी भाषा शैली को देखेंगे तो कितनी सहज सरल भाषा में
1: हिंदुस्तानी शैली है,
0: बिल्कुल
1: उनकी।
0: और जिसको एक आम इंसान बड़े आसानी से समझ भी पाता है और बड़े उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगता है। उनकी कहानियाँ देखा जाए तो केवल मनोरंजन नहीं करती, समाज निर्माण का भी काम करती हैं, एक संदेश लेकर आती हैं और समाज की कुरीतियों को इतनी बारीकी से आपके सामने रख देते हैं कि कोई उपदेशात्मक तरीके से नहीं, बल्कि आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे अभी हमने दो कहानियों पर बात की, चाहे वो पूस की रात हो, कफन हो, आपके सामने स्थिति रख दी, अब पाठक खुद सोचता है कि अच्छा इन स्थितियों के कारण वो व्यक्ति कर्तव्यच्युत होता है। तो ये भी एक तरीका है समाज को समझाने का, राह दिखाने का, मार्ग प्रशस्त करने का, जिसके तो हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद माहिर खिलाड़ी थे ही, शतरंज के खिलाड़ी याद आई तो
1: उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बहुत ही सुंदर है कि शतरंज के लिए वो एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हैं,
0: हो जाते
1: लेकिन
0: है।
1: अपना जो अधिकार है, अपना जो सत्ता है, उसकी उनको चिंता नहीं है। कितना राजनीति में जो कुछ हो रहा था उसका प्रतिबिंब उसमें हमको दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से ईदगाह कहानी देखिए, एक बच्चे का मनोविज्ञान, मतलब इतना सुंदर वर्णन प्रेमचंद जैसे बाल मन को अंदर से झांक
0: कर देख पाते हैं। चिमटा खरीदने की
1: चिमटा खरीदने

0: जैसे रंग भूमि में देखिए वो जो बड़ा कारखाना बनना है, उसके बाद एक गांव कैसे उजड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: किस तरह से वहां पे शराब के ठेके खुलेंगे, गांव की खेती नष्ट होगी, चरागाह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूंजीपति पैसा बटोर के चले जाएंगे। आज जो पर्यावरण की हम बातें कर रहे हैं उसको खोल कर पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद कितने प्रासंगिक थे। बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन इतना साहित्य उनका, समय बहुत कम है, तो श्रुति जी और मुझे अनुमति दें। इसी के साथ यूसुफ जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें तकनीकी सहायता दी। आप सभी को शुभ दिन, नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं।
2: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
3: हेलो दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ बचपन ऐसा कार्यक्रम को लेकर। जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं, बस आशा यही करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के इस कार्यक्रम के साथ जरूर हमारा साथ देने के लिए जुट चुके होंगे। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी। दोस्तों, होप आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया बीता होगा और इस प्रोग्राम में कुछ लाजवाब अनुभव की बातें जो हो सकता है आपके काम आएंगी। और फ्रेंड्स, हमारे बड़े बुजुर्ग की बात अगर हम करें तो दोस्तों, देखा गया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारी आदतों के बारे में वे हमेशा हमसे कहते रहते हैं, पर सच कहें तो अच्छी आदतें पालने से ये हमारी जिंदगी को सही राह पर चलने के लिए हेल्पफुल होती हैं। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादी नानी या दादा नाना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता जो हैं, वो अपनी जिंदगी के ऐसे हसीन दिनों को काटकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां पर हो सकता है कि उनसे भी कई बार गलतियां हुई होंगी।

नहीं चाहते कि हम उन गलतियों को रिपीट करें, इसीलिए वे हमेशा हमसे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हमारी लाइफ को हम कैसे डिसिप्लिन्ड रख सकते हैं। पर हमें हमेशा लगता है कि भाई बहुत लेक्चर देते हैं, और आजकल की जो जनरेशन है वो मैसेज जनरेशन है, एआई की जनरेशन है, यानी बहुत बातें सुनना पसंद नहीं करते। चलिए हम जानते हैं, वैसे हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आपके लिए बहुत मज़ेदार गाने भी लेकर आए हैं और लाजवाब गीतों के सफ़र को सजाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ मज़ेदार बातें करेंगे इस गीत के बाद में।

0: हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहीं थे बचपन ऐसा कार्यक्रम में रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन्ड रख सकते हैं। वैसे आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सही कहा ना? तो चलिए आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स भी देंगे। वैसे हम आपको बता दें, जब हम इस आदत को भूल जाते हैं जल्दी सोना जल्दी उठना, पर आज के समय में हमारा तो लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। लेट टू बेड लेट टू राइज, यानी देर से सोना देर से उठना। और फिर हमारा जीवन, हमारा जो माइंडसेट है वो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, कितना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा ना? तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर हम जल्दी सोने नहीं जाते, जल्दी नहीं उठते, तो हमारी कितनी सारी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हम जब देर से सोते हैं, ज्यादातर देखा गया है कि आप लोगों का जो होमवर्क का बर्डन है वो कितना ज्यादा होता है। होमवर्क के बर्डन के साथ साथ डेफिनेटली आपको लेजर टाइम भी निकालना है, पर होता क्या है इसका बिल्कुल उल्टा। यानी हम हमेशा सोचते हैं, साल की शुरुआत में हम हमेशा रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई हम रोज लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ाई करेंगे और हम 30 मिनट्स का लेजर टाइम देंगे, पर ये तो बिल्कुल ही उल्टा कैलेंडर हो गया। हम करते क्या है, 30 मिनट की पढ़ाई करते हैं और 4 से 5 घंटे हम केवल लेजर टाइम के लिए देते हैं। और यहीं पर तो सारा गलत हो जाता है इक्वेशन। फिर हमारे पास बहुत टाइम तो रहता नहीं है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और इसी कारण फिर सरप्राइज टेस्ट या जो भी आपकी तैयारियां होती हैं उसमें आप पीछे रह जाते हैं। जब पीछे रह जाते हैं तो अपने आप गुस्सा आता है और ये गुस्सा निकलता है कहीं और। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से के कारण हम खाना नहीं खाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती, और बिल्कुल नींद ना पूरी हो तो चिड़चिड़ापन तो रहता ही है। सही कहा ना? चलिए नाराज ना हो, हम तो सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपके लिए गाने भी मजेदार चला रहे हैं। एंजॉय करें ये अगला ट्रैक।
1: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है, ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

दोस्तों, ये आज के इस प्रोग्राम में नींद पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बॉडी के लिए कहते हैं 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रात के 9 बजे या 10 बजे किताबें बंद, लाइट बंद और जाकर सो जाओ। पर आजकल होता क्या है, हम रात के 10 बजे के बजाय हम रात के 1 बजे तक बस मोबाइल स्क्रोल करते रहते हैं और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में डालते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें कहीं लेकर नहीं जाती, ये कहीं पर भी हमें प्रोडक्टिव नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारी जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस का स्टॉक हम हमारे दिमाग में भरते हैं, हमारा

इसके कारण बहुत ज़्यादा थक जाता है और इस थकावट के कारण ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सोने से पहले जब हम स्टफ़ करते हैं तो सोते समय भी हमारा दिमाग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए पहले के ज़माने में हमेशा स्टोरी टाइम, स्टोरी बुक्स का चलन था कि सोते वक्त हम कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमारे लिए मोरल बेस्ड हो। यही सारी चीज़ें अगर हमारे हम दिमाग में रखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और हम नींद के समय भी मोरल वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वैसे सोचना तो चाहिए नहीं, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपको बस ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे आपको एक गहरी नींद आ जाए और बस एक गहरी नींद के साथ आपका शरीर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। चलिए लेते हैं और एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंत तक हम आ पहुंचे हैं। बस जाते जाते यही कहेंगे कि किसी महान व्यक्ति ने, भाई किसी ने क्यों, हमारे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, उन्होंने ही कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं, तो अपनाइए ये अच्छी आदतें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोया करें और जल्दी उठा करें। इससे ना केवल हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी वाचा, हमारे कर्म भी बहुत ही हेल्दी होंगे। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों, हो चला है समय आज के इस प्रोग्राम को बस यहीं पर रोकने का। आशा करते हैं ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: सोमवार 10 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसी ठोस उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एल नीनो की स्थिति के और गंभीर होने के साथ देश में मौजूदा बारिश की कमी में अगले अक्टूबर महीने तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज एक खास समारोह का आयोजन हुआ। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त इबोला वैक्सीन एवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। देश के ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमास के सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और भंडारण के संचालन के वास्ते कुछ महीनों में मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड की लॉन्चिंग की जाएगी। मकसद है राष्ट्रीय बायोमास फ्रेमवर्क की सिफारिशों के अनुसार कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति लागू करने में मदद करना। शुरुआती स्तर पर सरकार बिजली पैदावार में लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल 10% से बढ़ाकर 15% करने की योजना बना रही है। लिस्काली में स्थित ओमनिकेन पावर प्लांट पहले से ही ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव में शामिल हो गया है। माधवी जगन्नाथ, गीता सुनारायण।
1: गन्ने की कटाई का मौसम पूरे जोरों पर है, ऐसे में बिजली केंद्रों को बगास से तैयार होने वाली बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाकर बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इनमें लिस्काली स्थित ओमनिकेन लाबाराक बिजली केंद्र भी शामिल हैं। इसके जनरल मैनेजर ऋषि कपूर कहते हैं,
2: En termes de pourcentage, je dirais sur notre production annuelle.
1: वार्षिक उत्पादन 550 गीगावाट के करीब है। 82 गीगावाट बगास से आता है और बाकी कोयले से। हर साल ये बिजली केंद्र बिजली उत्पादन के लिए 2 लाख टन से ज्यादा कोयला जलाता है। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए

0: ये ओबनिकेन ने 4 साल पहले अपने ऊर्जा मिशन में लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल शुरू किया।
1: Avec l'appui donc du gouvernement de la CEB,
0: सरकार और सीबी के सहयोग से कई इंसेंटिव्स कायम किए गए हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमने लकड़ी के मिश्रण का प्रयोग शुरू किया है। कोयले से धीरे धीरे बाहर निकलने की ये रणनीति राष्ट्रीय बायोमास विकास नीति के तहत भी सुझाई गई है। सीबी के एक्टिंग सीनियर इंजीनियर जनेश किस्तु कहते हैं, कंसल्टेंट्स ने जांच पूरी कर ली है। ये देखा गया है कि बिजली केंद्रों में बदलाव लाए जा सकते हैं। एक नए स्टेशन से ये ज्यादा सस्ता है। इसे बदलने के बाद 4 तरह के बायोमास होंगे, स्थानीय लकड़ी और आयात की जाने वाली लकड़ी के मिश्रण, गन्ने के टुकड़े और बागास। इसी रणनीति का उद्देश्य आयात की जाने वाली लकड़ी के चिप्स का इस्तेमाल बढ़ाकर कोयले की खपत कम करना है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बायोमास फिलहाल कुल जरूरत का केवल 20% ही पूरा कर पाता है।
2: Nous procédons dans deux phases. Nous finissons mettre en place une stratégie d'importation du bois. Nous commençons à importer du bois à la hauteur.
0: ये 2 चरणों में होगा। लकड़ी आयात करने की नीति कायम की जाएगी। 10-15% लकड़ियों का आयात किया जाएगा। दूसरे चरण में सभी बिजली केंद्रों को बदलेंगे और मॉरिशस बायोमास फ्यूअल एग्रीगेशन लिमिटेड संस्था की स्थापना की जाएगी, जो बायोमास के आयात के लिए समर्पित होगी। फिलहाल सभी संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है। 2035 तक ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का सरकार का लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। छोटे टापू देशों जैसे मॉरिशस के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती है।
3: श्रमिक संघ एफटीयू के नेगोशिएटर आत्मा शांतु ने आज से पोर्ट लुइस की कंपनी गार्डन में भूख हड़ताल शुरू की है। वे सामूहिक नेगोशिएशंस के लिए श्रमिक संघों से मिलने में कुछ निजी कंपनियों की हिचकिचाहट की आलोचना कर रही हैं। इस सिलसिले में आत्मा शांतु एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
0: आत्मा शांतु ने इस सोमवार 10 अगस्त को सुबह 11 बजे के कुछ ही समय बाद पोर्ट लुइस के कंपनी बाग में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फेडरेशन डी ट्रैवायर यूनी के वार्ताकार ने प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक बातचीत से इनकार किए जाने की निंदा की है।
4: नुवो कॉन्ट्रा डी ट्रैवायर की इम्पोजे पर इनोडिस लॉम्प्लॉयर पास डॉन ले दो सिंडिका इम्पोज बन कंडीशन प्रीमियर बन ट्रैवायर पर गेन ड्रॉ गेन gagne augmentation salaire je gagne ban mérite increase trois quarts du temps ban travailler pénalisé je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation mentalité de jour en jour à peine changé dans le secteur du privé bien qu'il le gouvernement révise sa de la loi là employment relations act et workers rights act
0: आत्मा शांतो के इस कदम को मॉरिशस लिबर कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। हनीफ पिगन चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाए ताकि कामगारों के अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।
3: संचालन को लेकर कुछ दिक्कतों के बाद फिर से गठित काउंसिल ऑफ यूनियंस अब एक नई शुरुआत करना चाहती है। पोर्ट लुइस में आज जीएसएआर के कार्यालय में लगी एक बैठक के दौरान नई संचालक टीम ने ट्रेड यूनियनों के बीच एकता मजबूत करने और सरकार के साथ बातचीत में कर्मचारियों की आवाज़ को ज्यादा अहमियत दिलाने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। संताना पोंसिनो की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
0: कई वर्षों तक कामकाज में आई मुश्किलों के बाद अब कोंसेई दी सिंडिका एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस ट्रेड यूनियन संस्था ने नई टीम का गठन किया है और इस मंच को फिर से सक्रिय करने का इरादा जताया है, जिसमें कई फेडरेशंस और ट्रेड यूनियन संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करना और ट्रेड यूनियन आंदोलन को ज्यादा एकजुट होकर अपनी बात रखने में सक्षम बनाना है।
5: Penser tout grand changement qui est bien fait, il est bien fait avec les stakeholders, les syndicalistes. Parce que comment nous réitérer encore, nous pas contre la réforme, nous accepter la réforme. C'est ma réforme bien fait avec les syndicats. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ne peuvent pas faire réforme, et il y a des affaires positives aussi là-dedans. Le conseil des syndicats est là pour soutenir toute bonne action dans les syndicats.
0: Nous, team, un...

0: बड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में भी फिर से अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती हैं, जो कामगारों से जुड़े हैं। ट्रेड यूनियनों का खास तौर पर कहना है कि उनके अनुसार किसी भी सुधार को सामाजिक बातचीत और कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बदलाव के साथ कोसाई दिसेंज का अपने काम को नई गति देना और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साझा मंच के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है।
1: मॉरिशस अभी बारिश की कमी का सामना कर रहा है और आने वाले महीनों में भी इसी कमी के पूरी होने के कम ही आसार दिख रहे हैं। ऋतु विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अगले अक्टूबर महीने तक बारिश सामान्य से कम होगी, क्योंकि एलनीनो की स्थिति के और गंभीर होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मॉरिशस को बारिश का पानी जमा करने और उसके भंडारण के लिए छोटे जलाशय बनाने जैसे ठोस उपायों का विचार करना चाहिए। मॉरिशस के दो विशेषज्ञ डॉक्टर, उत्कृष्ट पेशेवर अनुभव और एक साझा लक्ष्य, मॉरिशस में नेत्र चिकित्सा को और आगे बढ़ाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आंखों की बीमारियों की जांच, ग्लूकोमा के इलाज में नई टेक्निक, अत्याधुनिक सर्जिकल टेक्निकें और विदेशों से और विशेषज्ञ डॉक्टरों को मॉरिशस बुलाने की पहल, ऐसे कई प्रस्ताव आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम के सामने रखे गए। दोनों विशेषज्ञों ने पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में प्रधानमंत्री कार्यालय में से मुलाकात की। फाइनेंस बिल और पेंशन सुधार आज दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्लेटफॉर्म को सेंजिकाल के बीच बैठक के मुख्य मुद्दे रहे। ये बैठक शातुजुरेजी में हुई। ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि फाइनेंस बिल को दोबारा संसद में सामने पेश कर उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने ट्रेड यूनियनों की चिंताओं और उनके सुझावों को संज्ञा में लिया है। पिछले साल स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मॉरिशस के छात्र 9 विषयों में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर रहे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने एमजीआई मोका में आज एक खास समारोह का आयोजन किया। मॉरिशस के दौरे पर आए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि मॉरिशन छात्र दुनिया के बेहतरीन छात्रों को कड़ी टक्कर देते हैं। इस हफ्ते राष्ट्रीय सभा में यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण लगेगा। इसमें शामिल होने वाले 76 प्रतिभागियों ने आज सुबह राष्ट्रीय सभा की स्पीकर की अध्यक्षता में एक ट्रेनिंग सत्र में भाग लिया। उद्घाटन के दौरान विपक्ष नेता और कई सांसद उपस्थित हुए। यूथ पार्लियामेंट का मकसद है नौजवानों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना और उनकी बोलने की प्रतिभाएं बेहतर करना, साथ ही उन्हें लोकतंत्र और शासन के सिद्धांतों की बेहतर समझ भी प्रदान करना। अनवेल वुल्वे, याचना मिश्रा।
2: इनकी उम्र 14 से 23 साल के बीच है और एक सत्र के लिए ये प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद की भूमिका निभाने जा रहे हैं। सांसदों की भूमिका में ये सभी राष्ट्रसभा में अपनी जगह लेते ही अपनी आवाज बुलंद करने, अपने विचारों और मान्यताओं का बचाव करने और सबसे बढ़कर कानून बनाने वालों की भूमिका को करीब से समझने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे राजनीति का शौक है। मेरा मानना है कि युवाओं की आवाज, उनकी राय जरूरी है, क्योंकि ये देश हमारा भी है। ये हमारे लिए एक मंच है अपनी राय देने का, मॉरिशस को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए। हमेशा से राजनीति में मेरी दिलचस्पी रही है। नौजवानों को इस मंच के जरिए ये मौका मिल रहा है। सभी युवतियों को मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जी हाँ, भले ही इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन युवाओं की राजनीति में आज भी दिलचस्पी है। इसका प्रमाण है लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 76 युवाओं का चयन यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए किया गया। ये अनुभव उन्हें न केवल संसदीय प्रक्रिया को करीब से जानने का अवसर देगा, बल्कि उन्हें बहस करने, अपने विचारों का मजबूती से समर्थन करने और हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
3: Quand ils sont chez nous, surtout assis dans l'hémicycle, ils sont déjà dans leur tête.
2: यहाँ बैठकर ही वे जान गए

है कि उन्हें कौन सी भूमिका निभानी है। आशा यही है कि वे अपनी सभी प्रतिभाएं दिखाएंगे और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ राजनीति को भी अपनाएंगे। 13 और 14 अगस्त को हमारे युवा सांसद यूथ पार्लियामेंट के सत्रों में भाग लेंगे, लेकिन सदन में अपनी बात रखने से पहले उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए मेंटर्स के मार्गदर्शन के साथ उन्हें संसदीय कार्य

0: जानकारी और अनुभव देना है और सबसे बढ़कर युवाओं की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अवसर देना है।
1: इस साल के प्रथम 6 महीनों के दौरान नेशनल कैंसर सेंटर में कैंसर के 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। संकेत स्पष्ट हैं, ऑर्गन में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? हेरिडिटरी, अस्वस्थ जीवन शैली या पश्चिमी जीवन शैली जिसमें फास्ट फूड का ज्यादा सेवन शामिल है या फिर ज्यादा कीटनाशक वाले उत्पादों का इस्तेमाल। विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी मोर्चनों में अलग अलग तरह से कैंसर की वजह बन रही हैं। और इसी के साथ हमारी सहयोगी ने उनकी टीम ने नेशनल कैंसर सेंटर का दौरा किया जहाँ फरवरी 2025 से अब तक कैंसर से जुड़ी 600 से ज्यादा सर्जरीज की जा चुकी हैं। स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपराओं को आगे बढ़ाना। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले लगभग 50 लोगों ने भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक कार्यशाला में भाग लिया। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस पहल का मकसद मूर्ति बनाने की कला और मराठी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना रहा। इस पर कृष्ण सिचिया की रिपोर्ट पर गीता सोरेन का विवरण।
2: हाथों में मिट्टी लेकर सुबह से ही इन प्रतिमाओं को आकार देने का काम जारी रहा। धीरे धीरे हाथों के हुनर में निखार आता है और मिट्टी से आकृतियां उभरने लगती हैं। इलियाना पहली बार इस तरह की कार्यशाला में भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना रही हैं। मिट्टी से काम करना आसान नहीं है। एक मूर्ति में कई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। वहीं छोटे कियान दूसरी बार इस तरह की कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने में उनके पिता भी उनका साथ दे रहे हैं। इसे बना सकते हैं, इस बार अंदर से बाती लगाए हैं। पहले से सीखना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। बाद में मैं खुद अपनी मूर्ति बना सकता हूँ और अपने यहाँ पूजा कर सकता हूँ। 2 दिनों तक चली इस कार्यशाला में करीब 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए वर्षों का अनुभव रखने वाले कृष्ण अप्पा मौजूद रहे। पचास वर्षों से गणपति की मूर्तियां बना रहा हूं। मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। इस कार्यशाला में मैं इन लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को खुद मूर्तियां बनाने का हुनर सिखाना और बाहर से आयात की जाने वाली मूर्तियों पर निर्भरता कम करना है। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के अध्यक्ष डैनीराव बिवाजी कहते हैं,
3: Environment friendly गणेश मूर्ति, eco friendly गणेश।
2: हम लोगों को पर्यावरण प्रिय इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाना सिखाना चाहते हैं। मराठी संस्कृति के अन्य पहलुओं को भी सामने लाया गया जिसमें झांकरी भी शामिल हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य है जो उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य इन सांस्कृतिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मंजूरी प्राप्त एबोला वैक्सीन एयरवेबो के मूल्यांकन को क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में प्राथमिकता दी जाए। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिशों में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और उधर जोरदार चक्रवाती तूफान डॉल्फिन ने आज पूर्वी चीन पर प्रहार किया। भले ही उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई है, फिर भी उससे जुड़े बादलों के कारण काफी बारिश पड़ी है। सुरक्षा कारणों से वहां अलर्ट जारी किया गया है। बटे हैं अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर गीता सुनारायण के साथ।
2: हमारे इलाके पर सामान्य अस्थिर हवाओं का असर पड़ रहा है। आज रात बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल सुबह ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर बाद को पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और

पहली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। पूर्व में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पूर्व और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:34 पर सूरज निकलेगा।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। मोसेलमा ओकिदे रोजबेल में 78 साल की 78 की श्रीमती चंद्रानी मरीराम पैदाशना बंधु और जिन्हें धर्मो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी बेटी सोना नरीराम के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM आउट ऑफ लिविंग लेन रू कुवेंट दे लोरेट क्यूपिप रोड में Out of Living Lane, Rue Couvent de Lorette, Cupip में 81 साल के 81 के श्री फुल बिहारी निकित सिंह जिन्हें इंदर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर Rue Couvent de Lorette, Cupip रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM रूट 16 प्रोविडेंस कॉचिमिलिटी में नवासी साल के 89 के श्री वालाइदों कुपामा जिन्हें सामी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनकी बेटी के घर कल सुबह 9:30 वृंदा कुपामा के घर प्रोविडेंस कॉचिमिलिटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉडेमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 9:30 AM बाल्जाक स्ट्रीट बोआमोशॉन पॉम्पलीमूसेज में 25 साल के 25 के श्री विदेशी क्रिस्टोफर अर्सन जिन्हें अर्सन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 उनके घर बोआमोशॉन पॉम्पलीमूसेज से उठाकर सबसे पहले ला शापेल दे बोआमोशॉन गिरजाघर ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए बोआमोशॉन का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमोरो 2:30 PM अलीगढ़ मेबर्ग में 68 साल की 68 की श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया जिन पैदाशिना लचेगादू और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके दामाद विश्वानंद रामाना के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM डॉक्टर पेपेन स्ट्रीट बोबासे में 68 साल के 68 के श्री लक्ष्मी विजय की सुंदयाल जिन्हें शेखर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 ला शपेल ऑडन दे मुगा पुचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 11 अगस्त 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक बेलोम्ब और आसपास के इलाकों में सैमाता बेजुकाप में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल 11 अगस्त मंगलवार को दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हाइलैंड्स रोज में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल मंगलवार 11 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक गांबे और आसपास के इलाकों में गांबे जिम, WW अथॉरिटी रिजर्वर रोड और ले कैपिटन गांबे में भी मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

听众朋友，几首优美动听的歌曲之后呢，又到了我们的养生专栏节目。今天我为大家带来的是豆浆的营养。大家都知道

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: सादर प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं हूं दिविना और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय आध्यात्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम। आने वाले इन कुछ पलों में हम भक्ति, श्रद्धा, विश्वास तथा प्रभु स्मरण के मधुर सागर में डुबकी लगाएंगे। आइए मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें तथा पूरे विश्वास के साथ कहें, हे प्रभु, जो कुछ भी है आपकी कृपा है, हमारे जीवन में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैसे प्रभु का नाम वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। जब मन सच्ची भक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है तब भय, चिंता तथा निराशा स्वतः दूर होने लगती है। चलिए पहले भजन की ओर।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति हमेशा सदा के लिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वही भीतर से सबसे अधिक मजबूत होता है। विश्वास ही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री राम तथा निषाद राज की मित्रता हमें यही सिखाती है कि सच्चा भरोसा हर रिश्ते के बीच में है, वही नींव

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन पा रहे हैं भज्र प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस पर। किसी बाबा से किसी ने पूछा, ईश्वर कहाँ मिलते हैं बाबा? संत बोले, जहाँ अंधकार समाप्त होता है वहीं से भगवान का मार्ग शुरू होता है। इसलिए अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या तथा अहंकार को दूर करें, प्रेम, सेवा तथा करुणा को अपनाएं, ये सच्ची पूजा है।

जी श्रोताओं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में सदैव सत्य, प्रेम, दया तथा सेवा की भावना बनाए रखें, हमारे परिवारों में सुख, शांति तथा स्वास्थ्य का वास हो, संसार के प्रत्येक प्राणी पर अपनी कृपा बनाए रखें।

जब तक सांस है तब तक प्रभु का नाम है, तथा जहां प्रभु का नाम है वहां आशा, शांति तथा आनंद अवश्य है। इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आज के कार्यक्रम भज प्रभु का नाम में हम लेते हैं आपसे अनुमति। सादर प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हजारों से आला हमारा रजा है, हजारों से यकता हमारा रजा है, हजारों से आला हमारा रजा है, हजारों से यकता हमारा रजा है। अजम ही नहीं बल्कि सारे अरब में हुआ जिसका शोहरा हमारा रजा है। सामईन जी वकार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। निसार अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर गूंजता हुआ उर्दू प्रोग्राम महफिल शब में। हम आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। सामईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह माह सफरुल मुज़फ़र की 25 तारीख है, वो तारीख जिसने आलम इस्लाम के एक ऐसे आफ्ताब इल्म को अपनी आगोश में लिया जिनका इल्म बहरे बेकरां था, जिनका कलम मीनार हिदायत था, जिनका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के लिए सरमाया हयात था। मुफस्सिर, मुफक्किर, मुबल्लिग, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुसन्निफ, शायर, सरापा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह।

आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आप रहमतुल्लाह अली का ज़िक्र खैर करेंगे और आपकी नातिया शायरी से लुत्फ़ंदोज़ होंगे। आइए महफिल शब का आगाज़ आला हज़रत रहमतुल्लाह अली के इस कलाम से करते हैं। मुलायज़ा फरमाइए।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोग देते हुए नजर आते। गोया आप रहमतुल्लाही की जिंदगी का हर लम्हा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सर्फ हुआ। इसी वजह से आला हजरत रहमतुल्लाही की शायरी आपके इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही पता देती है। जिस तरह आप रहमतुल्लाही के जिस्म का रवा रवा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज था, उसी तरह आपकी नातिया शायरी का हर लफ्ज़ भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ नज़र आता है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आला हज़रत रहमतुल्लाह अली के इस कलाम के साथ हमारा आज का महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अली का ज़िक्र खैर किया। उनकी नातों से अपने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला बख्शी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके मज़ार को ता क़यामत अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बनाए और हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बख़ैर।

0: रात के 9:01 होता तो सुनते हुआ MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
0: सब संगतियों के नमस्ते यह तो है मनपसंद रेडियो चैनल MBC के दुगो रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस AM मोड पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर 94.95 और 98.2 FM पर सबके स्वागत बा हम है तो संगतिया प्रता और जी प्रताप सिंह और आज है लेंदी की रात लेंदी 10 अगस्त 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे रे भोजपुरी तेर का नाच गाना धूम धड़ाका तिलो के संगे संगे और हमने के लाइव प्रसारण चला था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और ऑनलाइन पर भी हमने के सकत हुआ सुने साथ में हमने के सकत हुआ देखे भी रेडियो मोशन के टिकटॉक पेज पर नो पर्सनल क्वेश्चन ऑन टिकटॉक पेज केवल गीत मांगे के प्रोग्राम गीत मांगे इधर उधर के कॉमेंट नहीं करिए वरना जाने ला कि कैसे कम वॉच चले ला ऑलराइट अभी तक गमत के रात बा और पानी तक खूब बरसता चला अच्छी बात बा पानी बरसता काल से खूब पानी बरसल दक्षिण में धीरे माना जगह में तो आशा करे जा कि हमने की जलाशय गते गते भर ले जाए कहे कि पानी की बहुत जरूरत बा हमने की हाँ कि नहीं तो चला शुरू करे जाए धमाकेदार

प्रोग्राम के एक धमाकेदार गीत के साथ। और गीतवा गैले हवन, गीतवा गैले हवन शोभा रामचंद्र फकीर दुल्हन की दादी। अब दुल्हन की दादी क्या बोलता है, चल एक साथ सुना जाओ।

हम तो नचते गए थे आ रहे और नचाओ अब सत रोके रात के 11 बजे टिकटॉक पेज पर भी जे कोई इनके संगे नाचता रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर भी संगते लोग कितना सप्ताह से हमने बोले आवत थे सर आज भी बोला थे सर कि हमने के जलाशय में पानी की मात्रा कम हो ले जाता है दूसर बगल मोटा पानी बरसे के नाम नहीं करता स्थिति बड़ी चिंताजनक बा इ खातिर सी डी बलिए जनता से करजोर मांग करता कि पानी जाया नहीं करे के पानी गास्पिए नहीं करे के और आज लेन जी 10 अगस्त से नया नया जो नियम लागू हो बा हमने के देश में पानी के लिए के तो बोलल जाता कि है जो नियम लागू है रिस्ट्रिक्शन आज लेंदी 10 अगस्त से नवम के महीना ले नियम रही ध्यान से सुनिए कौन कौन

नियम लागू करल बा। आज से धुआं नहीं रही होबिने के पानी से गाड़ी धोई के, पिसिन में धुआं नहीं रही पानी डाली के, और धुआं नहीं बा कौचे से बरा बरा बाचिमो पावे या सीमा धोई के। और इस सब नियम के अगर तू उल्लंघन कर बा तो थोड़ा परी सैकड़ों मील से देशों में लामान पे करे के, और साथ में थोड़ा परी देशों फ्रीजों जाए के। और ला पुलिस स्टेशन पुलिस जो है पुलिस विभाग करीबी से नजर रखा था, कोनो भी व्यक्ति अगर इस सब नियम के पालन नहीं कर रहता, कोई वीडियो निकाल के फोटो निकाल के व्हाट्सएप पर विदा कर देला और तू पकड़ा गई ला तो तोहर खैर नहीं बा। नहीं बोलिया नहीं बोली रही से नहीं बोले कि नहीं जाना था रात से लालवा जो है रेस्ट्रिक्शन आलवा कहे कि जैसे बोली सा कि पानी के मात्रा कम थी होता कैसे बहुत सुखल जाता वो खातिर तो बोल दिया। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कौन कौन लालवा और बात से। हाई लालवा चली नवाम के महीना ली ठीक बा, आज से धुआं नहीं बा होबिने के पानी से गाड़ी बीस ये सब धोई के, पिसिन में धुआं नहीं बा पानी डाले के, और धुआं नहीं बा कौचे से बड़ा बड़ा बाचिमो पावे या सीमा धोई के। अगर तो ऐसा कर ला तो थोड़ा परी जुर्माना लामान पे करके और देजों फ्रीजों। तो ऐसा काम नहीं करिए जिनसे प्रॉब्लम हो है, हमने की काम तो लड़के समझाए के अब समझदार के इशारा काफ़ी बा। और भोजपुरी दरगाह प्रोग्राम में हमने ढेर कुछ अनले ढेर सेगमेंट बा, खाना खजाना, छोटी सी कहानी, बॉलीवुड न्यूज़ और ढेर कुछ अनले सर। प्रोग्राम में तो लोग तो के ढेर कुछ बिना सीखे के भी, और बेशक सक बजा टेलीफोन करे का होते हुए जो स्नैक पर या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर सक बजे एसएमएस करके गीत मांगे। अगला गीत कुना हिरा के गीत है मार ताली मार, और है गीतवा चलावत ऐसा ये सब संग जालो खातिर जो हमने के साथ देवत हो जा, और ढेर वाला संग जालो बा चल बोलब जा मेधा जानतू, गणेश वरुण, किंग कंटुना, उर्मिला, हेमंत हुबोल, निशा उचित, उर्मिला, फिर शर्मिला बुधन, अनु, शोभा, साई केदू, क्वीन, ललिता पुनीत, अविरामी कैना, बीना, नूरान, मनीषा, और फिर है कि चली धनेश रामफल के नाम, विजय नवजोदी, विजय नवजदी, लवली रहमत, राजू, तसजाद, मिनेव, फिर प्रियंका हवन, फर्ज आना, शेरपा, सत्यो, एंजल, जेस्बी, बटरफ्लाई, हरीश, बिबास, कोलिन, शैलेंद्र, साम, दया, आश, भविष्टा, रोजिदा, कासाम, हाइदा, सबरीना, अनसोफी, संदीप, फौदराम, और हयोगी चलावप्स, मंजू यादव, बिकेश राउत, चिवास, किंग, एंजल रोज, कवि कविता मती, जूलियन, करिश्मा, नारायण साहब हमने के साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार से, और वीना, वनाशा, जीना है गीत और नाम, श्वेता, अभी राजेश, जय मला कृष्णा, कृतिशा, देवन नदीवाला, कैसे बात देवन नदीवाला एकदम गमट होता, माला भी साधुवत हवन, आयुषी, साधना चौतन, फिर यूजर 4665 1630, यश प्रणाम बोलता लिवरपूल इंग्लैंड से, हेलो यश, नाजिया, मारिलिन, शौद, जिब्रान, शीला, प्रिंसेस, दिया, बानु सुखिया, और हयुगी चलावत ईसा, वर्षा मोहेश, कामाक्षी, और हयुगी चलावत ईसा एगो संगतिया के सुकर्मा इंद्राणी सिबोरन खातिर, सब सिबोरन परिवार कौच मिलते से, ज्योति लोबीन है गीत हो नाम, और फातम के साथ देवत होना, और जितना कोई रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन सुनता है गीत लोग के नाम भी कुनाल हिराल के मार ताली मार से एक साथ सुने।

एगोदमी कितना बड़ी सी सकेला जी 40 50 60 80 या 100 बरिस ज्यादा से ज्यादा 100 बरिस से एगोदमी सकेला जी अगर तो स्वास्थ्य अच्छा रही तो सकबा 100 बरिस से जी पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही अब ऑंख से मन से नहीं रोकता कि कान से नहीं सुनाता कि खा ही नहीं सकते वह पेट में प्रॉब्लम बा दर्द बा तो कैसे को व्यक्ति सके जिए तो कोई नहीं सकेला जाने कि कोई कितना साल जी पर जब ये जी अब से अगर अच्छा आहार एगो बैलेंस डाइट फॉलो करब से एक्सरसाइज करब से योग साधना करब से पूजा पाठ करब से शाकाहारी भोजन करब से तो सकेला 100 बरिस से सकब से जिए और हमने की धर्म ग्रंथ में वेद पुराण उपनिषद में लिखल गल बा एगो व्यक्ति के चेला 100 बरिस ले जिए के और अगला गाना आव आव दी बाबा और एक गीत खासम खास चलावते सब संगत आलो खातिर और चाची ललिता कुशल हवन थ्रियोले से चाचा आत्माराम चाची प्रभावती नोबेल फ्रांसे रेहाना हसन अली जीवन फेनिक्स से जलीला जियाद बैन साइदा कोहिसा और सब हसन अली परिवार जीवन फेनिक्स से वंजा और बेशक कल मंगलवार 11 अगस्त के परिसितालु पंचम दिन मनावता तो बधाई और प्यार महारानी पापा साइलन नाना राजन मौसा मान मौसा जिदेश मौसी करुणा चिकू मौसी कविता और सब मोहित परिवार और शिव परिवार अनमोल परिवार सितालु परिवार और दुरावा परिवार की ओर से परी सितालु के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बा और है कि तो हमने चलावते इस हमने के सब संग तैयारों खातिर जो हमने के देखा था अभी टिकटॉक पर इंदिरा इंदिरा लावतन जी है गीत त्यौहार खातिर राजेश शुगर खातिर खनल प्रकाश संगीता संगीता शिवदत्त है गीतोरों नाम और फिर अनिता लाल जी के साथ देवधवन

बानु सुखिया तोहर बेटा के जन्मदिन बा जीमास के तधी मना प्यार आशीर्वाद देवेन नारीवाला है गीतोरो नाम सकीना जफर अली है गीतोरो नाम टीना एसारी है गीतोरो खातिर ज्योति लोबिन भी हमने के साथ देवतोन बहुत बहुत धन्यवाद हमने के देखे खातिर और हमने के सुने खातिर भी और खनल प्रकाश हमने के साथ देवतोन और जितना कोई रेडियो मोशन से रेडियो मनोरंजन पर हमने के सुना था और टिकटॉक पेज और रेडियो मोशन पर हमने के देखा था तब बेशक अगला गीत थोर खातिर आव आव दी बाबा है गीतों के बाद हमने एगो गसैद से तो लगे खाना खजाना सेक्शन में तेगो पेन एगो कलम एगो कलम या एगो पेन और एगो पेज एगो पास संभाल के रखे एगो जुली गसैद दिवस आजकल श्रावण मास रहता ढेर कोई विजिटॉन खा के खाता तो शाकाहारी भोजन हमने गो जुली गसैद दिवस है गीतों के बाद

ट्विटर का प्रोग्राम चलेगा रोज के लेंडी से लेकर दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर एमबीसी रेडियो के दोनों चैनल पर एगो आएम पर चलेगा एगो एफएम पर तो साइमल्टेनियसली दोनों पर चलता भी कार्यक्रम भोजपुरी तड़का और अब खाना खजाना सेक्शन में अनलाइन सर एगो गसत यानी कि व्यंजन आजकल श्रावण मास चलता पावन महीना बा पूजा पाठ होता यज्ञ हवन होता तो आज एगो शाकाहारी भोजन ने

सब भोजन हुआ है व्योलेट के चटनी तमी के आगे पुरानिया लोग व्योलेट बुई करके खा तो लन सर आज ओकर चटनी बताओ अब सर तो तीन गो व्यक्ति खातिर और तीन गो व्यक्ति खातिर व्योलेट के चटनी सामग्री है तीन निबर व्योलेट पाँच गो सूखल पीमा चार गो पुल डामुन एगो बड़ा प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट हरी धनिया के पत्ता करी पत्ता और तेल और नमक स्वाद अनुसार। अब विधि की ओर जब व्योलेटवा के सफा से धो के टेम्पो में के भूई कर दिया दुगु जैसे सुफले करी तब ओके उतार दिया ओका लापू निकाल छील दिया फिर ओके को बोल में मिस दिया जोड़ी से अपन हाथ से व्योलेटवा के मिस दिया तब बोलवा इनको तेल डाल दिया। अब उससे कढ़ाई में तसुन तेल डालिया गर्म हो के जब तेलवा गर्म हो जाए तब पीमा सेक डालिया प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट पोलदामुन अब लोके पकैया निमन से तो भाई पोलदामुन निमन से पक जाए कर प्याज लहसुन सब जोड़ी से तब ओकर में हई व्योलेट के जो जैसे मिसले हवा ओकर में डलिया खूब मिलाउसे करिया मिलाउसे करके लाहू से करी पत्ता काही पुले हरी धनिया के पत्ता निमन से आवाजे कर दिया और नमक स्वाद अनुसार डलिया तो एगो सैंक दस मिनट सैंक मिनट पके दिया निमन से ढोंप दिया ओकर कुबेचे से और पाँच मिनट के बाद तोर व्योलेट के चटनी तैयार हो गल। इस शकबर तू फाता से खाए नान से खाए रोटी से खाए या भात से खाए कि आलू के चटनी ने खा लग रहा है पर बड़े ही मज़ेदार बहुत स्वादिष्ट है। तो याद रखिए व्योलेट की चटनी बहुत आसान है जैसे बोली है तो ज़रूर ट्राई करके बोलिया जाए हमने कि ऐसे तो कैसे बुझा। आजकल श्रावण मास चल रहा था पूजा पाठ हुआ था तो ढेर कोई बोला था कौन सी पकी भाई कौन सी पका से लड़का लोग हों सक दाल भाजी का कहते कही दाल भाजी नहीं बा व्योलेट के चटनी यू सकब बना दे आलू के चटनी लालू मसाला में ढेर मान तकारी बा फिर तो यहाँ के तो गाय में पनीर डाल दी बा या बनान में मुँह तो दाल के चोरी से दाल भाजे पका दे ढेर मना शाकाहारी भोजन बोल बोते भैया लिस्ट इतना लंबा बा कि काबर लिस्ट का वो समाप्त नहीं हुई। तो अगला गीत चला अवसर जल सा गीता का झा दहर की तो अगे लेवन और ही गीत चला था इस अवसर हथियार के नाम प्रताप के उत्सव कर बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम रहेलन मिडलैंड संजय संदेश लोंग चिबुक राजा स्टीव माना नानो श्याम मंगल संजीव और सब मन्ना परिवार के नाम उदेश जसवा अगी तुहर महाराज कुमारी उदय धनीराम और सब परिवार राधा सी बालक बेटा प्रशांत बेटी शिल्पा और दामाद देविका रामगति अगीत तोहरो नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई टिकटॉक पर हमने देखा था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने सुना था अगीत तो लोग के नाम भी का जगोदेव बुद्ध हो सैंक पर टेलीफोनिंग करती रही रात के 11 बजे सुनम चाहे गीत गीता का जाधर की जुबानी जलसा

और हम प्रताप सिंह जबायला था जलसा था होवेला नाच गाना धूम ढारा का भी होवेला। रात की 9:40 ढेर कोई बोला था बड़ी ठंडा करता दक्षिण में। कहा कर भैया अगर ढेर ठंडा करता तो गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पी लिया या गर्मा गर्म दूध बना के पी लिया। आजकल माइक्रोवेव भैया खाली को गिलास लिया एक गिलास या पानी डालिया दूध डालिया मिलाउज करके 2 मिनट में तोहर कॉफ़ी या चाय बन गल। और बेशक आजकल लड़का लोग स्कूल की छुट्टी में बात ढेर माँ बाप की सरदर्द बन गल वाले क्या लोग मतलब सर हाँ तो माँ बाप लोग बता लड़का लोग सर दर्द बन गए बता सर दर्द नहीं बने लड़का लोग के MBC TV पर रोज के जुड़ी जुड़ी प्रोग्राम चलता है लड़का लोग खातिर जुड़ी जुड़ी डिसानी में जबकि कॉटून में ऐसा फिल्मी के वही ऐसा MBC TV पर रोज के आवेल है तो लड़का लोग सके MBC TV के आगे बैठ के डिसानी में देखे। अभी और एक सप्ताह बाद गमट करे के धमाल करे के ओकर बाद लेंदी से लिहा ले जिससे उच्च से लेकुल वापस है ठीक बा यानी कि हाई एंड सीमेंट रगल बा तब भाई सीमेंट के बाद लें जी ले जिससे आए तो उस दिन उस तारीख के पारी लेकुल जाए कभी और एक सीमेंट बा गमट कर ला। तो MBC TV पर अच्छा अच्छा प्रोग्राम रखा बा लड़का लोग खातिर बॉन्दे सिने और है जो चेहरे तेरे बिजरे हरा जिन्हें लोग खातिर ये सब बा और विषय कभी रात के 9:40 हो रहा था अगला गीत तो सुनाओ जा चंद्रदेव जी बुधन के आवाज़ में करक करक बोली नहीं छला बोले के और एक गीतवा चलाओ इस गाँवे के रतन निहाल खातिर और पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के नाम चाचा साइलेंट की ओर से बेटा जान माधव खातिर और ये माधव और चाचा और भतीजा का जो रिश्ता है माधव और साइलेंट जो है चाचा भतीजा एक दूसरे से बेहद बेहद प्यार करेला और माधव बोले रहा चाचा जान कब आओगे चाचा जान मेरे साथ खेलने के लिए तो चाचा जान की जब समय तो जरूर जाए पर नेफ्यू जान लगे अरे गीत चलाते मिस्टर अपाया मिस्टर ओसाई मिस्टर साजू मिस्टर धर्म गंगू वीरापन जी टीना दीना प्रतिमा केट और SSS के सब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के रेक्टरनी के नाम खड़क बोली ना बोलिया तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए करा बोली नहीं बोलिया करा बोली बोल बा तो कोई के दिल तोड़ देला तो वो अच्छी बात नहीं है निमन से बचिए या प्यार से बचिए 2 दिन के जिए के बाद काहे से थे कोई घगोट के बचाला अरे प्यार से बचिए भैया है कोई प्यार से बचिया था तू भी प्यार से बचिए या नाचे गावे झूमे हमने के संगे संगे रेडियो मर्चेस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी का प्रोग्राम और जी प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ले

और माधुरी दिल तोड़ दे रहे हम तो माधुरी के मतलब दिल नहीं तोड़िया हो दिल चोरिया। अब माधुरी के क्या दिल तोड़ दे लग बेचारा रोआ था बोले माधुरी दिल तोड़ दे ले। वो नहीं कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही माधुरी चल गई तो जाए दे माधुरी चल गई तो दूसरा को चलाई। रात के 9:55 हुआ था तू सब तो भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ। और अब हमने तो लोग एगो कहानी सुनाओ अब सर कहानी में गुजोली सीख बा कहानी के शीर्षक है जादुई मछली। तो बहुत समय पहले की बात है समुंदर के किनारे एगो छोटा सन गांव रहल और उस गांव में एगो ईमानदार मछुआ रहल उसका नाम रहल मोहन। मोहन रोज फजीर के उठ के समुंदर में जाता मच्छी मारे और मच्छी मार के अपन परिवार के पालन पोषण करत हल। एक दिन जब मोहन गल मच्छी मारे तो उकर जाल में उकर जाली में खाली एक गो मच्छी आल। वो मच्छी जादुई सोना के रंग के रहल और वो मच्छी बतियात हल। मच्छिया ओकर से बोलक ए मछुआ बाबू तुमके वापस समुंदर में डाल दे अंके नए खाइये हम तो सब सपना पूरा कर दे। तू खाली बोला कौन चीज चाहत हुआ हम थोड़ा सब कुछ देवा पर तू उनके हमर समुंदर में वापस डाल दे। ईमानदार मछुआ मोहन मच्छी से बोलक हमके कुछ नहीं चहला मच्छी हम तो के फिर से वापस समुंदर में जाते जा जा अपन परिवार लगे। मोहन वो जादुई मच्छी के समुंदर के पानी में वापस छोड़ दिलक और जब वापस सांझ के वो घर लौटल तो देखता है ओकर घर झोंपड़ी नहीं बा ओकर घर एगो आलिशान बंगला बन गल बा एगो महल बन गल बा। घर में नौकर चाकर बा ओकर पत्नी जरूरी से आबिये होल बा घर में अच्छा अच्छा पकवान बनता और बड़ा बड़ा बर्तन में पैसा सोना और चांदी बस। मोहन समझ गल कि सब उ जादुई मछली के कृपा और आशीर्वाद के कारण है। मन ही मन में उ जादुई मछली

कि धन्यवाद दिलक। उस दिन से मोहन के जिंदगी बदल गल, उस दिन से उस सबसे बड़ा रईस बन गल, सबसे बड़ा मिलियनेयर बन गल। तो संगतियारो कहानी के इस सीखा कि जिन व्यक्ति सच्चा ईमानदार और मेहनत से काम करेला ओकर सीमा हमेशा खुलल रहेला और भगवान कोनो न कोनो रूप में ओकर मदद करेला। अगला गीत जो रिसेंट गीत है मन करेला रेवन कुमार और मीरा जी ने गीत अगले वन पूर्णिमा फकीरा है गीत तोहर खातिर खासम खास एक वायो से हवन मोन। हेलो मोन, कैसे समाचार है गीत तोहर खातिर चलावत बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत चली इंदिरा चिंताराम के नाम कर सब लड़का सब परिवार खातिर रंभा हवन से जलैन से कर तीन गो बेटी कर घरोला और सब परिवार के नाम जानकी परिवार गुडलैन से हवन। और है गीत चलावत विमला के उसे अशोक खातिर और डॉक्टर अंजू अमी के साथ हाय डॉक्टर है गीत तोहर खातिर तोहर फ्यांस के नाम डॉक्टर पूनम यमी के साथ देवत हवन। और जितना कोई की नींद नहीं लगाता था गीत तोहरो नाम है गीत वागे लेवन रेवन कुमार और मीरा दीनू मन करेला।

हर कोई की जिंदगी में दुख सुख कहते जाते रहेला और जब दुख आवेला तब अपनी भगवान के चरण में जाएला सर। तो अगर तू चाहत हो तो हर जीवन में दुख पीड़ा और कठिनाई सब दूर हो तो तू रोज सांझ फजर के वेद मंत्र के उच्चारण कर या वेद पाठ कर या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद गायत्री मंत्र पढ़िया जानल गायत्री मंत्र कौन छे ना ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि जो नहा प्रचुदयाद और वेद मंत्र के साथ साथ थोड़ा दान पुण्य के काम करिए। अब दान पुण्य कौन ची है तू दिखाते हो गरीब व्यक्ति बा तू सकते हो एगो कपड़ा खरीद के दे या थोड़ा सुन खाना या कुछ भी है अगर फाइनेंशियली सकते हो करे या कोनो भी रूप में एगो गरीब व्यक्ति के एगो बीमार व्यक्ति के सकते हो एदी करे तो एदी करिए ओके पुण्य कहाला। तो जब तू पुण्य के काम करब वेद पाठ करब वेद मंत्र के उच्चारण करब फजीर चांद भगवान के ध्यान करब तो दिखब तोहर जीवन में जितना ग्रह बा जितना प्रॉब्लम बा वो धीरे धीरे जाए तुरंत नहीं जाला सब प्रॉब्लम एक साथ नहीं जाए पर भगवान के अगर तू ध्यान करब तो दिखब धीरे धीरे जो है सब प्रॉब्लम दूर हो ले जाए। और आजकल जैसे हम बोली श्रावण मास चलता श्रावण मास में वेद मंत्र के वेद मंत्र होला पूजा पाठ करी रहा सर और एक तरफ शिव भगवान के भी पूजा होता और शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाई रहा सर शिवलिंग के अभिषेक करी रहा सर साथ में दूसर बगल जिन हमने वेद यज्ञ हवन कर दी सर घर में और यज्ञ हवन करला से घर और जिन पर्यावरण सब पवित्र होला छेला पूजा पाठ करके रोज के पूजा पाठ करके और लैका लोग कौन से में बात लैका लोग के सिखा या कैसे वेद मंत्र के उच्चारण कर जरा वेद मंत्र के ओकर मीनिंग कौन चीज है वो सब छा लैका लोग के सिखाए के तो पूजा पाठ करते रहिए। अभी श्रावण मास चला था तो चला जितना कोई व्रत धारण कर लगभग अभी देर कोई शाकाहारी भोजन करता पूजा पाठ में हवन से यज्ञ हवन करते हैं उनसे मिजिताश्रम में हवन से योग साधना करते हैं उनसे तो जितना भक्त भक्त लोग श्रावण मास फॉलो करता अभी तो है एगो भजन तो लोग के नाम प्रस्तुत करत है जा सब भक्त लोग खातिर ओम ओम रह भजनवा तू सुन जा कंचन और कंचन कुमार के आवाज़ में चले एक साथ सुनब जा ओम ओम और भगवान के दूसरा नाम है ओम।

0: श्री हरीश जी सखुजा कालका जी निवासी के सहयोग से आप तक आया, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद।
1: Continuous music.
2: RM3. 819 kilohertz. 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।
5: चौरानवे 95.6 98.2 FM पर यह रेडियो मनोरंजन और 819 किलोहर्ट्ज़ पर यह रेडियो मॉरिशस, दोनों चैनल पर सबके स्वागत करते जा और जी प्रताप सिंह के साथ भोजपुरी तड़का का प्रोग्राम रात के 10:08 हुआ था और गमटवा चलते रही रात के 11 बजे ले। और हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सकबर जाए के फॉलो करें और बेशक अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत मांगे। और ये अगला गीत जो है मोनिका माई डॉलिंग, ये हम नहीं बोला था, ये नीरज गुप मधु बोला था। और है गीत चलावते इस गीता के नाम हा गीता नीता तोरा, फिर निर्मल तोहालू, बाबा तोहालू, सब तोहालू परिवार के नाम, तयाना है गीत तोहर नाम, मामून है गीत तोहरों खातिर, वसीम पीर बुकस है गीत तोहरों नाम, फातमा हवन न्यू ग्रोव से, रोजीदा हाईलैंड से और मैं जबीन प्लेनवेट से। साथ में है गीत चली आफेज के नाम, लाविनिया सैंपिया से वंजा, हाय मनीषा, मनीषा नमस्ते, कैसी समाचार, रजा पठान गीत तोरो नाम। और है गीत क्रिस्टीना खातिर, एंजल साम्या, रेखा ताका गीत तोरो नाम। और घासीलाल बैरवा है गीत तोहरों खातिर। और टिकटॉक पेज पर देखो इनके साथ होता गीता दत्तू हेलो, होरू अकमेद है गीत तोहरों नाम। और गीतो है मोनिका माई डॉलिंग, अकमेद होरू भी उनके साथ होते हुन। और भाई आबू होन बाकवा से, कर घरोली कर लेका सब आबू परिवार के नाम। और बेशक रजा पठान बोलता कई हाल हा, कई कौन हाल बा, हाल तो बहुत अच्छा बा भैया, चला नाचे गावे हमने के संगे कमरवा डुलावे। मोनिका माई डॉलिंग, अब मोनिका माई डॉलिंग के बोला था, ओके मोनिका माई डॉलिंग, चले एक साथ सुने।

हम एगो बात के मौके कर लें जब हमने के जिन पुरनिया दादी नानी लोग जैसे काफ़ी उम्र हो गल बा जब बोल के नमस्ते या प्रणाम बोल बा तो लोग बोले रहन से जिया जिया के मतलब है जीते रहो एगो आशीर्वाद है तो हमने के चेहला अपन बड़ा आदमी लोग के प्रणाम करे के मान सम्मान करे के आशीर्वाद ले के है जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा चीज़ है। कबो कबो ऐसा एगो परिस्थिति चलावेला जहाँ पर कोनो सीमा नहीं रखे पर जब बड़ा आदमी के आशीर्वाद रहेला वही हमने के बेज में से निकाले ला तो हमेशा अपन बड़ा आदमी के राम सलाम करते रहिए और उनके आशीर्वाद पाई लेते रहिए। एक्ट्रेस ऐसा छोकरी बापरे बाप किस तु सुभाष के गावल गई तरगी चाहते से लकी वुमन की ओर से कर सब दूर दूरा परिवार के नाम रहे नालमाते लकी वुमन है गीत जयराज रानी अंतीश अंकुश स्नेहा खातिर भी सजीर खान है गीतोरो नाम नीलेश अठल है गीतोरो खातिर साकुन सुभाष कटवल मारियो रोशन देवीना रामजग जयबाल है गीतोरो खातिर लकी गर्ल दिनेश हरी मानती कुसुम वीवी आलिया सुरेश अजहर अशरफ और साथ में है गीत जुनहा एक्टिजेशन छोकरी है गीत चलावते रजनी खातिर रजनी बहुत प्यार से हमने सुनत हवन और हमने साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता जोगी नमस्ते है गीत तोहरो नाम एक्ट्रेस जयसन छोकरी पूर्णिमा फुकीरा है गीत तोहरो नाम।

संगतियालो की दुनिया में कोई से कोनो उम्मीद नहीं रखी है। दुनिया में कोई नहीं बा भगवान के छोरा की, जगह से उम्मीद रखबा वही धोखा देवेरा। कहा कर भैया, इंसान अकेले अलबा दुनिया से अकेले जाए। और हमने यहाँ पर यार से अपन भूमिका निभाए, अपन भूमिका निभा देव सर, जब हमने के गोल, हमने के उद्देश्य पूरा हो जाए तब भगवान हमने के अपन पास बुला ली। है ये जीवन की कठु सत्य है, हाँ कि नहीं। तो ढेर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हम कोई खातिर कौन चीज़ करते हैं तो ओकरों से हमारे खातिर कौन चीज़ करे, कि ये ज़रूरी नहीं है। तू देखा था, तू सकत हो कोई खातिर कौन चीज़ करे तो दिल खुल के ज़रूर करिया, भगवान तोहरा आगे तू बहुत कुछ दे। और अगला गीत आई लव यू बोलेला, हाँ मधु नीरज गुप मधु गीत तो अगले हवन आई लव यू बोलेला। और एक गीत चलाते सर मुकेश कुमार खातिर, रोशनी भुवनिया, हाय रोशनी, हाय गीत और नाम रविराज बिचुक हवन लाल माटी से, कर पत्नी स्वयं प्रभा, कर बेटा प्रत्यक्ष, कर माता जी और सब बिचुक परिवार के नाम। मिस्टर गोली कैसे बस समाचार मिस्टर गोली। और एक गीत थोरो नाम अनु जय साई, और है गीत रजनी की ओर से डेजी के नाम। मेरे होश के सबकर परिवार बा शिव बुदत परिवार, कालीचरण परिवार, और फिर राज साहब के नाम, जस्टिन ने गीत थोरो नाम, और आकाश डांसर आकाश डांसर गीत थोरो नाम, सजीव खान गीत थोरो नाम, और लकी वुमन की ओर से गीचरी जयराज, रानी अंती, शंकुश और स्नेहा खतेर, और है गाना मिस रवि दिनू साहब होन मोहताबा से, कर पत्नी, कर लड़का, कर माता पिता और सब दिनू परिवार खतिर अगला गीत आई लव यू बोलेला दिनू। देखिए अभी भौजी बिलना रखी तो खतिर हैं कहीं के आई लव यू बोलते हो। रवि दिनू है गीत और पत्नी पूजा खातिर, खासम खास और रवि अपन पत्नी पूजा से बहुत प्यार करेरा। भौजी रवि बोलता कि ओ तुहर खातिर चांद तारा तोड़ के लाए, और तुहर खातिर उ सके अपन जान भी दे दे। भौजी रवि भैया के हमेशा सुखी रखे और गर्मा गर्म फराता पके ओकर खातिर। हाय लोभना गीत हो रो खातिर।

तेर और स्मिता के साथ वन बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब होने गीतों का घरोली और कर्दुगले का खातिर और है गीत चाव दी सब रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के संगत आलो के नाम और जितना कोई हमके टिकटॉक पेज पर दिखाता था गीत लोग के नाम आई लव यू बोलीला

0: यानी क्या लिख लियो?
1: स्पानियोल में बोल ली,
0: देखियो
1: फिलिपिन में बोल ली,
0: महल की ता
1: तो के इजोबियन में बोल ली,
0: अब ग्रेकी
1: के हम दो के खुशी गैर सब बोली।

एगो कहावत है, संगत कर जान के पानी पिया छान के। जनिया के घर से संगत करते हुआ जैसे संगत कर बा उसे ही प्रभाव पड़ेगा तोहर पर, हाँ कि नहीं। और यहाँ पर ही हमने यहीं से तो लोग के साथ देवा था ऐसा रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर रात की 10:00 का आधा हुआ था। अगला गीत हम पहली सिंदूर सजन देखे दूर से सुम्बावती दुमन गीत वगैरह वंचित रहा और ज्ञान विश्राम खातिर रहे नन मौदाल बे माता बाकी कमला जी खातिर कुछ चीज़ ऑफ आरोही खातिर गीत छड़ी करीता हमने के साथ देव थोन मिलियो ने हमने के साथ देव थोन मालिनी विश्राम हेलो। और मिलियोनिया बोल तो शादी से पहले तक कितना मीठी मीठी बोली बोला जला अरे मर गाते अरे मर खाजा अरे मर शेरी शादी के बाद ही सब मुँह कहीं कहाँ उड़िया जला खोची पर जला कि कहाँ उड़िया जला। शादी के बाद खाई झगड़ा ना छोटा छोटा बात में झगड़ा तो पति खाली शिकायत कैला तकारी में नमक दस्ती बा तकारी जरगल बा तो ढेर तेल जल ले हुए तो पत्नी बोलेला तू देरी से आवेला कोना चक्कर बा तोहर बाहर में बाप रे बाप शादी से पहले इतना गाते इतना प्यार शादी के बाद इतना झगड़ा काहे शादी कर लहो बोले तो शादी नहीं छान करेगी ना। शादी के लड्डू जो खाला वो भी पछताला जो ना भी खाला वो भी पछताला और मिलियो ने तो बड़ा जोर हंसता बुझाता हुई सबसे गुस्सल बा का करबा हो महिला लोग के नीचे हर शक करे के जब पति देर से आई तो किफे पान फॉर्मो पोता किफे पान फॉर्मो कॉल है मुझ पर सुनो मुनावी मिसाज में मिसाज का ही नहीं रिपोर्ट कर ली। अब पति बोली है तकारी पकड़ दे वे तकारी जरा दे रे वे तकारी में इतना नहीं मकबा। अगला गीत हम फिर सिंदूर रीता की ओर से गीत चली कर सब परिवार के नाम बहुत बहुत प्यार से और है गीत हमें चलावत इस अंजनी के नाम इंदिरा लौटन शोभा पॉम्बले मुसेवन शोभा वाकवा से प्रेमिना काठबोन से और हमने के साथ ढेर कोई देवता संध्या हवन जा साकुन भी बहुत जोर से हंसा था वो जानता था हम का बचा था रोशन भाई वो भी बड़ा जोर हंसा था असलम चिबस गीत हो खातिर अब सजन काहे दूर से दिखा था बलमुआ जब पत्नी सोला सिंगार करता रागरास के आगे तब कर बलम कर भीड़ी नहीं बा वो दूर से ताकत है बोला था ये बुढ़िया काहे से जोरी से आबी हो कि कहाँ जाता हो कहीं कर कोनो चक्कर तो नहीं बा। चल एक साथ सुने गीतवा हरी गीतवा चाहते कनाडा में जितना मॉरिशन दोस्त लोग बा वहाँ पर ही और भी ढेर कोई मॉरिशस में आलोन सा दीपा तिवारी दुखित होकर घर वाला केबिन ओकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम तिवारी परिवार अवन साइडिंग रोड निग्रोव से गीत हो खातिर तीना बुदना तोहर पति रोशन तोहर दुग बेटी और तोहर सब परिवार के नाम श्रीन राम जो ने गीत हो खातिर और राफिक मोहित तयाक से अवन है गीत तोहरो नाम

इतनी सबको जान जा सके सर्दी के मौसम में छेना वाइटामिन सी वाला धे मना फल खाए के जो फूल में जैसे विटामिन सेबा वह जोहोंज लिमो नींबू और पोम्प्लेमूस देखे पोमेलो भी बनला सा और जो पोम्प्लेमूस है कैसे दवाई भी बनेला तो पोम्प्लेमूस कहे छेना खाए के तो एक में ढेर मना तत्व तो में विटामिन सेबा और जो विटामिन से है हमने के प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्य में मदद करेगा शरीर में माफ करिए कोलेजन बनाने में मदद करेगा और आयन के आविष्कार भी करेगा और पोम्प्लेमूस में आहार फाइबर है अगर मैं फाइबर बात आई डाइजेशन में हेल्प करेगा जो व्यक्ति लोग अगर खालन सब खा के नियमन से नहीं पचे रहा तब खाली बरात के भोजन कर दे बैगो पिछली भूत पोम्प्लेमूस खैया तो मदद करी खैवा के पचाई के फिर कर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्राकृतिक शर्करा भी भा और पोटाशियम भी बाय कर में पोटाशियम शरीर के लिए आवश्यक है ये सब मांसपेशी हमने के नस और शरीर के सामान्य द्रव्य संतुलन में मदद करेगा एंटीऑक्सीडेंट बा पोम्प्लेमूस में और ये हमने के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला और पोम्प्लेमूस में पानी भी बा तो ये पानी हमने के शरीर के शीतल रखेला अब पोम्प्लेमूस कैसे चना खाएगी सकबा के छील के थोड़ा सा नमक डाल के सकबा खा या पोम्प्लेमूस

mousse is no sagal de la kai ya pamplemousse ke ras pamplemousse ke zibani la agar to lage mixer ba ta pamplemousse zoron de non dal kiniman se ke mix kar diya tabe go vm dal ke pia ya cha ha pamplemousse ni ke jitna am ke liye ko mein jo gra ha cholesterol fat sa ke dur kare la aur hamne ke hriday khatir hamne ke dil jo organ ha jo khun pump kare la ओके मदद करेला खून पंपी करे के तो ज़रूर अगर बाजार जेबा जा कबो तो पॉम्पलेमूस जरूर किन्या या फिर पोमेलो वो अच्छा है स्वास्थ्य खातिर विटामिन से तो हर पुआ भी कंट्रोल करेला जो आदमी ओबेस बा मोटा बा उपतरा करेला तो हर खून के संचार के भी अच्छा रखेला और ऐसे में चल अगला गीत सुनब जा राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में हाय रवि बंगारू नमस्ते है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी करुणा तोहर बेटा रायान खातिर अंशिका है गीत तोहर नाम अंजनी बंगारू राजा सुल्तान निसार बिन के साथ देवोथन बबीता बुलाकी नमस्ते दीपक देवी दयाल बाबू सोना श्रीन रामजोन और साकुन भी हम के साथ देवोथवन बहुत बहुत प्यार के साथ अंजनी बंगारू और फिर जितना कोई नींद नहीं लगता तो बस हमने यहीं से यहाँ पर ही तो लोग के साथ देखा थी रात के 11 बजे रे भोजपुरी तरका प्रोग्राम और भोजपुरी प्रोग्राम की ढेर कुछ सुनेला ऑनलाइन By logging on the website www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मॉरिशस या फिर रेडियो मनोरंजन प्लीज़ है प्रोग्राम में जो है टिकटॉक पेज पर खाली SMS करके कॉल नहीं करेगी प्लीज़ हम मांग करते वरना हमने के पर टिकटॉक बंद करके रवि भैया प्लीज़ खाली गीत मांगिया जाए बहुत बहुत धन्यवाद समझदारी खातिर और चला भी अगला गीत जेसन लामू के खाती चलावते सब महेश चौधरी हेलो रक्षिता है गीत थोड़ो नाम बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अस्पताल में बा क्लिनिक में बा और हमने की सुनता है गीत थोड़ो नाम और जितना कोई भी रात के काम करता है नाइट शिफ्ट में अस्पताल में क्लिनिक में पुलिस फोर्स में मेट्रो स्टेशन में कॉल सेंटर में जहाँ कहीं भी तू काम करते हो सिक्योरिटी गार्ड्स लोग देखो बुलोंसरी में काम करता है भी रात के रात भर गर्मा गर्म रोटी पकड़ से का फजर के सबके पैमेज़ और बागत मिली खाई के वो सब संगत यारों के बोंकुआज और जितना कोई जितना ड्राइवर लोग काम करता फिर हवन बनुमाली भाई हेलो सासी बनुमाली है गीत औरों खातिर और जितना कोई रात के काम करता है गीत तो लोग के नाम जोश में आके आगे पीछे राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में रवि बंगारू एक गीत खासकर तोहर खातिर

संगत्यालो खाई गीत के संगे बर्की मसाला पिसेला क्रिश श्रीदेव के गावल गीत के साथ भोजपुरी का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त होता। हमने की देखला टिकटॉक पर, हमने की रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशन पर सुनला, तो लोग SMS फोन कॉल्स खातिर शुक्रिया। रात के 9 बजे से अभी तक हमने के साथ देखा थी, शुक्रिया करम मेहरबानी। हमने की तो लोग मुलाकात हो जब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम रही मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। तब तक हमने की इजाजत दे और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते, सलाम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते, शुभ रात्रि, बाय बाय।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। तो दोस्तों, सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं। एक कप चाय, बारिश की बूंदे या बैकग्राउंड में बजता कोई पुराना बॉलीवुड गाने। जी हाँ, आज हम आपको वही सुकून देने आए हैं। तो आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गीतों का आप मजा ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन पुराने गाने कभी अपनी चमक नहीं खोते हैं। उनमें वो सादगी है, वो जज्बात होते हैं जो सीधा दिल तक पहुँच ही जाते हैं। तो आज की ये खूबसूरत रात उन गीतों के नाम जो हमें जीना सिखा देते हैं। और अगर कोई खास है आपके दिल में जो आपने बड़े टाइम से याद नहीं किया है, तो आज हम आपको मजबूर करेंगे उनकी यादों में खो जाने के लिए। तो चलिए जी, ये अगला नगमा आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

वैसे अगर आप थके हुए हो, उदास हैं या सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहते हो तो सुनहरे पल आपके लिए हैं। पुराने गीतों का ये सिलसिला आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल, पुराने गीत सिर्फ सुर नहीं होते हैं जी, बल्कि जिंदगी के सबक भी होते हैं। तो चलिए आज कुछ अच्छी बातें करते हैं और पुरानी यादों को फिर से जी लेते हैं और उन पुराने दिनों को भी याद तो करवानी है। हो सकता है ये जो अगला नगमा हम पेश कर रहे हैं आपके दिल के कोने में आपने छुपा के रखा है किसी के यादों के साथ। तो चलिए जी, ये गाना आपके लिए।

उम्मीद करते हैं कि हमें सुनते सुनते आपके होंठों पर मुस्कुराहट जरूर आ रही है दोस्त। तो चलिए जी, आई डोंट नो, शायद अगर आप घर पे हो तो हम कहेंगे आराम से बैठ जाइए, बस एंजॉय कर लीजिए ये खूबसूरत पुराने गीतों का सफर। और अगर काम पे हो सो कुआश टू यू। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पुराने यादों को जब याद करते हैं और जुड़ जाते हैं हमारे इस खूबसूरत सुनहरे पल के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना बन जाते हैं सोने पे सुहागा। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए और हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

वेल दोस्त, हमारी ये बात जो है ना, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता है, लेकिन एक प्यारा सा गीत और अपनों की याद दिल को हिम्मत दे देती है। सुनहरे पल में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तो चलिए अगले नगमे के साथ हम भरना चाहेंगे, और ये हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शायद गाड़ी चलाते चलाते हमें सुन रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गाने को।

Well, it's time for Ginisha to say goodbye to you. और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सुनहरे पल दिल से अच्छा लगा जी. तो चलिए जाते जाते एक और नगमा आपके नाम हम जरूर प्ले करना चाहेंगे. So do take care of yourself. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो
2: मॉरिशस। ओ लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा, तुम भी ना तोड़ दे

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे।

के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आ जा रे आज

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ।